श्रोताओं सुप्रभात। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शक संवत 1948 के अश्विन मास की 12वीं तिथि तदनुसार 4 अक्टूबर 2026 है। प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है और सभा के आरंभ में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजे हैं। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरि उल्लाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छर के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा, साथ ही इनके साहित्य और भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी कार्य किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशिया खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है विचार मंथन। रविंद्रनाथ ठाकुर का कथन है कि थोड़ा पढ़ना और अधिक सोचना, कम बोलना और अधिक सुनना, यही बुद्धिमान बनने का उपाय है। और अब सुनिए वंदना, जिसमें आप सुनेंगे भक्ति संगीत। भारत एक ऐसा महान देश है जिसका इतिहास बेहद अनोखा है। यह दुनिया को गिनती सिखाने वाला देश है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग और आयुर्वेद भी भारत की ही देन है, जिसके प्रशंसक संपूर्ण विश्व में हैं। यहाँ श्रम की पूजा होती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अपनी समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। तभी तो कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुनते हैं समूह स्वर में देशगान।

श्री कृष्ण के मथुरा जाने से सभी गोपियाँ बेहद दुखी हैं और उद्धव के समझाने पर वे कहती हैं कि हमें मत समझाओ, जिस व्यक्ति ने कृष्ण के प्रेम और विरह का दर्द नहीं सहा वह दूसरे के दर्द को नहीं समझ सकता। सुनते हैं शेखर सेन के स्वर में कृष्ण भजन।

यदि भगवान का नाम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जपा जाए तो भक्त को भवसागर से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रभु का नाम स्मरण ही सभी दुखों को दूर कर देता है और अंत में भक्त परम धाम को प्राप्त हो जाता है। साईं भजन सुरेश वाडेकर की आवाज़ में।

ईश्वर प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति प्रमुख है, जिसमें विरह और विनय की भावना को मुख्य माना गया है। और मीराबाई के मन में तो कृष्ण बसे हुए हैं, उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया है और यही जीवन रूपी बेड़ा उन्हें भावसागर से पार लगा देगा। मीराबाई की रचना श्रुति सडोलीकर के स्वर में है।

भगवान भोलेनाथ की सादगी, उनका भोला स्वभाव और अहंकार रहित जीवन ही उनके सबसे बड़े आभूषण हैं। उनका वैराग्य रूप हमें यह सीख देता है कि सभी भोग विलास के साधन होने पर भी उनसे विरक्त कैसे रहा जा सकता है। शिव भजन हरिओम शरण के स्वर में।

0: इस भजन के साथ ही आज का वंदना अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रकाश किरण में आज सुनिए धार्मिक ग्रंथों में सदाचार का महत्व। स्वर श्री दामोदर शास्त्री का।
1: भारतीय संस्कृति आचार प्रधान रही है, तभी तो भगवान मनु ने कहा था आचार प्रथमो धर्म, अर्थात सदाचरण ही सर्वप्रमुख व श्रेष्ठ धर्म है। भारतीय महापुरुषों का सदाचरण समस्त दुनिया के लिए अनुकरणीय आदर्श रहा है। इसीलिए तो भगवान मनु ने मनुस्मृति में बड़े स्वाभिमान के साथ यह कहा था, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। अर्थात इस आर्य देश भारतवर्ष में पैदा हुए अग्रजन्मा यानी धार्मिक सदाचार में अग्रणी विद्वान ही दुनिया की सारी मानवता को सदाचार की शिक्षा देने में समर्थ हैं। उन्हीं भारतीय महर्षियों की हम संतान हैं। आज भी हमारा चरित्र हमारे अच्छे या बुरे होने का प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करता है। वाल्मीकि रामायण में कहा है, कुलीनम अकुलीनम वा वीरम पुरुषमानिनम चारित्रमेव व्याख्याति शुचिम वा यदि वा शुचिम। अर्थात कोई व्यक्ति कुलीन है या अकुलीन, वीर है या कायर, तथा पवित्र विचार वालों का है या अपवित्र विचारों का, यह सब किसी व्यक्ति के आचरण को देखकर ही ज्ञात किया जा सकता है। महाभारत में कहा गया है, नकुलम वृत्तहीनस्य प्रमाणमिति मे मति अन्ते स्वपि जातानां वृत्तमेव विशिष्यते सत्यं दमः तपोदानम् अहिंसा धर्मनित्यता साधकानि सदा पुंसाम न जातिर न कुलम नृपः। तात्पर्य यह है, उत्तम कुल में जन्म लेना किसी व्यक्ति का वैशिष्ट नहीं सिद्ध करता। हीन कुलों में भी जन्म लेकर यदि व्यक्ति सदाचारी है तो वह अन्य से कहीं श्रेष्ठ है। वास्तव में किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता के कारण जाति या कुल नहीं, अपितु अहिंसा, सत्यवादिता, धर्मपरायणता, दानशीलता, तप, इच्छाओं पर नियंत्रण, ये सब सद्गुण ही होते हैं। चरित्र की सर्वोपरि श्रेष्ठता का प्रतिपादन महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से इस प्रकार कराया गया है, वृत्तम यत्नेन संरक्षम वित्तमेति च याति च अक्षीण वृत्तो न क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। तात्पर्य है कि धन संपत्ति की सुरक्षा की अपेक्षा अपने चरित्र की रक्षा करना अधिक जरूरी है, क्योंकि धन संपत्ति तो आती जाती रहती है, उसके चले जाने से भी कोई ज़्यादा हानि नहीं होती। संपत्ति पुनः लौट कर आ भी सकती है, किंतु चरित्र भ्रष्ट व्यक्ति एक बार पतित होकर कभी नहीं संभल पाता और उसका विनाश रुक नहीं पाता। महाभारत में कहा गया है, आर्यतानाम भूतानाम यह करोति प्रयत्नतः शुभम कर्म निराकारो वीतरागस्तथैव च। अर्थात यथाशक्ति प्राणियों का हित करना तथा संसार में रहते हुए भी निर्विकार भाव से रहना, यही हमारी आर्यता है, श्रेष्ठता है। सदाचारी व्यक्ति का स्वरूप कैसा हो, इसके बारे में गीता में श्री कृष्ण का वचन है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः सच मे प्रियः। अर्थात मेरी दृष्टि में सबसे अधिक प्रिय यानी श्रेष्ठ व्यक्ति वह है जो किसी के दुर्व्यवहार से न स्वयं विचलित या दुखी होता है और न ही किसी को अपने दुर्व्यवहार से दुखी करता है, साथ ही सुख दुख की स्थिति में एक जैसा बना रहता है। सदाचार धर्म के नियम तो अनेक हैं, किंतु उन सब का सार महाभारत में इस प्रकार बताया गया है, न तत्परस्य संदिध्यात् प्रतिकूलम यदात्मनः। अर्थात धर्म का रहस्य संक्षेप में इतना ही है कि जो व्यवहार अपने साथ किए जाने पर अच्छा न लगे वैसा व्यवहार दूसरों उसके साथ भी न करना।
0: अभी आप प्रकाश किरण में दामोदर शास्त्री के स्वर में धार्मिक ग्रंथों में सदाचार का महत्व सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:35 हुए हैं। अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान का 298 भाग।

रावण का दूत शुक, जिसको उसने विभीषण के पीछे पीछे श्रीराम की सेना का भेद लेने के लिए भेजा था, लौटकर रावण को वानर सेना की विशालता और बल का विवरण देता है। उसने द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, शट, जामवंत आदि वीरों के अतुलनीय बल की झलक देखी थी और सहज ही परिणाम का अनुमान लगा लिया था। शुक ने रावण को वास्तविकता से परिचित कराने का भरसक प्रयत्न किया। वे करोड़ों शूरवीर रावण को सहज ही परास्त कर देंगे। सभी वानर समुद्र को सोख लेने या पर्वतों से उसे पाट देने को उतारू हैं। केवल राम की आज्ञा उन्हें नहीं मिल रही। स्वयं शुक तथा अन्य गुप्तचरों की भी उन्होंने मारपीट कर दुर्गति कर दी थी। वह तो श्री राम की सौगंध सुनकर उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। शुक संवाद को रावण हंसकर टाल देता है, किंतु जब उसने लक्ष्मण का पत्र उसे दिया तो रावण एक बार भय से कांप गया।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस गान का भाग 298 ए हरिहरन के स्वर में सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। कृषि सामिकी में आज सुनिए रबी की प्याज विषय पर कुछ सुझाव।
1: जब रबी की बात हम करते हैं तो प्याज उत्पादन के लिए बीज की बुआई इसी समय यानी कि जो अभी माह चल रहा है अक्टूबर का, जब बरसात खत्म हो जाए तो बुआई कर दें और 45 से 60 दिन की पौध का रोपण नवंबर दिसंबर में कर सकते हैं, जिससे कि आपको मार्च और अप्रैल तक खुदाई के लिए फसल मिल जाएगी। 8 से 10 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। प्याज की अच्छी फसल लेने के लिए मिट्टी में जो उपलब्ध पोषक तत्व होते हैं उसमें नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जिसे कि हम स्फुर बोलते हैं, पोटाश, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। भूमि को सुविधा अनुसार 2 से 3 बार हल से जुताई करके भुरभुरी बना लें। यदि खेत में अधिक बड़े ढेले हों तो ट्रैक्टर द्वारा रोटावेटर चलाकर भुरभुरा कर लें और समतल कर लें। 1.5 से 2 मीटर चौड़ाई वाली और आपकी आवश्यकता अनुसार लंबाई वाली छोटी छोटी क्यारियां तैयार कर लें। क्यारियों की चौड़ाई ऐसी हो जिसमें मेड़ पर बैठकर आप आसानी से निराई गुड़ाई और अन्य कार्य कर सकें। मेड़ वाली क्यारियों की अपेक्षा ऊंची उठी क्यारियों में कंद का आकार और गुणवत्ता अच्छे होते हैं। प्याज के बीज बहुत छोटे आकार के होने के कारण इनकी बुआई मिट्टी की सतह पर छिड़काव विधि द्वारा की जाती है। जिस खेत में नर्सरी की बुआई करनी हो, बुआई से 15 से 20 दिनों पहले सिंचाई करके काली पॉलीथिन बिछा दें, जिससे खेत के हानिकारक कीट और रोगाणु और खरपतवार के बीज स्वरीकरण द्वारा नष्ट हो जाएं। प्याज के बीज की बुआई 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाकर नर्सरी तैयार करें। इन क्यारियों के मध्य गहरी और चौड़ी नाली जरूर बनाएं, जिससे आसानी से सिंचाई और कृषि क्रियाएं की जा सके। बुआई के पहले बीज को आर्द्र गलन जैसे रोगों से बचाने के लिए फफूंदनाशक दवा से उपचारित करके बुआई करें। बुआई के बाद बीज को बारीक छनी हुई मिट्टी या गोबर की खाद या कंपोस्ट से ढक देने के बाद फव्वारे से सिंचाई करें या फिर क्यारियों के मध्य में जो आपने गहरी नालियां बनाई हैं उसमें पानी धीमी गति से देते रहें ताकि मिट्टी धीरे धीरे गीली होती रहे। प्याज एक उथली और सूक्ष्म जड़ वाली फसल है। इसकी जड़ें जमीन की सतह से अधिकतम 15 सेंटीमीटर तक ही सीमित रहती हैं। रबी की प्याज फसल में 1 सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करना चाहिए। इसके बाद 15 से 20 दिन के उपरांत कंद बनने तक 5 से 6 सिंचाई अवश्य दें। सूक्ष्म टपक सिंचाई तकनीकी द्वारा प्याज की सिंचाई करना सतह सिंचाई की अपेक्षा अच्छा पाया गया है। इससे उत्पादन और गुणवत्ता के साथ ही पानी की बचत होती है और प्याज का उत्पादन भी बढ़ जाता है। प्याज में खरपतवार जैसे मोथा, दूब, बथुआ, दूधी, चौलाई ये सब आपको देखने मिलते हैं। इनका नियंत्रण फसल बढ़वार के पहले कर देना जरूरी होता है, नहीं तो बाद में इनका नियंत्रण हाथ से बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए खरपतवार नाशियों का उपयोग करें जैसे क्यूजालोफॉप इथाइल 25 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करने से खरपतवार को आप नियंत्रण कर सकते हैं। फसल की अच्छी बढ़वार और उत्पादन के लिए

0: 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के मान से अच्छी पकी हुई गोबर की खाद क्यारियां तैयार करने के पहले समान रूप से खेत में मिला दें, या गोबर की खाद यदि आपके पास नहीं है तो 3 टन वर्मी कंपोस्ट की खाद का भी उपयोग आप कर सकते हैं। प्याज की फसल को 100 किलो नत्रजन, 50 किलो स्फुर और 50 किलो पोटाश और 30 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता होती है। फॉस्फोरस यानी कि स्फुर, पोटाश और सल्फर इसकी पूरी मात्रा और नत्रजन की 25 किलोग्राम मात्रा पौध रोपाई के पहले मिट्टी में मिला दें और शेष बची जो नत्रजन की मात्रा है उसको 3 समान भागों में बांट लें और बांट कर पौध रोपण के 30 दिन, फिर 45 दिन और 60 दिन के बाद खड़ी फसल में छिड़क दें। इसमें नत्रजन व अन्य पोषक तत्वों की हानि जल अंतःस्राव के कारण अधिक होती है। ऐसी स्थिति में पौध रोपण के 15 दिन, 30 दिन और 45 दिनों के बाद जल में घुलनशील उर्वरक होते हैं, जो जैसे कि एनपीके आता है 19-19-19 का, इसको 150 से 200 ग्राम प्रति पंप यानी कि आपका पंप जो 15 लीटर का होता है उसमें मिलाकर 60, 75 और 90 दिनों के बाद अवश्य छिड़क दें। साथ ही जल घुलनशील जो पोटेशियम सल्फेट होता है इसका भी 45, 60 और 75 दिनों के बाद पर्णीय छिड़काव करने से उपज में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है।
1: अभी आपने कृषि सामिकी में रबी की प्याज विषय पर विपिन यादव के कुछ सुझाव सुने। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज की सभा के कार्यक्रम। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में सुनिए विश्व दर्पण सुबह 10:10 पर, रूपको का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 9:30 पर, संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10:00। आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम इस प्रकार हैं, सिंधिया जी सुरहान सुबह 9:30 पर, जिले की चिट्ठी सुबह 10:00। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम दिन में 11:00 से, बच्चों का लोकप्रिय कार्यक्रम मुस्कान दिन में 2:30 पर, सुर्खियों में रात 8:00, डगर विकास की रात 8:15 पर। आकाशवाणी जबलपुर के कार्यक्रमों में सुनिए गुड मॉर्निंग जबलपुर, इसमें आज का आकर्षण है रेडियो श्रृंखला संस्मरण संस्कारधानी, आलेख और संकलन श्री राजेश माहेश्वरी का है, सूत्रधार सावनी राजू, वाचक स्वर कृष्ण कुमार वर्मा का और परिकल्पना प्रस्तुतकर्ता प्रशांत परमार, समय 7:20 का। लोक रसधार में संगीता उपाध्याय और रविशंकर श्रीवास्तव के गाय लोकगीत सुनिए 9:00। वंदे मातरम गौरव गान की 1:30 10:05 पर। सारंगा में सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीत 10:20 पर। सायंकालीन सभा में देशभक्ति फिल्मी गीत 6:10 पर। संजबाती में गैर फिल्मी भजन सुनिए 6:30 पर। कृषि जगत में हल्दी एवं अदरक में रोग प्रबंधन विषय पर डॉक्टर वेदांत गौतम से वार्ता 7:21 पर। गुलदस्ता रात 8:30 पर, प्रस्तुत करता होंगे श्याम टहलानी। तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम विवरण।

प्रस्तुत करता है संस्मरण संस्कार धानी, संस्मरणों पर आधारित एक अभिनव रेडियो श्रृंखला जिसके हर एक अंक में संस्कार धानी जबलपुर के अनुभवी और प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों के अपने संस्मरण।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 हुए हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से समाचार अनुप्रसारित करेंगे, बस कुछ ही पलों में।

0: इस्राएल प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहु वर्येण आगामि स्वातन्त्र्य महोत्सवे मंगलदीप प्रज्वालयितुं भारतीय वैमानिकः कैप्टन स्मिथ मच्छारः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च सगौरवम् आहूतौ। दूरवाणी संभाषण वेलायां नेतन्याहु महोदयेन कैप्टन मच्छारस्य वीरतायाः भूरिशः प्रशंसा विहिता। स च भारत इज़राइल देशयोः धीरनायकत्वेन उद्घोषितः। परम्परागतरूपेण एतत् मंगलज्वाला प्रज्वालनस्य गौरवं केवलं इज़राइल नागरिकेभ्यः एव आरक्षितं भवति, येन एतत् आमन्त्रणम् अतीव दुर्लभं विशिष्टं च मन्यते। जापान देशस्य नागोया नगरस्य क्रीडांगणे अद्य सायंकाले 6 वादने आईची नागोया एशियाई क्रीडायाः भव्यं समापनं भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूणी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छार के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके तहत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशियाई खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिजुहू पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bharthru Hari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from the Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from the lower house and 10 from the upper house, while the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta. Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as the chairperson of Committee on Chemicals and Fertilizers. Congress MP Charanjit Singh Channi will be the chairperson of Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing. BJP MP Radhamohan Singh will be the chairperson of the Committee on Defence. BJP MP Rajiv Pratap Rudi has been appointed as the chairperson of the Committee on Water Resources, while the Committee on Rural Development and Panchayati Raj will be headed by the Congress MP Saptagiri Ulaka. BJP MP Nishikant Dubey has been appointed as the chairperson of Committee on Communications and Information Technology. The term of these committees will be effective from the 26th of last month. The Ministry of Education has approved 5 centers of excellence for studies in classical languages. The Department of Higher Education has approved the establishment of the 5 centers of excellence for studies in classical Assamese, classical Bengali, classical Marathi, classical Pali, and classical Prakrit. We have more from our correspondent.
2: The Centers of Excellence will be established at Tezpur University in Assam, Vishwa Bharati University in West Bengal, Deccan College Postgraduate and Research Institute in Pune, Central University of Odisha and Central University of Gujarat. The initiative will provide dedicated institutional support for advanced academic research, preservation and digitization of linguistic and literary heritage and wider dissemination of knowledge relating to these classical languages. The establishment of these 5 centers marks a significant step towards strengthening the institutional ecosystem for the study, research and preservation of India's classical languages. With Suparna Saikia, Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
3: Ministry of External Affairs has summoned the Charged Affairs of Pakistan High Commission to lodge India's strong protest over the continued facilitation of illegal cross-border infiltration from Pakistan. India also categorically rejected the baseless and motivated allegations regarding an incident in the Firozpur sector, Punjab, along the international border on Friday. External Affairs Ministry said that the Pakistani side was informed that 3 individuals infiltrated into Indian territory and, despite multiple warnings by the BSF to return to Pakistan, continued to move towards the border fence. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has invited Indian pilot Captain Smit Machar and Prime Minister Narendra Modi to light the ceremonial flame at Israel's upcoming Independence Day celebrations. During a telephone conversation with Captain Machar, Mr. Netanyahu praised the Indian pilot as a hero of India, Israel and the world for his bravery in falling a mid-air attack. He also wished Captain Machar a speedy and complete recovery and conveyed his best wishes to the pilot's family. Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu has called for concerted efforts to expand coffee cultivation in the state, improve productivity and bean quality, and enhance farmers' incomes through a stronger value chain. Addressing the Hills to Cup Coffee workshop organized by the Coffee Board of India and the State Agriculture Department, Mr. Khandu said coffee cultivation had existed in Arunachal for nearly 5 decades, but its potential remained underutilized. He said the state currently has around 600 hectares under coffee cultivation and stressed the need for technical support, policy interventions and value additions. Iranian President Masoud Pezeshkian said Tehran has adopted a new arrangement to manage what it described as the country's special conditions amid intensifying U.S. economic pressure and sanctions. In a social media post, Pezeshkian accused the U.S. and other adversaries of attempting to cut off Iran's vital economic lifelines to pressure the Iranian people. The Aichi Nagoya Asian Games 2026 are set to conclude today, bringing more than 2 weeks of exciting sporting action to an end. The closing ceremony will be held at the Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, the same venue that hosted the opening ceremony, and is scheduled to begin at 6 p.m. Indian Standard Time. India has put up an impressive performance at this year's Games, securing fourth place in the overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 27 silver, and 37 bronze. And with that, we end this news bulletin.
4: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार.

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नई न्याय संहिता से 3 साल के अंदर मिलेगा न्याय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज तेंदुपत्ता संग्राहकों को 36 करोड़ 17 लाख रुपए के बोनस का करेंगे वितरण। प्रदेश भर में सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां जारी और प्रदेश में हल्की ठंड का असर। रात में ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल भोपाल में नवीन न्याय संहिताओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री शाह ने कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था में जो नए आपराधिक कानूनों का प्रावधान किया गया है, उनके पूर्ण क्रियान्वयन के बाद आने वाले 1.5 वर्षों में FIR से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 3 वर्षों में न्याय दिलाने का काम पूरा किया जाएगा। इन कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद हमारी न्याय व्यवस्था दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणालियों में शामिल होगी।
1: नई न्याय संहिता में समग्र मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी न्याय व्यवस्था तारीख पे तारीख के तानों से जानी जाती थी, मगर विशेषकर बहनों और युवाओं को मैं बताने आया हूं, 1.5 साल के बाद, इसके पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप कोई भी FIR कराए, सुप्रीम कोर्ट तक दोषी को 3 साल में सजा कराने का काम ये नई न्याय संहिता है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पांडुर्णा और मंडला जिलों के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंडला में आयोजित प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण सह जागरूकता एवं प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि बोनस वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे और 9,04,000 से ज्यादा तेंदुपत्ता संग्राहकों को 36 करोड़ 17 लाख रुपए से ज्यादा के तेंदुपत्ता बोनस का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कार्यक्रम में 84 वन समितियों के सदस्यों को 26 करोड़ 56 लाख रुपए से अधिक का कास्ट लाभांश भी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव पांडुर्णा जिले में अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान सांदीपनी स्कूल पांडुर्णा में सेवा मेरा योगदान तथा जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस को अपनी कानून व सुरक्षा व्यवस्था के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना चाहिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में मादक पदार्थों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हो गई है और वर्ष 2029 तक प्रदेश को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए हर स्तर पर सघन प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। वहीं भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सेवा सेतु और सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में गतिविधियां जारी हैं, जिसके तहत आगरमालवा जिले में सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आगरमालवा के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्किल अप प्रोग्राम के 80 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन कल हुआ, जिसमें युवाओं को संवाद, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वर्क प्लेस और डिजिटल टूल किट की ट्रेनिंग दी गई। वहीं नर्मदापुरम जिले के इटारसी स्थित राम वृद्धजन कल्याण समिति वृद्धाश्रम में वृद्धजनों और बच्चों के साथ सेवा गतिविधियों का आयोजन किया गया। मंडला के जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य शिविर और विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। बैतूल के आमला में जनपद पंचायत कार्यालय के नवीन भवन का भूमि पूजन किया गया। वहीं दमोह के जबेरा जनपद सभागार में संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी की उपस्थिति में शिविर लगाकर हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र बांटे गए। मुरैना के पहाड़गढ़ में सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने ग्रामीणों से संवाद कर आवास, BPL, पेंशन, खाद्यान्न पर्ची और दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का वितरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों की 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर पहलवान दीपक पुनिया और 53 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली अंतिम पंघाल को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय कुश्ती के लिए गर्व का क्षण है। पंघाल को बधाई संदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह उपलब्धि युवा महिला पहलवानों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात मुल्लापुर के न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 351 रन बनाए, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने 48 ओवर और 2 गेंदों में 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज कर ली। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मौसम में बदलाव महसूस होने लगा है। दिन में धूप की वजह से जहां गर्मी का असर है, जबकि रात में हल्की ठंड महसूस होने लगी है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान शाजापुर के गिरवर और इंदौर में 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक तापमान धार जिले में 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और विदिशा समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहा। मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान आमतौर पर साफ ही रहेगा, हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कल 13वीं 2 दिवसीय इंडियन माउथहार्गन प्लेयर्स मीट का समापन हुआ। झाबुआ के मेघनगर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सामूहिक श्रमदान और स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। दमोह कलेक्टर ने सोयाबीन भावांतर योजना के तहत जिले में निशुल्क पंजीयन के लिए 23 केंद्र निर्धारित किए हैं। श्योपुर कलेक्टर शीला दहिमा ने आदिवासी विकास खंड कराहल के ग्राम कुंड में महिलाओं को गुटखा और पुड़िया से होने वाले नुकसान का लाइव डेमो देकर ग्रामीणों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। डिंडौरी के समनापुर स्थित उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान में कल संभाग स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। कटनी में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और हेलमेट तथा सीट बेल्ट को लेकर 10 दिवसीय विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। खंडवा जिले के हरसूद में रानी दुर्गावती जयंती समारोह के दूसरे दिन सांस्कृतिक एवं जनजातीय विभाग द्वारा नाट्य प्रस्तुति खेती खेड़ो हरिनाम की छोड़ी न चला जाए घरबार का मंचन किया गया। सीहोर की VIT भोपाल यूनिवर्सिटी का 7वां वार्षिक दीक्षांत समारोह कल संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी रिटायर्ड जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ गेस्ट रहे। वहीं प्रदेश के सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कल इंदौर में कहा कि नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर उद्यमी को प्रदेश सरकार 800 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से अनुदान प्रदान करेगी। लघु उद्योग भारती के उद्यम समापन सत्र में मंत्री कश्यप ने कहा कि नवीन लघु उद्योग लगाने के लिए 50% तक की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। वहीं सागर जिले के सुर्खी में कल मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अलग अलग विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और उपस्थित अधिकारियों से जन कल्याणकारी योजनाओं तथा दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नई न्याय संहिता से 3 साल के अंदर मिलेगा न्याय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज तेंदुपत्ता संग्राहकों को 36,17,00,000 रुपए के बोनस का करेंगे वितरण। प्रदेश भर में सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां जारी और प्रदेश में हल्की ठंड का असर। रात में ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वे पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है गुड मॉर्निंग जबलपुर।

नमस्कार श्रोताओं, गुड मॉर्निंग। जबलपुर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी रेडियो साथी स्मिता दुबे। श्रोताओं, त्योहारों की आमद शुरू हो गई है। नवरात्र, उसके बाद दिवाली, तो आप सभी ने उसकी तैयारियां कर ली होंगी और या फिर उनकी तैयारियों में व्यस्त होंगे। पूजन सामग्री, दिए, रंगोली, बच्चों के लिए खिलौने, ये सब आपको खरीदने होंगे और आपने शॉपिंग लिस्ट भी अपनी तैयार कर ली होगी और अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से लिया जाए। तो मेरा आपको सुझाव है कि आप जो भी खरीदारी करें, स्थानीय बाज़ारों, छोटे रेहड़ी या पटरी पर बैठने वाले हुनरमंद कारीगरों से करें, जिससे इन शिल्पियों को आर्थिक सहायता भी मिले और उनका हुनर भी चमके। इससे विदेशी सामान पर निर्भरता भी कम होगी और अपने देश के लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा भी मिलेगा। यही तो वोकल फॉर लोकल कहलाता है, यानी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और उनका प्रचार प्रसार करना। जब हम स्थानीय चीज़ें खरीदते हैं तो हमारे देश का पैसा देश के अंदर ही रहता है और लोगों को रोज़गार मिलता है। वोकल फॉर लोकल के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे एक जिला एक उत्पाद, पारंपरिक उत्पादों को GI टैग देकर वैश्विक स्तर पर उनका प्रचार प्रसार करना। हम सभी जानते हैं कि युद्ध, महामारी और विदेशी सामानों की उपलब्धता ने हमारे पारंपरिक शिल्प और उद्योगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमारा यह एक छोटा सा कदम भारत को एक विकसित भारत बनाने में मदद करेगा और देश सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बन पाएगा।

गुड मॉर्निंग जबलपुर में, आप सुनिए रेडियो श्रृंखला संस्मरण संस्कारधानी का दूसरा भाग। आज आप इसमें सुनेंगे श्री राजेश माहेश्वरी का संस्मरण वो 72 घंटे। आलेख और संकलन श्री राजेश माहेश्वरी का है, वाचक स्वर कृष्ण कुमार वर्मा का, सूत्रधार सावनी राजू और परिकल्पना प्रस्तुतकर्ता प्रशांत परमार।

नमस्कार। मानव इस अनुपम वसुंधरा में विचरण करते जीवों में सबसे बुद्धिमान प्राणी, लेकिन मानव की मानवता केवल इसमें नहीं है कि वो मानव समाज में अपना आचार व्यवहार कैसा रखता है, बल्कि मानवता का पैमाना ये है कि वो प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति कितना संवेदनशील है। निश्चित रूप से मानव को मानवता की कसौटी पर परखने का ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। संकट के समय में न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पशुधन की रक्षा करना ये भी संस्कारों की बात है। और बात गौवंश की रक्षा की हो तो इसमें संस्कार धानी वासियों के संस्कार बहुत पुराने और गहरे हैं, जिसकी झलक आज के संस्मरण में भी परिलक्षित होती है। संस्मरण संस्कार धानी के आज के अंक में सुनिए वरिष्ठ साहित्यकार श्री राजेश माहेश्वरी का संस्मरण, वो 72 घंटे का वाचन।

गुजरात भीषण अकाल से पीड़ित था। इंसानों की जो दुर्दशा थी वो तो थी ही, पशु पक्षी और जानवर भी बेमौत मर रहे थे। फसलें सूख चुकी थी, खेत दरक गए थे। इंसानों के लिए अनाज की व्यवस्थाएं सरकार कर रही थी, लेकिन जानवर विशेष रूप से गाय भैंस आदि बेमौत मर रहे थे। इंसानों को अपनी जान के लाले पड़े थे, वे पशुओं के लिए चाहकर भी कुछ कर सकने में असमर्थ थे। केंद्र सरकार ने गुजरात में चारा और भूसा भेजने के लिए रेलवे की सुविधा निशुल्क कर दी थी। पूरे देश में लोग गुजरात की दुर्दशा देख और समझ रहे थे, मदद भी कर रहे थे, लेकिन समस्या थी कि वहां के पशुओं के जीवन की रक्षा किस प्रकार की जाए। मैंने सोचा, मेरा नगर संस्कार धानी कहलाता है। मेरे पितामह स्वर्गीय सेठ गोविंद दास जी ने भी गौ रक्षा के लिए आंदोलन किए थे। मुझे भी गुजरात में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रही गायों के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने निश्चय किया, मैं एक रैक भरकर भूसा गुजरात इस प्रकार भिजवाऊंगा कि और लोगों की संवेदनाएं इस दिशा में जागृत हों। हमारे क्षेत्र में शहपुरा और पाटन क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे परिवार की खेती की जमीनें हैं और यहां से आवश्यक मात्रा में भूसा प्राप्त हो सकता है। वहां के क्षेत्रीय विधायक ठाकुर सुब्रन सिंह मेरे मित्र थे। वहां के किसानों से भी हमारे पारिवारिक संबंध थे। ये विचार आने के बाद दूसरे दिन सुबह ही मैं ठाकुर सुब्रन सिंह से फोन पर बात करके उनके पास पहुँच गया। मेरी सारी बातें सुनकर वे बोले कि आपका विचार तो बहुत अच्छा है, गौरक्षा तो हमारा कर्तव्य है, मैं आपको विचार करके जल्दी ही उत्तर दूंगा। मुझे लगा कि वे इस कार्य से बच रहे हैं। वहां से आकर मैं अन्य विकल्पों पर विचार करने लगा। इस बीच 2-3 दिन का समय बिना किसी प्रगति के बीत गया। अचानक तीसरे दिन सुब्रन सिंह जी का फोन आया। वे बोले, आप मेरे पास जिस कार्य के लिए आए थे उसके विषय में आपने क्या किया? आप केवल बात ही करने आए थे या कुछ करना भी चाहते हैं? मैंने कहा, आपने कहा था कि आप विचार करके बतलाएंगे, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। वे बोले, आप समय निकाल कर आ जाइए तो हम काम प्रारंभ कर दें, तब तक मैं यहाँ के अन्य किसानों आदि से भी इस विषय पर चर्चा कर लेता हूँ। अगली मुलाकात में ये तय हो गया कि गर्मी का मौसम देखते हुए दिन में संपर्क करना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए रात के समय हम किसानों से संपर्क करेंगे। ये काम अगले 10 दिन में पूरा करना था, इसलिए उसी दिन शाम से काम प्रारंभ कर दिया। मैंने जब ये बात अपने चचेरे भाई श्री कृष्ण मालपानी को बतलाई तो उसने मुझे अपनी मोटर देते हुए कहा कि इसके लिए आप इस मोटर का प्रयोग कीजिए, गांव में आप अपनी कार से सब जगह संपर्क नहीं कर पाएंगे। संध्या काल में मैं सुब्रन सिंह जी के यहाँ शहपुरा पहुँच गया। वे पूरा रूट मैप तैयार कर चुके थे। उसमें उन्होंने संपर्क के लिए गाँवों का क्रम, किसानों के नाम और नंबर आदि लिखकर तैयार कर लिए थे। उन्होंने ये भी अनुमान लगा लिया था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो उनकी तैयारी देखकर मेरा उत्साह दुगना हो गया। उनके इस कार्यक्रम में मैंने केवल इतना ही परिवर्तन किया कि कार्य का श्री गणेश अपने गांव मनखेड़ी से किया जाए। मनखेड़ी में जब हम लोगों ने वहाँ के किसानों से बात की तो वे न केवल सहयोग के लिए तैयार थे, वरन सहयोग करते हुए उनके मनों में जो प्रसन्नता थी वो उनके चेहरे और उनकी बातचीत में भी झलक रही थी। हम एक के बाद दूसरे गांव जाकर संपर्क करने लगे। गौ माता की रक्षा के लिए सहयोग देने हर आदमी तैयार था, जिसमें जितना सामर्थ्य था वो उससे बढ़कर सहयोग कर रहा था। हम जहां भी गए, हमारी बात सुनने के बाद कई गांवों में तो लोगों ने हमारा तिलक किया और मालाएं पहनाकर हमारा सम्मान किया। ऐसा कोई गांव नहीं रहा जहां बिना खाए पिए हमें गांव से जाने दिया गया हो। इस कार्य में मेरी मोटर में तो मैं और सुब्रन सिंह जी और उनका एक साथी ही रहता था, किंतु कुछ और ग्रामवासी भी अपनी गाड़ियों पर हमारे साथ इस कार्य में लग चुके थे। परिणाम यह था कि हमारा 3-4 गाड़ियों का जत्था लगातार काम में लगा रहता था। एक दिन हम सभी नजदीकी गाँव में पहुंचे और हमने अपने आने का कारण उन्हें समझाया तो वे सब बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर साहब वहाँ के प्रतिष्ठित किसान थे। हमारी बात सुनकर उन्होंने तत्काल कह दिया कि वे मेरी कोठी में जो भूसा पड़ा है आप जितना चाहे ले लीजिए,
जब हमने उन्हें बतलाया कि इसे भेड़ाघाट स्टेशन पर पहुंचाना है तो उन्होंने हमसे कहा कि आप निश्चिंत रहिए, ये सारा भूसा समय पर वहां पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब आपको इस गांव में किसी और से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो सबसे बात कर लूंगा और जो जितना सहयोग देना चाहेगा वो वहाँ उतना भूसा पहुँचा देगा। इस गाँव में अब आप अपना समय खर्च मत कीजिए। उनके आश्वासन के बाद जब हम वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने हमें नहीं जाने दिया। आधी रात को हमारे लाख मना करने के बाद भी उन्होंने खाना बनवाया, खाना खिलाया, तिलक लगाया, माला पहनाई और विदाई देने के बाद ही हमें वहां से जाने दिया। उस दिन वहां इतना समय हो गया था कि हमें जिन दो गांवों में और उसी रात जाना था वहां नहीं जा सके, हमें वहां अगले दिन जाना पड़ा। गाँव में एक सज्जन ने प्रश्न पूछा कि ये जो भूसा इकट्ठा किया जा रहा है इसके भेजने की क्या व्यवस्था है और इस बात की क्या गारंटी है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। उनका प्रश्न सुनकर सोबरन सिंह जी मेरी ओर देखने लगे। मैंने उन्हें बतलाया, सरकार ने बिना किसी भाड़े के रेल द्वारा इस भूसे को गुजरात भेजने की व्यवस्था की है। वहां गायों को अलग अलग स्थानों पर एकत्रित किया गया है, ये भूसा राजकोट में भेजा जाना है। वहां के सांसद डॉक्टर वल्लभ भाई कठेरिया इसे प्राप्त करेंगे और फिर उनकी देखभाल में ये भूसा गायों तक पहुंचेगा, जिससे गायों को भोजन मिल सके और उनकी जीवन रक्षा हो सकेगी। रेलवे ने एक रैक भी अलॉट कर दिया है जो आज से 10वें दिन भेड़ाघाट स्टेशन पर लग जाएगा और 11वें दिन रवाना हो जाएगा। उसे VIP ट्रीटमेंट दिया जाएगा और वो सीधा राजकोट पहुंचेगा। बाबू साहब आप चिंता मत कीजिए, इस कार्य में आपकी सहायता करूंगा। मैं प्रतिदिन सुबह भेड़ाघाट स्टेशन जाऊंगा और वहां की व्यवस्थाएं संभाल लूंगा, इससे आपका दिन का समय बचेगा, वही बुजुर्ग बोले। इसके बाद उन्होंने वहीं बैठे बैठे 10-12 लोगों को फोन लगाकर बात की और ढेर सारे भूसे की व्यवस्था और कर दी। वे सुबह 8 बजे स्टेशन पहुँच जाते थे, भूसे को व्यवस्थित तरीके से रखवाने की व्यवस्था करते थे और उसका हिसाब रखते थे। इस भूसा संग्रह में एक बात जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है वो ये कि इस कार्य का हल्ला पूरे क्षेत्र में हो चुका था। इसका परिणाम ये रहा कि जहां कहीं भी हम लोग जाते, लोग बड़े आदर और सम्मान के साथ हमारा स्वागत करने लगे। जिन होटलों या ढाबों आदि में हम चाय पीते या जलपान करते, कोई भी हमसे पैसे लेने के लिए तैयार नहीं होता था। इस बात की जानकारी नगर के समाचार पत्रों को भी हो गई थी। समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों के भी साक्षात्कार लेकर प्रकाशित किए गए। ये भूसा संग्रह एक आंदोलन का रूप ले चुका था, जिसकी नियमित समीक्षा लोगों द्वारा और अखबारों द्वारा की जा रही थी। भेड़ाघाट स्टेशन का पूरा प्लेटफॉर्म भूसे से भरा हुआ था। 7 दिन बीत चुके थे, हम लोग संतुष्ट थे कि इतना भूसा एकत्र हो गया है कि एक रैक हम लोग संतुष्ट थे कि इतना भूसा एकत्र हो गया है कि एक रैक आसानी से भर जाएगा। हमें लग रहा था कि हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है और अब केवल भूसे को रैक में भरकर भेजना ही बचा है। रेलवे ने भी उत्साहपूर्वक सहयोग दिया था और रैक 10वें दिन की जगह 9वें दिन ही स्टेशन पर आकर खड़ा हो गया। उसमें 28 बैगन थी। भूसा भरा जाने लगा। जब पूरा भूसा रैक में भरा जा चुका तो ये देखकर हमारे हाथ पैर ही फूल गए कि पूरा भूसा भरे जाने के बाद भी एक भी वैगन पूरी तरह नहीं भरी थी। सभी में आधा अधूरा भूसा भरा था। रैक के रवाना होने में मात्र 72 घंटे बाकी थे और पूरा रैक भरने के लिए उससे भी अधिक भूसा और चाहिए था जितना भरा जा चुका था। 10 दिनों में हमने जितना भूसा एकत्रित किया था उससे अधिक भूसा 72 घंटों में कैसे पाया जा सकेगा। रात के लगभग 10 बजे का समय था। हम लोग चिंता में डूबे हुए प्लेटफॉर्म पर विचार कर रहे थे, तभी एक चमत्कार हुआ। एक किसान साइकिल पर पीछे एक बोरा भूसा भरकर लाया और उसने वो एक वैगन में खाली कर दिया। उसके बाद वो हम लोगों के पास आया। वो इस कार्य के लिए हमें बधाई तो दे ही रहा था, साथ ही उसके मन में बहुत थोड़ा सहयोग देने का संकोच भी था। वो हमें दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। उसके कुछ ही देर बाद एक और बैलगाड़ी भरकर भूसा लेकर आई और फिर उसके बाद तो थोड़े थोड़े अंतर से कोई बैलगाड़ी में भरकर भूसा लाता और कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में लाकर भूसा भर जाता।
ये क्रम जो प्रारंभ हुआ तो तब तक चलता रहा जब तक कि पूरा रैक भर नहीं गया। ये ईश्वर की कृपा थी कि रैक पूरे भर चुके थे। अगले दिन प्रातः 7 बजे ये विशेष रैक गुजरात के लिए रवाना हो गया। रवानगी के समय रेलवे के सभी वरिष्ठ अधिकारी, प्रतिष्ठित नागरिक, दानदाता, ग्रामवासी और पत्रकार सभी उपस्थित थे। DRM रेलवे ने स्वयं हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। रवानगी के पूर्व ड्राइवर और गार्ड हम लोगों से मिलने आए और उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि उन्हें इस पावन कार्य को करने का सौभाग्य और दायित्व मिला है। इस ट्रेन को बिना कहीं रोके सीधा राजकोट पहुंचाए जाने की व्यवस्था की गई थी। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये ट्रेन राजकोट पहुंच गई। वहां सांसद डॉक्टर वल्लभ भाई कठेरिया ने उसका स्वागत किया और वो भूसा गायों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। उनकी व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि कुछ ही घंटों में वो 481 टन भूसा अपने गंतव्य पर पहुंच गया। वहां के जिलाधीश ने फोन पर हम लोगों को भूसा प्राप्त होने की सूचना दी और उसके समुचित उपयोग से हमें अवगत कराया। उन्होंने ये भी कहा कि यदि हम लोग चाहें तो अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। ये आपके प्रदेश से प्राप्त हुआ पहला और महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए हमारा राज्य आपका आभारी है। अगले दिन हमें गुजरात के विधानसभा अध्यक्ष का संदेश प्राप्त हुआ। वे चाहते थे कि हम लोग वहां पहुंचें और हमारा सम्मान किया जाए। हम लोग विगत 15 दिनों में बहुत थक चुके थे। हमने विनम्रता पूर्वक उनके आमंत्रण को अस्वीकार करते हुए सधन्यवाद क्षमा याचना की। एक दिन बाद नगर के गुजराती मंडल ने डॉक्टर राजेश धीरावाणी के नेतृत्व में हम लोगों को एक समारोह में आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। इस प्रकार के और भी अनेक कार्यक्रम विभिन्न संस्थाओं ने किए, किंतु जो प्रसन्नता, जो आत्मसंतोष, जो आनंद और जो अनुभूति मुझे भूसे का रैक रवाना करते हुए हुई थी, वैसी जीवन में फिर कभी नहीं हुई।

संस्मरण संस्कार धानी के आज के अंक में आपने सुना संस्मरण वो 72 घंटे। आलेख श्री राजेश माहेश्वरी, वाचक कृष्ण कुमार वर्मा, परिकल्पना और प्रस्तुतकर्ता प्रशांत परमार। संस्मरण संस्कार धानी के आज के अंक में बस इतना ही। हर रविवार एक नए संस्मरण के साथ हम फिर उपस्थित होंगे इसी समय संस्मरण संस्कार थानी में। अब अनुमति दीजिए साबनी राजू को। नमस्कार।

0: तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क।
3: आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग जबलपुर। श्रोताओं, आजकल की व्यस्त दिनचर्या में हर चीज़ प्रभावित हो रही है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। लोगों में सहनशीलता खत्म होती जा रही है, रिश्तों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता जा रहा है। ऐसा ही एक रिश्ता पति पत्नी का है, जिसे 7 जन्मों का संबंध माना जाता है। लेकिन अब यहाँ भी स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। जरा सी भूल या चूक भी इस रिश्ते को दांव पर लगा देती है। जरा जरा सी बात पे रिश्ते टूट रहे हैं और नौबत तलाक तक आ जाती है। तलाक एक इस्लामिक शब्द है, जब एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सभी वैवाहिक संबंधों को समाप्त करने के लिए इन शब्द का प्रयोग करता है। इसलिए सामाजिक बुराई के खिलाफ भारत की संसद द्वारा एक ऐसा ऐतिहासिक कानून पारित किया गया सन 2019 में, जिसका नाम था मुस्लिम महिला अधिनियम या 3 तलाक अधिनियम, जिसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को तत्काल 3 तलाक के मनमाने चलन से कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के मुख्य बिंदु हैं कि 3 तलाक, वह चाहे मौखिक हो, लिखित हो, SMS या ईमेल द्वारा दिया जाए, पूरी तरह गैर कानूनी माना गया है। इसके लिए अधिकतम 3 वर्ष की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। यह एक गैर जमानती अपराध है। वास्तव में यह प्रथा लैंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है।

हम दिल दे चुके सनम का यह गीत अभी आपने सुना के स्वर में। संगीतिका संडे में अगला गीत है फिल्म कठपुतली का, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, शैलेंद्र के शब्द, शंकर जयकिशन का संगीत।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के स्वर में फिल्म विजय का यह गीत अभी आप सुन रहे थे, शब्द निदा फाजली के, संगीत शिव हरी का। इस गीत के साथ ही आज का गुड मॉर्निंग जबलपुर अब संपन्न होता है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ इजाज़त दीजिए अपनी रेडियो साथी स्मिता दुबे को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह। भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाढ़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
4: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय

0: मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
2: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है, जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियान ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पजिशकियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को चार प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर

0: पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
0: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, गोल्डन 5 के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक। पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ोती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झूलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हाड़ोती।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। नए अध्यक्ष की नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया बंगाली मराठी पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक

0: flag bearer for closing ceremony. For details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का पहला नगमा फिल्म चिराग से है। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार मदन मोहन।

विजू शाह के संगीत निर्देशन में पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज़ में फिल्म मोहरा का ये गीत आपने सुना, गीत आनंद बख्शी का और इंदीवर का। अब सुनिए फिल्म दिल चाहता मैं श्रीनिवास को, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार शंकर एहसान लाए।

दोस्त फिल्म के इस गीत को सुना किशोर कुमार की आवाज़ में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और अब सुनिए फिल्म दादा का गीत यशुदास के स्वर में, गीत कुलवंत जानी का, संगीत उषा खन्ना का।

दादा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:58 हुए हैं। न्यूज़ हेडलाइंस अब हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। कार्यक्रम लोक रसधार में आज सुनिए संगीता उपाध्याय और रविशंकर श्रीवास्तव के गाए कुछ लोकगीत। पहले सुनते हैं संगीता उपाध्याय के स्वर में यह लोकगीत।

लोक रसधार में अभी आप सुन रहे थे संगीता उपाध्याय के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत, और अब सुनिए रविशंकर श्रीवास्तव के गाए कुछ लोक भजन।

इस कर्मा गीत के साथ ही आज का लोक रसधार अब संपन्न होता है। आज आप इसमें सुन रहे थे संगीता उपाध्याय और रविशंकर श्रीवास्तव के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। सिंधिया जी सुरहाण, यह कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे बस कुछ ही पलों में।

साथियों जय झूलेलाल। सिंधियत जी सुरहाण में तवा सबनी के मां मनोज सोनी पंजवाणी पारा सिक भरी नमस्ते। जान ए विंदुर सा भरपूर हिन तवा जे पसंदीदा कार्यक्रम में अज जी पहरी जान आहे संकल्प सा सेवा ए मेक इन इंडिया। साथियों संकल्प सेवा अभियान यो राष्ट्रव्यापी अभियान 17 सितंबर का वठी 17 अक्टूबर तुणी हलण वारो राष्ट्रव्यापी अभियान आहे। यो अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे 25 सालन जी लोक सेवा ए संदस जन्मदिन जे उपलक्ष्य में शुरू कयो वयो आहे। इन अभियान जे तहत देश जे नौजवानन ए नागरिकन के विकसित भारत @2047 जे संकल्प सा जोड़ियो वनी रहयो आहे। इन अभियान जे तहत साफ सफाई जा कम, वृक्षारोपण यानि वण लगाइण, रक्तदान कैंप ऐं समाज जी भलाई ला बे भी घणेई कम कया वनी रहा आहिन। यो 1 महीने जो हलण वारो राष्ट्रव्यापी अभियान आहे। इन खां पोइ हाणे अॻियां वधंदासीं मेक इन इंडिया अभियान जे पासे। इहो अभियान भारत सरकार पारां 25 सितंबर 2014 ते शुरू कयो वियो आहे। इन जो ख़ासि मक़सदु भारत खे पूरी दुनिया जो मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन ऐं इनोवेशन जो हब बणाइणो आहे। इन अभियान जे चालू थियण खां पोइ असांखे घणेई फ़ाइदा थिया आहिनि, असांजे मुल्क खे घणेई फ़ाइदा थिया आहिनि। जीअं त असांजे मुल्क में विदेशी निवेश वधी रहियो आहे, घणेई व्यापारिक नवा मौक़ा मिली रहिया आहिनि। असांजो मुल्क भारत आत्मनिर्भर भारत बणजण जी राह ते वधी रहियो आहे। या त ही ॻाल्हि साथियों मेक इन इंडिया अभियान जे बारे में। साथियों हिन वक़्तु पितृपक्ष हली रहियो आहे, पितृपक्ष माने श्राद्ध। ऐं हिन श्राद्धनि जे ॾींहनि में असां पंहिंजे वॾड़नि खे यादि करे सची श्रद्धा ऐं प्रेम सां उन्हनि खे श्रद्धांजलि अर्पित कंदा आहियूं, तर्पण कंदा आहियूं ऐं विधि विधान सां श्राद्ध कंदा आहियूं। साथियों असां पंहिंजे वॾड़नि सां जेको समय बितायोसीं, जेके उन्हनि असांखे शिक्षाऊं ॾिनियूं, जेके ॻाल्हियूं ॿुधाइनि, उहे ॻाल्हियूं असांखे हमेशह यादि ईंदियूं आहिनि। उन्हनि सां गॾु गुज़ारियल वक़्तु असां कॾहिं कोन विसरंदा आहियूं। हमेशह उन्हनि जूं सुहिणियूं यादियूं असां सां गॾु हूंदियूं आहिनि।

भगत घनश्याम जो ही वॾड़नि जी यादि में गीत हुयो। हाणे अॻियां वधंदासीं अॻिली ॼाण पासे। भारतीय वायु सेना दिवस इन ॾींहं जी अधिकृत स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ते कई वई हुई। तंहिं करे हर साल इन ॾींहं खे वायु सेना ॾींहं जे रूप में मल्हायो वेंदो आहे। इन ॾींहं जो मोटो या जंहिंखे ध्येय वाक्य स्लोगन जेको चवंदा आहियूं उहो आहे नभ स्पृशम दीप्तम, आकाश खे गौरव सां छुअण, जेको भगवत गीता जे 11 अध्याय मां खयो वियो आहे। भारतीय वायु सेना दुनिया जी चौथी सभ खां वॾी वायु सेना आहे। इहा असांजे लाइ तमामु फ़ख्रु ऐं गर्व जी ॻाल्हि आहे। साथियो, इहो ॾींहुं असां पंहिंजे वीर जवाननि खे सम्मानित करण लाइ मल्हाईंदा आहियूं ऐं गॾोगॾु जेके वीर जवान शहीद थिया आहिनि उन्हनि खे बि श्रद्धांजलि अर्पित करे उन्हनि जी शहादत खे गौरवान्वित कंदा आहियूं। साथियो, इन ॾींहुं घणेई प्रकार जा आयोजन जीअं त भव्य परेड ऐं एयर शो थींदा आहिनि, घणेई जॻहियुनि ते हवाई करतब ॾेखारिया वेंदा आहिनि ऐं इन्हनि खे पुरस्कृत कयो वेंदो आहे। साथियो, इन खां पोइ जेका अॻिली ॼाण आहे सा आहे विश्व मेंटल हेल्थ डे, माना मानसिक सिहत सां जुड़ियल इहो ॾींहुं। हर साल 10 अक्टूबर ते पूरी दुनिया में मानसिक सिहत जी सुजाॻी पैदा करण लाइ इहो ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे। हिन ॾींहं जी शुरूआति साल 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ जी तरफ़ां कयो वियो हो ऐं इन ॾींहं जो मक़सदु माण्हुनि में वधंदड़ मानसिक बीमारियूं जीअं त तनाव, चिंता, डिप्रेशन ऐं इन टाइप जूं जेके बीमारियूं आहिनि उन्हनि जे प्रति सुजाॻी आणणु, इन खां बचाव जा तरीक़ा ऐं पंहिंजो पाण खे मानसिक रूप सां कीअं शांति रखिजे, कीअं थधो रखिजे, इन जे बारे में माण्हुनि ताईं ॼाण पहुचाइणु आहे। हाणे अचो त ॿुधूं था रूना लैला जो गायल ही गीत।

0: साथियों ही गीत थियो रूना लैला जो ऐं हाणे समय आहे अॼु जे काव्य पाठ जो। अॼु असां सां गॾु स्टूडियो में कवि आहिनि भा मनोज कृपलाणी जी। अचो त ॿुधूं था हिननि खां हिननि जूं कुझु सुहिणियूं रचनाऊं।
1: जय झूलेलाल दोस्तों, मुंहिंजी पहिरीं कविता आहे जेकी तरनुम में पेश कंदुमि। अॼु असां वरी नओं इतिहास

अॼु असां वरी नओं इतिहास लिखंदासीं। सिंध हिंद जूं ॻाल्हियूं जंहिंमें सभु ख़ासि लिखंदासीं। अॼु असां वरी नओं जंहिंमें लॾ पटाण जी हूंदी कहाणी, सिंधु घाटीअ जी सभ्यता पुराणी। जंहिंमें लॾ पटाण जी हूंदी कहाणी, सिंधु घाटीअ जी सभ्यता पुराणी। सिंधु नदीअ जो मिठड़ो पाणी, मोहन जो दड़ो सिंध जी निशानी। मोहन जो दड़ो सिंध जी निशानी। सिंध में असांजो कीअं हो वास लिखंदासीं। असां वरी अॼु नओं इतिहास लिखंदासीं। जंहिंमें हूंदा कवि शाइरनि जा नाला, शाह सचल सामीअ जा रसाला। सिंधी दरवेश संत निराला, जपी सदा जिन झूलण जी माला। जपी सदा

ਸੱਚ ਸੱਚ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੋ ਦਾਸ ਲਿਖੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਵਰੀ ਨੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਵਰੀ ਨੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੰਦਾ ਸੀ ਸਿੰਧ ਹਿੰਦ ਜੂੰ ਜਹਿਮੇ ਗਾਲੂੰ ਖਾਸ ਲਿਖੰਦਾ ਸੀ ਜੈ ਝੂਲੇਲਾਲ ਮੁੰਹਿੰਜੀ ॿी कविता आहे ज़िंदगी अञा अलाए छा ॾेखारे ज़िंदगी अञा अलाए छा ॾेखारे पल में जारे पल में मारे पल में जारे पल में मारे ज़िंदगी अञा अलाए छा ॾेखारे मतिलब जे बिना रिश्तो को बि कंहिं सां रखे नथो मतिलब जे बिना रिश्तो को बि कंहिं सां रखे नथो बचो न आ माण्हू को अहिड़ो जंहिंखे हित को ठॻे नथो रुगो केराइनि हिक ॿिए खे को कंहिंखे नथो चाढ़े रुगो केराइनि हिक ॿिए खे को कंहिंखे नथो चाढ़े ज़िंदगी अञा अलाए छा ॾेखारे ज़िंदगी अञा अलाए छा ॾेखारे वसे थो मींहुं प्यार वारो पर माण्हू को भिॼे नथो वसे थो मींहुं प्यार वारो पर माण्हू को भिॼे नथो ॼाणे थो फल मिलंदो पाप जो माण्हू पर को ढिॼे नथो वसे थो मींहुं प्यार वारो पर माण्हू को भिॼे नथो ॼाणे थो फल मिलंदो पाप जो माण्हू पर को ढिॼे नथो ॿोड़े थो ॿेड़ी हिक ॿिए जी ॿोड़े थो ॿेड़ी हिक ॿिए जी को कंहिंखे नथो तारे ॿोड़े थो ॿेड़ी हिक ॿिए जी को कंहिंखे नथो तारे ज़िंदगी अञा अलाए छा ॾेखारे ज़िंदगी अञा अलाए छा ॾेखारे ॾिसां वेठो मां माण्हुनि खे भलो को कंहिंजो करे नथो ॾिसां वेठो मां माण्हुनि खे भलो को कंहिंजो करे नथो मरनि वेठा पाण रोज़ पर मरनि वेठा पाण रोज़ पर अहंकार कंहिंजो मरे नथो ॾिसां वेठो मां माण्हुनि खे भलो को कंहिंजो करे नथो मरनि वेठा रोज़ पाण पर अहंकार मरनि वेठा रोज़ पाण पर अहंकार कंहिंजो मरे नथो करे नथो कमु को बि पंहिंजो करे नथो कमु को बि पंहिंजो ॿियनि ते वेठो भाड़े ज़िंदगी अञा अलाए छा ॾेखारे ज़िंदगी अञा अलाए छा ॾेखारे जय झूलेलाल दोस्तो हाणे अॻियां जय झूलेलाल चवंदे मां इहे चऊं

हे करे बुतुंजो माथी नथो सगां माथी नथो सगां तुंहिंजी खुशीअ में ई यार मुंहिंजी खुशी आहे तुंहिंजी खुशीअ में ई यार मुंहिंजी खुशी आहे समझी खुदा मां तोखे कई तुंहिंजी बंदगी आहे समझी खुदा मतो के कई तुंहिंजी बंदगी आहे अॼु बिना तुंहिंजे सहारे अॼु बिना तुंहिंजे सहारे मां बि नथो सघां अॼु बिना तुंहिंजे सहारे मां बि नथो सघां चाहे करे बि तुंहिंजो चाहे करे बि तुंहिंजो।

तमामु सुहिणियूं रचनाऊं भाउ मनोज कृपलाणीअ पारां। इन्हनि जी विशेषता आहे त इहे गीत लिखंदा आहिनि ऐं इन्हनि जा घणेई गीत सिंधी फिल्मुनि में बि अची रहिया आहिनि। हिननि तरन्नुम में ऐं काव्य जे रूप में पंहिंजूं तमामु सुहिणियूं कविताऊं ॿुधायूं। साथियो, हिन हफ़्ते जे आख़िर में माता राणीअ जा नवरात्रा बि चालू थियण वारा आहिनि। माता राणीअ जा एकाणा, अचो त माता राणीअ जी सेवा में, माता राणीअ जे दर ते अॻुवाट में ई ओराणो ॻायूं।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भिंड जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल शर्मा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। भिंड जिले में धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए किसानों द्वारा पंजीयन किया जा रहा है। किसान अपना पंजीयन 10 अक्टूबर तक करा सकते हैं। किसानों की सुविधा के लिए जिले में 24 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा के उपार्जन के लिए किसानों की पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। पंजीयन के पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग के लिए

जिला स्तरीय जिला उपार्जन समिति, उपखंड स्तरीय उपार्जन समिति का गठन भी किया गया है। इसके साथ ही पंजीयन एवं उपार्जन कार्य में आने वाली तकनीकी समस्याओं के निराकरण के लिए तकनीकी समिति का गठन भी किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान की बात करें तो जिले के मऊ कस्बे में पिछले दिनों इस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस शिविर में 364 आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान 328 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। वहीं अन्य 36 आवेदनों के लिए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान मंत्री श्री शुक्ला, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला पंचायत सीईओ ने प्राप्त आवेदनों को लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने संबल योजना के 7 हितग्राहियों, राशन पात्रता पर्ची के 2 हितग्राहियों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 4 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण के बाद मौके पर एक लाभार्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। वहीं एक लाभार्थी को 2 लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि भी प्रदान की गई। भिंड जिले में 70वीं शालेय राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 6 अक्टूबर से जिला मुख्यालय में किया जाएगा। 10 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 17 वर्ष तक के बालक और बालिका शामिल होंगे। आयोजन की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। साफ सफाई और शौचालय व्यवस्था, बच्चों के ठहरने और आवागमन, विजेताओं के लिए मेडल, ट्रॉफी तथा आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी ली गई और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिन स्कूलों में बच्चे रुकेंगे वे सभी स्कूल संचालक अपने स्कूल की साफ सफाई कराएं। उन्होंने प्रतियोगिता ग्राउंड की साफ सफाई करने नगरपालिका भिंड को निर्देश दिए। इसके साथ ही खिलाड़ियों के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रतियोगिता स्थल पर स्वास्थ्य दल को उपस्थित रहने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए। भिंड जिला रोजगार कार्यालय की ओर से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासकीय संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI भिंड में बीते दिनों कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। इस शिविर में शासकीय सांदीपनी उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहगांव के 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में विशेषज्ञों एवं अधिकारियों द्वारा छात्रों को अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार सही कैरियर चुनने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। छात्रों को नवीन व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न ट्रेड जैसे ITI, TES, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि तथा ITI में संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने छात्रों को शासन की रोजगार उन्मुखी योजनाओं तथा जिला रोजगार कार्यालय की सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। वहीं छात्रों ने भी उत्साहपूर्वक अपने प्रश्न पूछे और करियर संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत भिंड जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में बीते दिनों भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्र छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, युवा ऊर्जा, डिजिटल भारत, विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत सहित सपनों का भारत विषय पर अपने भाषण कौशल का प्रदर्शन किया। इस दौरान रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। जिले के शासकीय संभागीय ITI भिंड, उद्योग विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, श्रम विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के संयुक्त तत्वावधान में शासकीय MGS महाविद्यालय भिंड में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस रोजगार मेले में जिले के युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। मेले में कुल 158 आवेदकों द्वारा पंजीयन कराया गया। उपस्थित विभिन्न कंपनियों द्वारा आवेदकों की शैक्षणिक योग्यताओं, कौशल एवं अनुभव के आधार पर साक्षात्कार अध्ययन प्रक्रिया संपादित की गई, जिसके बाद 149 आवेदकों का प्राथमिक रूप से चयन किया गया। वहीं भिंड जिले के उमरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सेवा से संकल्प अभियान के अंतर्गत पौधरोपण एवं रक्तदान शिविर का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा रहे। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए परिसर में कुल 100 पौधे रोपे गए। वहीं मानव सेवा के संकल्प के साथ आयोजित रक्तदान शिविर में 14 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। भिंड जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी भिंड जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल शर्मा का था, वाचन था अभिषेक कटियार का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी में बात एक ऐसे ऐतिहासिक अध्याय की, जब वल्लभ भाई पटेल के अनुरोध पर 15 अगस्त 1947 को ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से सुबह 6:30 पर पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने संपूर्ण वंदे मातरम का लाइव या सजीव गायन प्रस्तुत किया। इस प्रसारण से पहले उन्होंने एक शर्त रखी कि वे इस गीत को केवल खड़े होकर ही गाएंगे, क्योंकि झुककर या बैठकर अपनी मातृभूमि को वंदन और नमन करना उन्हें स्वीकार नहीं था। संगीत स्वाभिमान और देश प्रेम की यह अनूठी मिसाल आज भी हमें गौरवान्वित करती है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:10 हुए हैं। विश्व दर्पण यह कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे बस थोड़ी ही देर में।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को किया तलब। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह। भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। और भारत ने वेस्टइंडीज को 2-1 से हराकर एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से।

0: इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बातचीत की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति प्रज्वलित करने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबुधाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भी कैप्टन स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। उन्होंने स्मिथ और अन्य लोगों की वीरता और साहस के प्रति सम्मान का भाव और गहरी श्रद्धा व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाड़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगे और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
2: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति फिजिस्कियन ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता के समर्थन और सरकार के प्रयासों से इन कोशिशों का मुकाबला किया जा रहा है। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिका ने ईरान के विमानन क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ाया है। ईरानी एयरलाइनों की मदद करने वाली विदेशी कंपनियों को प्रतिबंधों की चेतावनी दी गई है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्धविराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्धविराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के मुताबिक भारत के अलावा तुर्की, मिस्र और अमरीका ने भी युद्ध विराम के प्रस्ताव दिए। यूक्रेन का कहना है कि समझौते में युद्ध के अलावा ऊर्जा और बंदरगाहों पर हमले रोकना तथा काला सागर में गतिविधियां भी शामिल होनी चाहिए। इससे पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि रूस संघर्ष का समाधान निकालने के भारत के प्रयासों का स्वागत करता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रखे जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चलता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। श्री जेलेंस्की के अनुसार रूस के सैनिकों के मारे जाने और घायल होने की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से

0: राष्ट्रपति पुतिन अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यमन के हूती नियंत्रित सना और सादा इलाकों पर हमले किए जाने की पुष्टि की है। ये कार्रवाई हूती विद्रोही समूह के इस दावे के बाद हुई है कि जब उसने रियाद में सऊदी अरब की अरामको तेल कंपनी को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे। इस घटनाक्रम से एक बार फिर तनाव बढ़ गया है और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई किए जाने के दावे किए हैं। यमन के सेना के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि सेना हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले कर रही है। साथ ही हूती सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि यह हमला सना उसके नियंत्रण वाले अन्य इलाकों में सऊदी अरब की कार्रवाई के जवाब में किए गए। समूह ने यह दावा किया कि अभियान अपने उद्देश्यों में सफल रहा है। इथियोपिया की संघीय सेना ने उत्तरी त्रिगाय क्षेत्र की राजधानी मेकेले के हवाई अड्डे पर फिर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। सैनिकों ने पिछले महीने हवाई अड्डे पर कब्जा किया था, जिसके बाद मेकेले के लिए व्यावसायिक उड़ानें रोक दी गई थी। स्थानीय मीडिया के अनुसार तिगराय में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बाधित होने के कारण जानकारी जुटाना और उसकी पुष्टि करना भी मुश्किल हो रहा है। इथियोपिया सरकार और त्रिगाय पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट TPLF ने हवाई अड्डे पर फिर से नियंत्रण की खबरों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। TPLF ने पिछले महीने 23 तारीख को हवाई अड्डे पर कब्जा किया था। इसके बाद इथियोपियन एयरलाइंस ने मेकेले के साथ साथ एक्सुम और शार शहर के लिए उड़ानें निलंबित कर दी थी। इस बीच इथियोपिया और पड़ोसी देश इरिट्रिया के बीच संबंधों में भी तनाव बढ़ गया है। इथियोपिया ने बृहस्पतिवार को 10 इरिट्रिया के राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया और इरिट्रिया में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की। इंडोनेशिया के संबावा इलाके में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 आकी गई। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बरमूडा के तट के पास कल एक एयर एम्बुलेंस की आपातकालीन लैंडिंग की सूचना मिली है। इसमें 6 लोग सवार थे। खोजी दस्ते को फिलहाल 2 लोग ही मिल पाए हैं, जबकि 4 लोग अभी लापता हैं। हवाई यातायात नियंत्रण के अनुसार कनाडा में पंजीकृत ये एयर एम्बुलेंस बरमूडा के एलएफ वेड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अमरीका के मैसाचुसेट्स के लिए रवाना हुई थी। और अब खेल जगत की हलचल के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को किया तलब। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7-9 जनवरी तक कोलकाता में। जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह। भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। और भारत ने वेस्टइंडीज को 2-1 से हरा कर एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला अपने नाम की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 10:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा। नमस्कार श्रोताओं, मैं स्मिता दुबे उपस्थित हूँ कार्यक्रम सारंगा लेकर। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म फिल्म बाबुल से। इस गीत को गाया है तलत महमूद और शमशाद बेगम ने। गीत शकील बदायूनी का और संगीत नौशाद का। और सुनने के इच्छुक पिंडरई जिला मंडला से कमला प्रसाद शर्मा, मोहम्मद मोहराली, कृपाल पटेल, सुमत कुमार जैन, राधेश्याम केवट, संजय जैन, ग्राम दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू।

मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म जंगली फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। और इस गीत के लिए हमें खत भेजा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी, शिवेंद्र प्रताप, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मेला से। इस गीत को गाया है शमशाद बेगम ने। गीत लिखा शकील बदायूं ने और संगीत से सजाया नौशाद ने। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी एरोड्रम थाने के पास वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र, पूजा विक्की, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक, संजना परी और ललिता नारायण खर्चे ने। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: तो पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा। अखियों के झरोकों से इस फिल्म के गीत को सुनिए हेमलता और शैलेंद्र सिंह के आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है और इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम पजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। GCF स्टेट परेल लाइन से सुरेश राजपूत, सुमित, शानू, अभय, मनंत, पुष्पा और सुदेशना और राज निम्मो राजपूत।

सुमन कल्याणपुर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ में फिल्म ताजमहल का यह गीत अभी आपने सुना। गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत रोशन का, और सुनने के ख्वाहिशमंद पिंटरई मंडला से सुमत कुमार जैन, मीना कबीर, वरुण और वान्या जैन। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, संजू देव, रमेश पंचोली और उदम ने। आप सुनना चाहते हैं फिल्म कल आज और कल का गीत किशोर कुमार के स्वर में, गीत हसरत जयपुरी का और संगीत शंकर जयकिशन का।

0: तरीके से।
1: सब आइस के नाम से, मेरा नहीं काम ये आग का न पानी का, रोग ये जवानी का।

हरिओ शंकर काटाल जेन कंकर झूठ की कहानी है झूठ का फसाना है कैसा ये जमाना है बिच्छू का बहाना।

प्रेम बंधन, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मन्ना डे के स्वर में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, और सुनने के ख्वाहिशमंद छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही, पूजा, छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले।

सारंगा कार्यक्रम में अगला अनुरोध हमें भेजा है महाराष्ट्र मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत ग्वानकर राही श्रीमती सरिता प्रिंस एकांश ग्वानकर ने, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत प्रणीता और अर्जुन ग्वानकर ने, नागपुर से वैशाली शैलेश सुमित और कुमारी ध्वनि ग्वानकर ने। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म गैम्बलर का गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, शब्दकार नीरज और संगीतकार एस डी बर्मन।

0: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:58 हुए हैं। न्यूज़ हेडलाइंस अब हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंडला जिले में प्रशिक्षण सह जागरूकता एवं प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि बोनस वितरण कार्यक्रम में शामिल होकर 36,70,00,000 रुपये से ज्यादा के तेंदुपत्ता बोनस का वितरण करेंगे। प्रदेश में नागरिकों को शासकीय सेवाएं उनके गांव और वार्ड स्तर पर सहज, पारदर्शी, संवेदनशील और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान में आज विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में वार्ड एवं जोन स्तर पर मेगा सेवा सेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सेवा संकल्प अभियान के तहत कल दमोह के जबेरा जनपद सभागार में संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की उपस्थिति में शिविर लगाकर हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र बांटे गए। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कल इंदौर में कहा कि नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर उद्यमी को प्रदेश सरकार 800 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से अनुदान देगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर मंदसौर जिले के ग्राम सभाओं के आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान एवं सेवा सेतु अभियान के तहत ग्रामीणों को शासन की योजनाओं की जानकारी देकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। वहीं रतलाम जिले में भी रिफॉर्म उत्सव 2026 और जन योजना अभियान के तहत गांधी जयंती के अवसर पर सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। और प्रदेश में मौसम के हाल में थोड़ा सा बदलाव दर्ज किया गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान शाजापुर के गिरवर और इंदौर में 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक तापमान धार जिले में 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, संगीत की सबसे खूबसूरत बात शायद ये है कि उसे समझने के लिए शब्दकोश नहीं, भावकोश चाहिए। एक स्वर उठता है, दूसरा उसके पास आकर ठहरता है और देखते ही देखते कुछ ध्वनियां हमारे भीतर एक भरा पूरा सा इंद्रधनुषीय संसार रच देती हैं। फिल्मी गीतों को सुनते हुए यूं लगता है कि किसी गीत में बीते हुए समय की आहट होती है, तो किसी में आने वाले कल की हल्की सी रोशनी, और किसी धुन में बस एक जादू सा होता है कि सुनते हुए ये लगने लगता है कि जिंदगी अभी भी कितनी मधुर हो सकती है, कितनी खूबसूरत हो सकती है। तो स्वरों के इसी खूबसूरत से संसार में आपकी पसंद के साथ हम चल रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम है फोन करें गीत सुनें।

0: करें गीत सुने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी दीदी, मैं ग्राम परसेठा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, यानी यमुना बेल्ट के किनारे से मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ। दीदी,
0: बेटा सिंह यादव जी, कैसे हैं आप?
1: जी दीदी, मैं मस्त हूँ, अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। क्या चल रहा है इन दिनों यमुना पार जहाँ आप रहते हैं वहाँ?
1: जी दीदी जी, इस समय तो ये है कि धान की फसल लहरा रही है और बीच में बारिश हुई थी तो और भी धान की फसल को अच्छा हो गया है। और यमुना नदी का पानी भी मतलब काफी बढ़ चुका है जो भी है।
0: जी जी जी, बारिश अच्छी हुई?
1: हाँ, इस समय बारिश अच्छी हुई, झमाझम बारिश हुई और धान की फसलों के लिए भी अच्छा हो गया।
0: तो धान की फसलें मुस्कुरा रही हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, इस खुशी में गीत कौन सा सुनेंगे?
1: जी दीदी, फिल्म का नाम है श्री 420 और गीत की बोल रहेगा रमैया अवस्था वैया मैंने दिल तुझको दिया।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत की आपने फरमाइश की है, तो आपके साथ हम भी सुनते हैं। बेटा सिंह जी, आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं यहाँ राजाराम नगर देवास से राजेश अग्रवाल बोलता हूँ दीदी।
0: राजेश जी कैसे हैं?
1: बढ़िया है दीदी। यहाँ मेरा प्रिंटिंग प्रेस का कार्य है देवास में,
0: जी जी
1: और खुद का ही कार्य है।
0: जी भाई, देखिए गणेश उत्सव अभी समाप्त
1: जैसे
0: हुआ है और अब नवरात्रि का इंतजार है ना?
1: नवरात्रि
0: त्योहारों का एक
1: की
0: सिलसिला
1: तैयारी
0: लगभग
1: चल
0: शुरू
1: रही
0: हो
1: है,
0: गया।
1: और
0: जी जी
1: यहाँ पर मंदिर है माता जी का, तो बहुत श्रद्धालु आते हैं, बाहर से बहुत आते हैं यहाँ पर।
0: कौन सा मंदिर है?
1: यहाँ पर पहाड़ी पे मंदिर है ना, माता टेकरी
0: जी
1: है
0: जी
1: भी।
0: जी तो राजेश जी, रेडियो आपका चल रहा है, रेडियो से आपका पुराना
1: हाँ
0: लगाव
1: यहाँ
0: है।
1: 11 से 3 बजे तक हमारे यहाँ सुनाई देते हैं आपके यहाँ के कार्यक्रम,
0: जी तो आप,
1: और मैं रेडियो पर ही सुनता हूँ, जैसे मैं ऐप पे नहीं सुनता हूँ मेरे कार्यक्रम।
0: हाँ ये बड़ी ही खूबसूरत सी बात है, रेडियो का एहसास एक अलग ही एहसास है ना?
1: जैसे हमारे पास 2-4 रेडियो हमने रख छोड़े हैं, इसीलिए कि कभी भी दिक्कत आए तो हम मतलब उसको नहीं उसको सुन पाए।
0: देखिए ऐप पर भी आवाज़ तो अच्छी सुनाई पड़ती है, लेकिन एक एहसास रेडियो का, जो एक पुराना एहसास है, जो एक लगाव है, उसकी
1: हाँ
0: वजह से
1: हाँ
0: रेडियो सेट रखते हैं आप, है ना?
1: और उसमें क्या है दीदी के जैसे फोन आ जाता है तो फिर सुनाई नहीं देता, और पैसे, और ये हम क्या छोटे फोन से ही हमारा धंधे का काम इससे ही चलाते हैं हम
0: तो फोन को आप फ्री रखते हैं और रेडियो
1: छोटे।
0: सेट के
1: हाँ
0: जरिए रेडियो सुनते
1: कीपैड से
0: हैं।
1: ही फोन भी लगाते हैं, कहीं भी लगाना हो तो हमें कार्यक्रम में।
0: जी जी जी
1: हमारे साथ में ये हमारे दोस्त हैं लोकेंद्र वर्मा भी सुन रहे हैं, राम बाबू मालवी भी सुन रहे हैं इस गीत को।
0: जी जी
1: आज 4 अक्टूबर का सेलन सिंह जी का जन्मदिन है, महान गायक है वो,
0: जी जी जी जी
1: और 72 वर्ष के हो चुके हैं वो, और उनका गाया हुआ गीत है भाभी फिल्म का, ना मांगू सोना चांदी ना मांगू हीरा मोती।
0: क्या बात है, तो आपने शैलेंद्र सिंह को याद किया है
1: हाँ
0: आज, है ना?
1: हाँ बिल्कुल।
0: बहुत ही अलग हटकर उनकी एक आवाज
1: हाँ
0: है
1: वो
0: जो बहुत
1: ऋषि
0: खूबसूरत
1: कपूर की
0: लगती
1: आवाज
0: है।
1: माने जाते हैं,
0: जी जी जी और बहुत ही खूबसूरत उनकी आवाज लगती है।
1: गीत है उनकी।
0: तो
1: हाँ
0: चलिए
1: साथ
0: आप,
1: में मन्ना डे के साथ में गाया हुआ गीत है,
0: जी जी तो
1: और काफी प्रसिद्ध हुए थे ये गीत इसके, क्योंकि
0: बिल्कुल बिल्कुल सुपरहिट गाने थे
1: उसी
0: ये।
1: डेब्यू फिल्म थी भाभी।
0: जी जी जी जी तो राजेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शैलेंद्र सिंह को आप याद कर रहे हैं आज और उनकी
1: धन्यवाद।
0: आवाज़ में आप गीत सुनना चाहते हैं, आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का गीत, हम भी सुनते हैं। बहुत धन्यवाद।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले श्रोता का। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, जय श्री महाकाल। शिवा लोहट MP विदिशा से आपका नियमित श्रोता बात कर रहा हूँ मैम।
0: शिवा जी कैसे हैं?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ मैम, और आपकी मधुर मधुर आवाज सुन के और भी अच्छा लग रहा है मैम।
0: हमें भी अपने श्रोताओं से बात करते हुए हमेशा ही बहुत खुशी होती है। क्या करते हैं आप शिवा जी?
1: जी मैम, मैं एक्चुअली मैं ब्लाइंड हूँ और समाज सेवा के कार्य करता रहता हूँ मैम, छोटे मोटे, जैसे हर 3 महीने में रक्तदान करना हो गया, गाय को चारा पानी रखना हो गया, पक्षियों को दाना पानी रखना हो गया, समय समय पे गरीब लोगों को भोजन कराना हो गया, और मैम पेड़ पौधे लगाना हो गया।
0: क्या बात है, सारे अच्छे काम आप करते हैं, कितनी खूबसूरत बात है। अच्छा शिवाजी, रेडियो कब कब साथ रहता है आपके?
1: मैम देखिए, रेडियो तो मेरे साथ हमेशा हर वक्त रहता है, सुबह शाम, सुबह भी उससे होती है, रात भी उसी से होती है। पर ये है कि जब हम कभी किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, वहाँ पे हमको बंद करके रखना पड़ता है, नहीं तो लोग बाग हमको दीवाना कहने लगते।
0: ये बड़ी अच्छी बात है आपने की कि पब्लिक प्लेस में आपको बंद करना पड़ता है, वरना लोग रेडियो का दीवाना कहेंगे। चलिए बड़ी अच्छी बात, खूबसूरत सी बात आपने कर दी है। तो ये बताएं कि गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: मैम देखिए, जिस तरह से हमारे पायलट कप्तान स्मिथ जी ने हमारे भारतीयों का सर ऊंचा किया है और सीना चौड़ा कर दिया है,
0: जी जी,
1: तो मैं उनके माँ बाप पर उनको सैल्यूट करता हूँ मैम, उनके माँ बाप के चरणों में नमन करता हूँ कि जो इतना वीरतावान पुत्र उन्होंने हमारे भारत को दिया है, और मैम मैं उन्हीं को एक गाना समर्पित करता हूँ। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया शिवा जी, आपकी बात सुनकर हमारा दिल खुश हो गया बहुत।
1: और मैं तो भारत सरकार से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, उनको जितने भी बहादुरी के पुरस्कार होते हैं वो सबसे सम्मानित होना चाहिए।
0: देखिए आपकी भावनाएं हैं जो कि उनके लिए बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शिवाजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया, आभार आपका।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार सुनीता दीदी, नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: दीदी। मैं राम बाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से।
0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है राम बाबू जी, कैसे हैं?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, और परिवार में सब आनंद मंगल में है। मम्मी है, भैया भाभी अपने मिसेज बच्चे वगैरह जितने भी, सब आनंद मंगल में, अपने अपने काम में लगे हैं, व्यस्त है।
0: जी
1: कोई
0: जी
1: स्कूल
0: जी
1: जा रहा है, कोई क्या कर रहे हैं।
0: सब मंगल में है ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। अब ये
1: जी,
0: बताएं कि इन दिनों चल क्या रहा है?
1: अपने ये काम वाम चल रहे हैं, और थोड़ा सा के अभी मौसम का थोड़ा चेंज हुआ है, तो इसमें अपना स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है इसमें।
0: तो क्या
1: जी,
0: विशेष आप बचाव के लिए क्या करते हैं?
1: विशेष ये करते हैं कि जैसे मौसम चेंज हुआ, उस प्रकार से हम खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखते हैं भोजन का। जैसे अभी मौसम चेंज हुआ तो वो अभी गर्मी है, उस हिसाब से खाना पीना, और वैसे टाइम से सोना, टाइम से जगना,
0: जी,
1: और अपना सुबह सुबह सबसे पहले हम तो 12 महीने एक ही काम करते हैं दीदी, आपको मैं बता देता हूँ, गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद में चाय पीते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। सुबह सवेरे जब आप गर्म पानी पीते हैं तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है
1: हाँ,
0: ना?
1: और हो सकता है तो कभी कभी तो हमें ना, जब सोते हैं उस वक्त भी गर्म पानी करके कुनकुना पी के फिर सोते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: तो इसी तरह से स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि जब मौसम बदलता है, जब दो
1: जी
0: मौसमों का संयोग होता है, तो उस वक्त बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं, और सर्दी जुकाम हो चाहे बुखार हो, एक लहर सी आ जाती है ना
1: हाँ जी बिल्कुल। और मैं बताना चाहता हूँ दीदी कि जैसे बहुत सारे बोलते हैं गोलियां खाते हैं, गैस बनती है, ये होता है, हमारे पाचन की या ठीक नहीं है, तो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि आप गर्म पानी सुबह सुबह पिएगा, चाय मत पिएगा, है ना, और सोते
0: बिल्कुल।
1: वक्त आप बिल्कुल स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा।
0: तो चलिए, आपकी तरफ से एक हेल्थ टिप तो हो गई। अब हम चाहते हैं कि आप बताएं कि पसंद क्या है आज के लिए आपकी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी, आज पसंद में फिल्म छुपा रुस्तम का ये टाइटल सॉन्ग है,
0: छुपा रुस्तम,
1: मैं हाँ छुपा रुस्तम का।
0: तू निकला छुपा रुस्तम।
1: हाँ जी, हाँ
0: जी
1: जी
0: जी
1: दीदी, सबको सुनाना चाहते हैं, और हम भी सुनेंगे, परिवार वाले भी सुनेंगे, दीदी आप भी सुनोगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम सब मिलकर आपकी पसंद का ये गीत सुनेंगे। राम बाबू
1: हाँ
0: जी,
1: जी,
0: आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताइए।
1: हाँ, मैं ग्राम बालोदा लखा तहसील बड़नगर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैडम
0: नाम बता दीजिए।
1: कन्हैया लाल प्रजापति, ग्राम बालोदा लखा तहसील बड़नगर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से।
0: कन्हैया लाल प्रजापति।
1: हाँ जी मैडम। हाँ जी,
0: कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है, महाकाल की नगरी के पास है सर। और वो मैडम बहुत बढ़िया है और आनंद मंगल है, और अभी सोयाबीन हमने निकाली है और खेत में सूख रही है।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपकी फसल भी अच्छी हुई है और आपने खेत से ही फोन लगा लिया है और फोन लग गया है। कौन सा गीत सुनवाया आपको आज?
1: फिल्म सावन भादो, वो कानों में झुमका कानों में ठुमका कमर पर चोटी लटके वो वाला।
0: आहा, बहुत ही पुराने गीत की आपने फरमाइश की, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत गीत है और सुपरहिट गीत था, है ना? अपने समय का बहुत ही लोकप्रिय गीत रहा है ये।
1: तो मैडम, मैं 88 से जुड़ा हुआ इसी में।
0: जी जी जी, तो चलिए आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं। बहुत अच्छा लगा आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: आप कौन हो? आप कौन है?
0: सुनीता, सुनीता सिंह।
1: बहुत बढ़िया, आपके आवाज बहुत बढ़िया आपकी।
0: धन्यवाद, धन्यवाद
1: आपको, धन्यवाद। Hey, hey.

0: सियासी झटके हटेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला।
1: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: नमस्कार, हरदयाल जाटव जिला सिपरी मध्य प्रदेश।
1: हरदयाल जी कैसे हैं?
2: मैडम जी बढ़िया है, मजे हैं।
1: शिवपुरी में मौसम कैसा है?
2: मौसम साफ हो चुका है, धूप निकल रही है, गर्मी सी पड़ रही थोड़ी थोड़ी।
1: जी जी, मौसम बदलने को है। तो ऐसे बदलते हुए मौसम में किन बातों का ख्याल रखते हैं आप?
2: ये ख्याल रखते हैं कि अपने माने छारे में रहो, माने ज्यादा धूप में मत निकलो, और मौसम चेंज हो रहा तो माने अपना खान पान सही रखना चाहिए।
1: जी जी, और थोड़ा सतर्क होना चाहिए। और रेडियो का साथ कब कब होता है?
2: रेडियो का साथ तो मान लो 12 घंटा रहता है अपने साथ।
1: हाँ, 12 घंटे, वाह, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप ऐप पर सुनते हैं या रेडियो सेट है आपके पास?
2: मोबाइल से सुनता हूँ।
1: मोबाइल से सुनते हैं। कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
2: ये मान लो कि नमस्ते भोपाल,
1: नमस्कार भोपाल,
2: और जो हालू फरमाइश और जो नाटक आते हैं संग्रह, वो, और 2:30 बजे के और 4-6 बजे की सुनता रहता हूँ।
1: जी जी, तो आपने तो बहुत से कार्यक्रमों के नाम ले लिए, नमस्कार भोपाल, गीत सागर, है ना, और संग्रहालय से भी आप सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से कुल मिलाकर आप बहुत सघन रूप से जुड़े हुए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा।
2: ये कम से कम 1997 से लगा हूँ अपने।
1: तो 1997 से अब तक रेडियो का साथ बना हुआ है, ये साथ हमेशा बना रहे ये हम कामना करते हैं। और आज बताइए कि गाना कौन सा सुनेंगे आप?
2: दिल तो पागल का सुना दीजिए।
1: दिल तो पागल है, इसका कौन सा गीत?
2: ये गाने के बोल है और फिल्म का नाम भी यही है,
1: टाइटल सॉन्ग। ठीक है जी। तो हरदयाल जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी पसंद का गीत दिल तो पागल है आप तक भेजते हैं। नमस्ते, बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में, हमारे कौन से श्रोता जुड़ रहे हैं?
1: हाँ, मैं नमस्ते, मैं ग्राम उलझान बोल रहा हूँ, गेंदालाल परिहार।
0: गेंदालाल परिहार कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम उलझावन जिला सीहोर।
0: तो गेंदालाल जी, क्या करते हैं आप?
1: जी मैम, मेरा सिलाई काम है।
0: सिलाई का काम है?
1: जी
0: तो क्या क्या
1: आपका
0: सीते
1: क्या
0: हैं?
1: क्या काम है? पेंट शर्ट और कुर्ते पजामा वगैरह, जॉकेट टॉकेट सभी सिलते हैं।
0: जी जी जी जी
1: जी मेरे साथ में लड़के हैं दो मेरे, वो भी साथ में काम करते हैं।
0: तो आपका रोजगार अच्छा चलता है?
1: जी अच्छा चलता मैम।
0: जी, तो एक हुनर है आपके हाथ में जो आपकी आजीविका का साधन है, इसको बना कर
1: जी
0: रखिए।
1: मैं काफी पुराना श्रोता हूँ मैम, आपका विभारती भोपाल का आकाशवाणी सभी सुनता हूँ मैं।
0: अच्छा, कब से सुन रहे हैं?
1: मेरे को हो गया 45 वर्ष से ज्यादा ही हो गया मैम।
0: ओहो, 45 साल से। आपकी उम्र कितनी है?
1: मेरी
0: अच्छा,
1: 55 के ऊपर ही समझो।
0: तो मतलब आप बचपन से सुन रहे हैं रेडियो, है ना?
1: बचपन सुना है।
0: कौन से कार्यक्रम बहुत ज्यादा पसंद है आपको?
1: मैम गाने का कार्यक्रम सुनता हूँ ज्यादातर तो मैं।
0: गाने का शौक भी है?
1: जी सुनने का शौक है, गाना गाने नहीं
0: गाने का
1: आते
0: नहीं? तो
1: ऐसा
0: आपको
1: नहीं।
0: चिंता हुई कि कहीं मैं ये नहीं कह दूं कि आप 2 लाइन सुना दीजिए? तो बताइए, आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैम मेरा नाम जौकर फिल्म गाना है,
0: हाँ,
1: इसका नाम है कि जीना यहाँ मरना यहाँ।
0: जीना यहाँ मरना यहाँ, मुकेश जी की आवाज में बहुत ही
1: जी
0: खूबसूरत गीत है। तो
1: मैं पास कहना चाहता हूँ, यानी कि टीम आई थी एक बार हमारे रिझान गांव में,
0: हाँ,
1: किसानों कार्यक्रम होता नहीं आप
0: जी
1: 7 बजे
0: जी
1: से,
0: जी जी जी जी साथ
1: उषंका भैया, मन्नू भैया वगैरह।
0: हाँ, तो आकाशवाणी की टीम आपके गांव पहुंची थी, तो आपसे बातचीत हुई?
1: बहुत नहीं, मैं बहुत छोटा था इस समय, करीब करीब
0: अच्छा
1: 40 साल हो गए
0: अच्छा अच्छा अच्छा तो
1: मुझे
0: बचपन
1: याद
0: की।
1: है बिल्कुल।
0: हाँ, बचपन की आप याद कर रहे हैं कि आकाशवाणी की टीम पहुंची।
1: जी
0: चलिए,
1: यहाँ पे किसानों कार्यक्रम में बैठ कर चौपाल लगाई थी उन्होंने,
0: जी जी जी जी
1: रिकॉर्डिंग करके ले गए थे, फिर प्रसारण भी किया था कार्यक्रम का।
0: बहुत बार हम अपने स्टूडियो से बात करते हैं, और कई बार यूं होता है कि हम स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, तो उस
1: जी
0: स्थान पर जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और फिर वो रिकॉर्डिंग अपने किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं, तो उसी की याद आपको है। तो
1: अच्छा
0: गेंदालाल
1: मैम
0: जी, आपसे बात
1: जी
0: करके बहुत अच्छा लगा। रेडियो की ये जो याद है आपके मन में, इसको बना कर रखिए और रेडियो से प्रेम बना कर रखिए। आपकी
1: जी
0: पसंद का गीत आप तक भेज रहे हैं, बहुत बहुत
1: जी मैम
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: आपने फ़ोन किया।
2: जीना

0: फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम है ये। हेलो नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार मैडम, भूपेंद्र कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ, कोटा राजस्थान से।
0: भूपेंद्र जी कैसे हैं?
1: बढ़िया है।
0: और क्या चल रहा है कोटा राजस्थान में इन दिनों?
1: कोटा राजस्थान में गर्मी हो रही है।
0: गर्मी हो रही है। जी जी जी, मतलब बारिश रुकी है तो कुछ गर्मी का एहसास है, लेकिन मौसम तो सर्दी का आने वाला है ना?
1: सब चीज का आनंद लेना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। क्या करते हैं आप भूपेंद्र जी?
1: मैं सीनियर सिटीजन हूँ मैडम।
0: अच्छा, क्या उम्र है आपकी?
1: मेरी?
0: अरे वाह, तो 70 साल की आपकी उम्र है और रेडियो लगातार आप सुनते हैं। कब से सुन रहे हैं रेडियो?
1: रेडियो तो क्या बताऊं, बचपन से सुन रहा हूं मैं।
0: बचपन से सुन रहे हैं और ये एक ऐसा लगाव है जो अब तक बना हुआ है ना?
1: तो गानों का ज्यादा शौक है, पुराने गाने ज्यादा सुनता हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गाना सुनवाएं आज?
1: आज आप जय चित्तौड़ का सुना दो, राजस्थान के लिए। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े।
0: जय चित्तौड़, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। क्या बात है, आपने अपने स्थान का ही एक पूरा महिमा गान किया है ना। तो चलिए, राजस्थान के आप हैं और राजस्थान की ही महिमा इस फिल्म में।
1: राजस्थान एमपी सब एक ही है वैसे तो, सब कुछ
0: जी, वैसे तो पूरा भारत एक है, लेकिन फिर भी एक
1: पूरा भारत एक,
0: हाँ, एक स्थानीयता का गर्व तो होता ही है। मेरा नाम सुनीता है।
1: सुनीता की वो?
0: जी जी जी जी।
1: अरे आपसे बड़ी, आपकी ऐसी चीज बहुत तारीफ करते हैं लोग, बड़ी तमन्ना थी की बात हो जाए कभी।
0: तो चलिए, आज हमारी और आपकी बात हुई है और हमें बहुत अच्छा लगा कि अपने स्थान को आपने याद किया और अपने प्रांत को याद किया। तो चलिए, आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं। बने रहिए हमेशा आकाशवाणी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: खुश रहो, मस्त रहो।
0: बहुत आभार आपका, बहुत आभार।
1: धन्यवाद।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार, मुझे लग रहा है कि मेरी बहन सुनीता जी बोल रही है, लगता है।
0: जी जी जी, लेकिन आपका तो परिचय हमें मिले।
1: सुनीता जी, आपको बता दूं कि आज तो आपको ही मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन बोल रहा हूँ।
0: वैसे हम पहचान चुके हैं कि आप फूलचंद पाल जी बोल रहे हैं, है ना?
1: क्या बात है, बहुत खुश कर दिया आपने मुझे।
0: अब स्थान का नाम आप बता दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, विश्व प्रसिद्ध नगरी है खजुराहो। और बस खजुराहो से ही है, मतलब हमारा गांव मनकारी खजुराहो, बिल्कुल खजुराहो मान लीजिए आप लगा
0: जी,
1: हुआ है।
0: जी जी जी जी,
1: और ये विश्व प्रसिद्ध नगरी है खजुराहो, और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है यहाँ, हमारा जाना भी हुआ है, और दुनिया भर से लोग आते हैं देखने, है ना, इस मंदिर को।
1: हाँ, विश्व प्रसिद्ध है, बहुत लोग आते हैं, अमेरिका, बहुत विदेशों से आते हैं लोग। और अब मैं आपको बता दूंगा तो हमारे यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी हो गया है, तो विदेशों से भी सीधा आते हैं लोग।
0: जी जी जी जी, तो फूलचंद जी ये बताइए कि ये तो बात हो गई खजुराहो की, आप वैसे क्या करते हैं?
1: सुनीता जी, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय पे राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ पर श्री रामचरितमानस का वाचन कर रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: आपने सुना होगा राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी?
0: जी सुना है, बिल्कुल नाम सुना हुआ है। जी जी,
1: देखा है आपने कभी?
0: नहीं, नाम सुना हुआ है।
1: हाँ बिल्कुल, सुना है नाम, तो आपको अभी भी आइए, आपका स्वागत है, मैं यही मिलूंगा आपको।
0: तो क्या आप कथा करते हैं?
1: जी हाँ, श्री रामचरितमानस का पाठन करते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो
1: और यहाँ क्या है कि अखंड रामायण बैठी है, कई सालों से बैठी है, कई सालों तक, मतलब वो बंद नहीं होना है, वो तो हमेशा बैठी है।
0: तो इसका मतलब है कि ईश्वर का नाम लेते हुए, है ना, भक्ति रस में डूबे हुए ही आपका जीवन।
1: जी क्या है कि मैंने फैसला कर लिया है कि अब चौथा पन है, तो चौथी पन में भगवान का नाम लो और दुनियादारी से जो है मुक्ति पाओ।
0: चलिए, आपने तो जीवन का सूत्र बताया। कौन सा गाना सुनवाएं आज?
1: सुनीता जी देखिए, अब कुछ दिनों में हमारी माता रानी का आगमन होने वाला है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, अभी जो है पितृ पखवाड़ा चल रहा है, तो बस कुछ दिनों बाद ही जो है, तो मुझे मैया का एक गीत सुनना है, फिल्म का नाम है अम्बा।
0: अच्छा, गीत के बोल।
1: गीत की बोले के शेरों वाली माता का जब नाम जवा पार आता है, जन्म सफल हो जाता है।
0: क्या बात है, 11 तारीख से नवरात्रि लगने वाली है, आपने पहले ही माता जी का स्वागत किया है।
1: सुनीता जी ये गीत जो है आपको और जितने हमारे श्रोता श्रोता है, प्रेमदास बाबा जी हो गए, बेटा सिंह यादव जी हो गए, जितेंद्र पाल जी हो गए, और हमारे जितने राहुल पाल जी है, और जितने श्रोता सुन रहे हैं, राजीव यादव जी है, सभी माता बहनों को ये गीत डेडिकेट रहेगा। सभी माता बहनों को हमारी जो आने वाली नवरात्रि है, सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं।
1: और सुनीता जी ये गीत आपको भी एक्स्ट्रा डेडिकेट रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद फूलचंद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
1: नमस्कार, जय माता जी।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।

0: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में महिला फ्रीस्टाइल कुश्ती के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतने पर अंतिम पंघाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पंघाल की ये उपलब्धि अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज मंडला जिले में प्रशिक्षण सह जागरूकता एवं प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि बोनस वितरण कार्यक्रम में शामिल होकर 36,17,00,000 रुपये से ज्यादा के तेंदुपत्ता बोनस का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज पांडुना जिले में अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान सांदीपनी स्कूल पांडुना में सेवा मेरा योगदान तथा जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। खंडवा जिले की ग्राम पंचायतों में भी गांधी जयंती पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इन ग्राम सभाओं को रिफॉर्म उत्सव 2026 के रूप में आयोजित करते हुए नागरिक केंद्रित सुधारों और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। बुरहानपुर जिले में महात्मा गांधी जयंती पर चापोरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में हुई ग्राम सभा में इस बार गांव के विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं ने साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने का संकल्प लिया। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा और धूप निकलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद 7 अक्टूबर को पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक और आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं धामड़ी मनोरा से तुलसीराम, मायावती, संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल और इनके परिवार के सदस्य। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। पिपरिया से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू और जय किशन साहू। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, बलविंदर और मीका। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, टीजी मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है कुछ कुछ होता है फिल्म का नगमा। उदित नारायण, अलका याग्निक और मनप्रीत की आवाज़ें हैं। तो आइए आप सभी को सुनवाते हैं कुछ कुछ होता है फिल्म का नगमा, समीर का लिखा हुआ, जतिन ललित की तर्ज पर।

आइए अब आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं थाना रोड बक्सर से आशीष गुप्ता, सतीश, आयुष, आयुषी और सानवी। बक्सर से ही श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीर, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय। आप सभी ने सुनना चाहा है आर पार फिल्म का नगमा, जिसे गाया है गीता दत्त ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं आर पार फिल्म का ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं चांदनी फिल्म का नगमा, जिसे सुनना चाहा है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। ये ख़त हमें इन्होंने भेजा दिल्ली शहर मेरी गेट से। इसी गीत को सुनना चाहा है प्रमिलागंज आटोल ज़िला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

आइए अब आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं ग्राम महेशवाड़ी से स्वप्निल अजय और इनकी परिवार के सभी सदस्य, भाटापारा दंतेरी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में खुदा गवाह फिल्म का ये नगमा, जिसे सुनना चाहा है मुशर्रफ खां, जरीना, मुबारक, परवेज़, रोज़मीन, तैमूर, रीना, रोजूबाई और सनी बाबू। आप सभी ने ये ख़त हमें भेजा है बुरहानपुर से, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर और ऋषिका रॉबिन ने भी यही गीत सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

ये आकाशवाणी का भो ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति में जाल का तीसरा भाग।

0: ऑर्डर ऑर्डर। हाँ तुम मृदुला देवी, आपको अपने बचाव में जो कुछ भी कहना है बेझिझक होकर कहिए।
1: मैं लॉर्ड, मैं यही कहना चाहती हूँ कि पुलिस ने जो आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। मैंने ना किसी को रोका है, ना किसी से आरजू मिन्नत की है। कोई ग्राहक मेरे सामने आया ही नहीं। हाँ, मैं दुकान में खड़ी जरूर थी, वहां कई वॉलंटियर गिरफ्तार हुए थे, जनता जमा हो गई थी, मैं भी खड़ी थी, बस थानेदार ने आकर पकड़ लिया। मैं बेकसूर हूँ माय लॉर्ड, मैंने धरना नहीं दिया।
0: ऑर्डर ऑर्डर, सभी के बयान हो चुके हैं। अब मृदुला देवी के केस पर फैसला कल सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज एडजॉर्न टुडे।
2: चलो अंदर जाकर बैठो। चलो।
3: अरे मृदुला, आ गई तुम?
4: क्या हुआ कांता?
3: सजा हो गई? कितने दिन की हुई है?
1: सजा होगी? और मुझे? मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मैंने धरना दिया ही नहीं। पुलिस ने झूठा केस बनाया है।
4: और मजिस्ट्रेट तुम्हारी बात मान भी गए? वाह,
3: ऐसा भी कभी होता है?
5: मजिस्ट्रेट तो पुलिस के बयान पर ही फैसला करेगा। मैं ऐसे कितने ही मुकदमे देख चुकी हूँ।
1: क्षमा दीदी, पुलिस वालों को तो मैंने ऐसा रगड़ा दिया है कि वो भी याद रखेंगे।
3: रगड़ा है मतलब?
1: बात ये है छाया, मैं तो मुकदमे की कार्रवाई में भाग ही नहीं लेना चाहती थी, मगर जब मैंने उनके गवाहों को सरासर झूठ बोलते देखा तो मुझसे सब्र ना हो सका। मैंने उनसे जिरह करना शुरू कर दी।
3: जिरह की? और तुमने? ये भी खूब रही।
1: कांता दीदी, मैंने भी इतने दिनों घास नहीं खोदी है, थोड़ा सा कानून जानती हूँ। पुलिस ने समझा होगा ये तो कुछ बोलेगी नहीं और हम जो चाहेंगे बयान दे देंगे। फिर जब मैंने जिरह शुरू की तो सब बगलें झांकने लगे। मैंने तीनों गवाहों को झूठा साबित कर दिया। उस समय मुझे भी ना जाने कैसे चोट पर चोट सूझती गई।
4: तुम ऐसे बोलती रही और मजिस्ट्रेट ने तुमसे कुछ नहीं कहा?
1: सुशीला बहन, मजिस्ट्रेट तो उल्टा पुलिस को डांट रहा था। उसने तो थानेदार को भी 2-3 बार फटकारा। जब भी वो मेरे प्रश्नों का उलझलूल जवाब देता, मजिस्ट्रेट बोल उठता, वो जो पूछती है उसका जवाब दो, फजूल की बातें क्यों करते हो। जरा सा मुंह निकल आया था मियाँ जी का, मैंने सबका मुंह बंद कर दिया।
3: तो क्या मजिस्ट्रेट ने फैसला भी सुना दिया?
1: नहीं, अभी साहब ने फैसला तो नहीं सुनाया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं बरी हो जाऊंगी।
3: लो तो बरी होने की इतनी खुशी है?
1: नहीं छाया, मुझे गलत मत समझो, मैं जेल से डरती नहीं, लेकिन बेवकूफ भी नहीं बनना चाहती। वहाँ हमारे मंत्री जी भी थे और भी बहुत सारी बहनें थीं, सब कह रही थीं कि तुम छूट जाओगी।
4: भाग्यवान हो, हमारी तो मियाद साल भर की है
3: और मेरी 6 महीने की। और क्यों ना हो, हमने तो अदालत के सामने जुबान ही नहीं खोली।
4: हम पुलिस वालों से भला क्यों जिरह करते?
3: हाँ, पुलिस से जिरह करते तो हम भी छूट जाते, लेकिन हमें तो यही दिखाना है ना कि नौकरशाही से हमें न्याय की कोई आशा ही नहीं है।
6: यह तो माफी मांग लेने के बराबर है। गई तो थी धरना देने, नहीं तो दुकान पर जाने का काम ही क्या था? वॉलेंटियर गए थे तो गए आपकी बला से, मगर आप क्यों गई थी वहाँ? और अब कहती है मैं तो धरना देने गई ही नहीं, तो साफ साफ क्यों नहीं कहती कि माफी मांगना चाहती है?
4: और नहीं तो क्या, जेल में रहने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। उस वक्त तो वहाँ वही लूटने आ गई, अब रोना आ रहा है। ऐसी स्त्रियों को तो राष्ट्रीय कामों के नजदीक भी नहीं आना चाहिए। आंदोलन को बदनाम करने से क्या फायदा?
2: अरे चलो रे, चलो। है ये तुम औरतों ने क्या चकचक लगा रखी है? चलो चुपचाप सो जाओ सब। चलो
6: चलो चलो बहनों, अपनी अपनी जगह पर आराम करते हैं।
1: अरे क्षमा दीदी, आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? आप नहीं गई उन औरतों के साथ मुझे ताना देती हुई?
5: इतना ही जान पाई हो मृदुला मुझे?
1: नहीं दीदी, मैं क्या आपको जानती नहीं? आप इन औरतों में से नहीं हैं, आप उनसे बहुत अलग हैं।
5: हाँ, पता नहीं क्यों उन औरतों से घुलना मिलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी एक ही महीना तो हुआ है मुझे यहाँ आए, पर देखो तो यहाँ और 15 कैदीने हैं इस जनाना जेल में, लेकिन किसी से भी दिल ही नहीं मिलता मेरा। ये कुत्सा, ये कानाफूसियाँ मुझे नहीं भाती मृदुला। सच कहूँ तो जो आत्माभिमान एक पॉलिटिकल कैदी में होना चाहिए वो इनमें से किसी में भी नहीं है।
7: आप इन वजहों से इन सब से दूर रहती हैं और ये समझती हैं कि मैं
5: घमंडी हूँ ना, यही इसी वजह से वो मुझसे ईर्ष्या करती हैं, मेरी उपेक्षा भी करती हैं।
7: सच दीदी, लेकिन मुझे आपसे मिलकर कभी ऐसा नहीं लगा।
5: सच कहूँ मृदुला, अभी यहाँ आए तुम्हें 8 ही दिन हुए हैं, लेकिन कितना स्नेह हो गया है तुमसे, जानती हो क्यों? तुम्हारे अंदर वो संकीर्णता, वो ईर्ष्या नहीं है, न निंदा करने की आदत, न श्रृंगार की धुन, न भद्दी दिल्लगी का शौक।
7: क्षमा दीदी,
5: मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ 6 महीने आनंद से कट जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि कल तुम चली जाओगी और मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। अब कहाँ बैठकर मैं अपना दुख दर्द बांटूंगी बोल, देश की चर्चा कहाँ करूंगी?
7: आपकी सजा में तो अभी 8 महीने बाकी है ना दीदी।
5: किसी न किसी तरह कट ही जाएंगे बहना, पर तुम्हारी याद मुझे बराबर सताती रहेगी। इस 1 सप्ताह में तुमने न जाने क्या जादू कर दिया मुझ पर, कभी कभी आकर मिलती रहना।
7: जरूर मिलूंगी दीदी, मुझसे तो खुद ही नहीं रहा जाएगा, अकेली नहीं आऊंगी, भान को भी लेकर आऊंगी साथ में।
5: भान? हाँ हाँ, तुम्हारा वो लाडला बेटा।
7: हाँ, भान से कहूंगी चल तेरी मौसी आई है, तुझे बुला रही है, दौड़ा हुआ आएगा।
5: भान की बहुत याद आती है ना?
7: सच दीदी, मुझे यहाँ और किसी की याद नहीं आई सिवाय भान के। बेचारा रोया करता होगा, मुझे देखकर रूठ जाएगा, कहेगा तुम कहाँ चली गई थी, मुझे छोड़कर क्यों चली गई। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलता, तुम मेरे घर से निकल जाओ। बड़ा शैतान है दीदी।
5: अच्छा, इतना बोलता है?
7: अरे बहुत पटर पटर करता है, अपनी तोतली जबान में बोलता है झन्ना ऊंचा रहे हमारा।
5: झंडा ऊंचा रहे हमारा।
7: छोलाज का मंदिर जेल में है,
5: स्वराज का मंदिर जेल में।
7: हाँ,
5: अरे बाप रे।
7: और एक डंडी कंधे पर रख लेता है और कहता है ताली शराब पीनी हलाम है।
5: मतलब ताड़ी शराब पीना हराम। अच्छा मृदुला बहन, भान के पिता?
7: वो एक अंग्रेजी कंपनी में है, बार बार इस्तीफा देने का विचार करके रह जाते हैं, लेकिन गुजर बसर के लिए कोई काम तो करना ही पड़ेगा, कैसे छोड़ें? वो तो छोड़ बैठे होते दीदी।
5: अच्छा?
7: तुमसे सच कहती हूँ, उन्हें गुलामी से घृणा है, लेकिन मैं ही समझाती हूँ उन्हें। बेचारे कैसे दफ्तर जाते होंगे मैं ही जानती हूँ। जानती हो दीदी, भान अपने पिता से कहता है तुम तो अंग्रेजों ते दुलाम हो। बेचारे जब्त करके रह जाते हैं।
5: अब भान की देखभाल कौन करता है?
7: यही तो चिंता है दीदी, बेचारे भान के बापू कैसे दफ्तर जाते होंगे, कैसे उसे संभालते होंगे। सास जी के पास तो वो रहता ही नहीं, वो बेचारी बूढ़ी उसके साथ कहाँ कहाँ दौड़े। वो तो चाहती हैं कि भान उनकी गोद में दुबका बैठा रहे, और भान को गोद से चिढ़ है।
5: तो तुम यहाँ चली आई जेल में, तुम्हारी सास को अच्छा लगता होगा?
7: अम्मा जी बहुत बिगड़ेंगी, सच कहती हूँ दीदी, बहुत बिगड़ेंगी।
5: अच्छा?
7: एक बार भी नहीं आई यहाँ मुझसे मिलने। बाबूजी बता रहे थे मुझ पर बहुत खफा हैं, 3 दिन तक तो दाना पानी छोड़े रही, कह रही थी इस छोकरी ने तो कुल मर्जात डुबा दी, खानदान में दाग लगा दिया। कलमुई कुलचनी ना जाने क्या क्या भक्ति हैं।
5: ऐसा तो नहीं कहना चाहिए उन्हें, तुम यहाँ किसी चोरी चकारी के इल्जाम से तो नहीं आई हो?
7: जाने दो दीदी, मैं उनकी बातों को बुरा नहीं मानती, पुराने जमाने की हैं, वो नहीं आएंगी यहाँ मिलने, उन्हें तो चलकर ही मनाना पड़ेगा, बड़ी मिन्नतों से मानेंगी। कल ही कथा होगी ब्राह्मण खाएंगे, बिरादरी जमा होगी, देख लेना जेल का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। जब तुम्हारी सजा खत्म होगी ना, तुम हमारे घर दो चार दिन रहकर तब जाना, मैं आकर ले जाऊंगी तुम्हें।
5: भाग्यशाली हो बहन, भरा पूरा घर है तुम्हारा, सभी लोग हैं जो तुम्हें चाहते हैं, प्रेम करते हैं।
7: आपने अपने बारे में कभी नहीं बताया दीदी, तुम्हारे घर में कौन कौन है?
5: रहने दो, क्या करोगी जानकर।
7: बताओ ना दीदी, बहन कहती हो पर बहन जैसा व्यवहार नहीं करती, अपनों से बांटे तो दर्द बटता ही है ना दीदी।
5: वो तो सही है मृदुला, दर्द बटे इसीलिए चल बता रही हूँ, वरना सहानुभूति मिले ऐसी अपेक्षा मैं नहीं करती। मैं अकेली हूँ, एकदम अकेली, जलियांवाला बाग में मेरा सब कुछ लूट गया।
7: सब कुछ?
5: हाँ सब कुछ, पति और पुत्र दोनों की ही आहुति चली गई उस दिन। अब ऐसा कोई नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। सच कहूं तो अभी मेरा हृदय इतना विशाल नहीं हुआ है कि प्राणी मात्र को अपना समझ सकूं।
7: दीदी,
5: इन 10 वर्षों में मेरा हृदय जाति सेवा में ही धैर्य और शांति खोज रहा है। जिन कारणों ने मेरे बसे हुए घर को उजाड़ दिया है, मेरी गोद सुनी कर दी, उन कारणों का अंत करके उन्हें मिटाने में लगी हूं। बड़ा बलिदान तो पहले ही कर चुकी हूं, अब मेरे पास अपने आप को होम करने के सिवा और रखा ही क्या है बताओ।
7: सच दीदी, आपकी तपस्या तो धन्य है।
5: हाँ, औरों के लिए जाति सेवा सभ्यता का एक संस्कार हो सकती है या यशोपार्जन का एक साधन, पर मेरे लिए तो ये तपस्या ही है।
2: अरे चलो, हाँ तुम चलो चलो, जेल में तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो।
7: हाँ हाँ चलते हैं। दीदी, मैं तो बाहर जाकर भी तुम्हारा साथ नहीं भूल पाऊंगी और जरूर आऊंगी तुमसे मिलने।
5: तुम्हारे लिए मैं तो कुछ नहीं थी, पर मेरे लिए तुम बहुत अच्छी थी। अपने प्रियजनों में बैठकर कभी कभी इस अभागिन को जरूर याद कर लिया करना बहन, भिखारी के लिए चुटकी भर आटा ही सही।
7: दीदी नहीं, दीदी ऐसा मत सोचो। दीदी मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, हर रविवार मिलने आऊंगी तुमसे।
5: मैं इंतजार करूंगी।
2: यही खराबी है औरतों में, बातें बहुत करती। चलो
3: लो शर्मा दीदी, अब खाना भी खा लो।
8: दीदी यूं क्यों उदास बैठी हो?
9: क्या करे, ये इतवार भी चला गया पर वो मृदुला नहीं आई, इसीलिए उदास है।
3: बेचारी सारा दिन उसकी बात जोती रही।
8: इसमें नया क्या है कांता दीदी? पिछले 3 माह से बाढ़ देख रही हैं शमा दीदी, पर वो मृदुला नहीं आई।
9: हैं, 3 महीने हो गए? देखो तो समय कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता।
3: मुझे तो पहले ही मालूम था वो नहीं आने वाली, वो तो गलती से आ गई थी इस जेल में, इसलिए तो माफ़ी मांग कर चलती बनी।
5: माफ़ी? नहीं नहीं, कभी नहीं, उसने माफ़ी कभी नहीं मांगी होगी।
8: माफ़ी जैसा ही तो है दीदी, जिला करके कहना कि मैं तो धरने में शामिल ही नहीं थी। माफ़ी नहीं तो और क्या है?
9: हर एक के बस की बात नहीं है गुलामी के खिलाफ लड़ना, कुछ लोग तो गुलामी करने के लिए ही ठीक हैं, जरा दबाव पड़ा तो टूट जाते हैं।
3: चलो हम क्यों उनके लिए अपना खाना खराब करें, चलो चलो अपन खाना खाते हैं।
8: हाँ दीदी, वैसे भी ये खाना ठंडा तो और भी बुरा लगता है।
9: नहीं नहीं, मैंने मैट्रन से कहकर अपने लिए अलग सब्जी बनवाई है, चुपचाप मेरे साथ आ जाना, शोर मत करना।
8: अच्छा तो चलो चलते हैं, आओ ना कांता दीदी, श्यामा दीदी।
3: चलो ना, चलो श्यामा दीदी, उठो ना।
5: नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मैं यही ठीक हूँ।
3: हाँ भाई,
6: आप क्यों आने लगी हमारे साथ? इससे आपकी इज्जत नहीं घट जाएगी। चलो रे, अपन चलते हैं।
8: चलो चलो, हाँ दीदी चलो, हम चलते हैं।
5: मृदुला मृदुला, ये क्या जादू कर दिया रे तूने, कि तेरे बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कहाँ तो दीदी से कहती थी कि हर रविवार को आएगी, और कहाँ 3 माह बीत गए, तेरे दर्शन भी नहीं हुए। हे भगवान, अभी और 5 महीने काटने, पता नहीं। अरे ये क्या, ये कोई नई सी कैदन है?
2: हाँ हाँ, चल जा।
5: अरे
2: चलो जा, अंदर जाके बैठो।
5: ये तो पहचानी हुई लगती है। अरे ये तो मृदुला ही लगती है। हाँ मृदुला ही तो है। हे भगवान, कैसी हो गई है ये, ना वो रंग, ना रूप, ना वो कांति। मृदुला मृदुला
10: दीदी,
5: मृदुला
10: दीदी,
5: मृदुला
10: दीदी,
5: मेरी क्षमा दीदी, ये तेरी क्या दशा है मृदुला? सूरत ही बदल गई है तेरी, बीमार थी क्या?
10: बीमार? बीमार तो नहीं दीदी, विपत्ति से बंधी हुई हूँ। तुम भी मुझे खूब कोस रही होगी ना?
5: नहीं नहीं,
10: उन सारी निठुराइयों का प्रायश्चित करने आई हूँ, और सब चिंताओं से मुक्त होकर आई हूँ दीदी।
5: ये कैसी बातें कर रही है मृदुला बहन, इतनी जल्दी तुम यहाँ फिर क्यों आई हो? अभी तो 3 महीने ही हुए हैं ना, सब कुशल तो है?
10: अब सब कुशल है दीदी, सदा के लिए कुशल है, कोई चिंता ही नहीं रही। अब यहाँ जीवन पर्यंत रहने को तैयार हूँ। तुम्हारे स्नेह और कृपा का मूल्य अब समझ रही हूँ।
5: ये कैसी बातें कर रही हो, मेरी समझ से तो परे है ये सब।
10: तुम्हें बाहर की खबरें क्या मिलती होंगी दीदी, परसों शहर में गोलियां चली थी।
5: हाँ हाँ, कुछ सुना था, मगर ठीक से मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ क्यों हुआ।
10: जानती हो, देहातों में आजकल संगीनों की नोक पर लगान वसूल किया जा रहा है। भैरोगंज में भी ऐसा ही हुआ, एक किसान के घर में घुसकर कांस्टेबलों ने उसे पीटना शुरू कर दिया।
5: क्या कहती हो बहन?
10: हाँ।
11: डर क्यों मार रहा
12: है? हट सुअर कहीं का, चमड़ी उधड़ेगी जब देगा दमड़ी।
11: अरे मैं सच कह रहा हूँ मालिक, मुझे चाहे जितना मार दो, पर मेरे पास तो कानी कोड़ी भी नहीं बची है। अरे मेरे बीवी बच्चे कई दिन से भूखे हैं मालिक, अरे घर में अन्न का दाना नहीं है, अरे मैं लगान कहाँ से दूंगा?
12: ये ऐसे नहीं मानेगा, और पिटाई लगाओ इसकी, इतनी कि इस चोर की चमड़ी उधड़ जाए। मारो साले।
11: अरे मत मारो यार।
13: अरे कर चलो, बस करो ना, मर दो शर्म करो। अरे अंग्रेजी हुकूमत के इशारे पर अपने ही भाई को मार दो। अरे दलालो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, तुमसे दो गले के कुत्ते ही अच्छे जो कम से कम इतना तो ईमान रखते हैं। अरे छोड़ो इसे, छोड़ो।
12: अच्छा, अरे ये औरत तो बोलना भी जानती है, गाली भी देती है साली, जबान खींच लो इस कुतिया की।
14: क्या सार कपड़े ही खींच लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे जबान लगाई।
12: हाँ वो भी ठीक रहेगा, ऐसा सबक सिखाओ इसे कि इसका हश्र देखकर फिर कभी कोई लगान की चोरी नहीं कर पाए। वरना क्या कर लेगा है? अच्छा तो ये ले। मर गया साला, इसे उठाकर फेंक दो।

0: किसान की पत्नी के कपड़े फाड़ दिए गए, पीट पीट कर किसान को मार दिया गया।
1: इतना सब कुछ होता रहा और गांव के लोग तमाशा देखते रहे।
0: प्रजा की तो हर तरह से मरण है दीदी, अगर 10-20 आदमी जमा हो जाते तो पुलिस कहती हमसे लड़ने आए हैं। पुलिस के डंडों और गोलियों से सब डरते हैं, लेकिन जब किसान मरा तो गांव वालों को तैश आ गया।
1: अच्छा?
0: लाठियां लेकर दौड़ पड़े और कांस्टेबलों को घेर लिया। संभव है 2-4 आदमियों ने लाठियां भी चलाई हों। कांस्टेबलों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। 2-3 सिपाहियों को हल्की चोटें आईं। उसके बदले में 10-12 आदमियों की जानें ले ली गईं। हार कर गांव वालों ने लाशें उठाई और शहर वालों को अपनी विपत्ति की कथा सुनाने चले आए। इस हंगामे की खबर शहर में पहले से ही थी। लाशों को देखकर जनता उत्तेजित हो उठी और जब पुलिस अध्यक्ष ने इन लाशों का जुलूस निकालने की अनुमति ना दी तो लोग और भी झल्लाए। बहुत बड़ा जमाव हो गया। मेरे बाबूजी भी इसी दल में थे।
1: बाबूजी?
0: हाँ, भान के दादा।
1: ओह,
0: मैंने बहुत कहा मत जाओ, आज का रंग अच्छा नहीं है बाबूजी। तो कहने लगे मैं किसी से लड़ने थोड़े ही जाता हूँ। जब सरकार की आज्ञा के विरुद्ध जनाजा चला तो 50,000 आदमी साथ थे और उधर 50-100 सशस्त्र पुलिस रास्ता रोके खड़ी थी। सवार, प्यादे, सार्जेंट, पूरी फौज थी।
1: नामर्द कहीं के, निहत्तों के सामने नामर्दों को तलवार चमकाते और झंकार से शर्म भी नहीं आई।
0: जब बार बार पुलिस की धमकियों पर भी लोग ना भागे तो गोलियां चलाने का हुक्म हो गया। अम्मा जी कमरे में भान को लिए बार बार मुझे अंदर बुला रही थी। जब मैं ना गई तो वो भान को लिए छज्जे पर आ गई। उसी वक्त 10-12 आदमी एक स्ट्रेचर पर हृदेश की लाश लिए हुए द्वार पर आ गए।
1: हृदेश? हृदेश की लाश? यानी भान के बापू की?
0: हे
1: भगवान,
0: अम्मा की नजर उन पर पड़ी। अम्मा ने जाकर एक बार बेटे को देखा, उसे छाती से लगाया, चूमा, आशीर्वाद दिया और उन्मत्त दशा में चौराहे की तरफ चली गई।
1: हाँ?
0: और एक ही क्षण में उनकी लाश भी जमीन पर गिर पड़ी।
1: फिर
0: क्या? अम्मा के गिरते ही योद्धाओं का धैर्य टूट गया।
1: हाँ?
0: व्रत का बंधन टूट गया। सभी के सिर पर खून सवार था। उन्होंने पुलिस पर धावा बोल दिया। सिपाहियों के होश उड़ गए। जान बचाने के लिए सिपाही भागने लगे। भागते भागते भी वे बेतहाशा गोलियां चला रहे थे। भान छज्जे पर खड़ा था। न जाने किधर से एक गोली आकर उसकी छाती पर लगी और मेरे लाल, मेरे लाल वहीं पर गिर पड़ा। सांस तक ना ली थी। मगर मेरी आंखों में अब भी आंसू ना थे।
1: हाँ बहन, कभी कभी आंसू भी पथरा जाते हैं। मृदुला, उसके बाद क्या हुआ? तुम अपने घर आ गई?
0: नहीं दीदी, नहीं, उस घर में जाने की हिम्मत ही ना पड़ी। मेरे लिए अब वो घर घर ना था। मेरा घर तो अब ये है जहाँ मैं बैठी हूँ, या फिर वही चिता। मैं आश्रम में चली गई। कल की गोलियों में पार्टी का सफाया हो गया था। उसके दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा और ताला डाल दिया।
2: महिला आश्रम पर भी हमला हुआ। हमने एक वृक्ष की छांह में अपना दफ्तर बनाया और वायु के समान मुक्त होकर स्वच्छंदता के साथ काम करते रहे।
1: वाह, लेकिन मैंने सुना कि कोई जुलूस भी निकाला गया था।
2: हाँ दीदी, और जानती हो नेतृत्व किसे सौंपा गया?
1: किसे?
2: मुझे।
1: सच?
2: हाँ हाँ दीदी, निश्चित समय जुलूस ने प्रस्थान किया। उसी वक्त पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। वारंट देखते ही मुझे तुम्हारी याद आ गई। पहले तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उस वक्त तुम मेरी हमदर्दी की भूखी थी, अब मैं तुम्हारी सहानुभूति की भिक्षा मांग रही हूँ दीदी। अब मुझ में लेश मात्र भी दुर्बलता नहीं है, मैं चिंताओं से मुक्त हूँ। मैजिस्ट्रेट जो कठोर से कठोर दंड देंगे उसका स्वागत करूँगी मैं। अब मैं पुलिस के किसी आक्षेप या असत्य आरोपण का प्रतिवाद नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जेल के बाहर रहकर

0: इंजन में बंद होकर वही आग संचालक शक्ति का अखंड भंडार बन जाती है।
1: वाह मृदुला, सच तुम धन्य हो, तुम्हारा बलिदान अमर है। अमर हो गई तुम मृदुला।
2: अरे मृदुला, आ गई तुम?
0: हाँ आओ, आज हम भारत माता की सेवा का फिर से व्रत लें। आओ फिर से जय घोष करें, भारत माता की
3: जय,
0: भारत माता की
3: जय,
0: भारत माता की
3: जय।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में महिला फ्री स्टाइल कुश्ती के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतने पर अंतिम पंघाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पंघाल की यह उपलब्धि अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज पाडुर्णा जिले में सेवा मेरा योगदान और सेवा सेतु अभियान कार्यक्रमों में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. जिला विकास समिति की बैठक में पाडुर्णा जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दोपहर में मंडला पहुंचेंगे, जहां तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस का वितरण करेंगे। प्रदेश में नागरिकों को शासकीय सेवाएं और उनके गांव और वार्ड स्तर पर सहज और पारदर्शी, संवेदनशील और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वारा का आयोजन किया जा रहा है। अभियान में आज नागरीय क्षेत्रों में वार्ड एवं जोन स्तर पर मेगा सेवा सेतु शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल के जनजाति संग्रहालय में आज शाम 6 बजे से भक्ति गायन, डिमरियाई नृत्य, गुण जनजातीय कर्म नृत्य की प्रस्तुति का संयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर साफ रहेगा, हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। और जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। 2 सप्ताह से अधिक के इन खेलों में कई रोमांचक मुकाबले हुए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजक और 37 कांस्य के साथ कुल 85 पदक जीतकर 4था स्थान हासिल किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज हम आपसे एक ऐसे विषय में बात करने जा रहे हैं जिसका हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, विश्व शिक्षक दिवस। बहनों, गुरु वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। हमारे जीवन में माता पिता के बाद शिक्षक ही वह व्यक्ति होते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं, हमारी गलतियों को सुधारते हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए शिक्षक के सम्मान में मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने में माता पिता के साथ साथ शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। बहनों, हर वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है। बहनों, शिक्षक विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श होते हैं। उनका व्यवहार, अनुशासन, समय की पाबंदी और दूसरों के प्रति सम्मान हमें बहुत कुछ सिखाता है। एक अच्छे शिक्षक की सीख जीवन भर हमारे साथ रहती है। वे हमें यह समझाते हैं कि सफलता केवल अच्छे अंक प्राप्त करने से नहीं, बल्कि एक

अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनने से मिलती है। बहनों, आज के आधुनिक युग में शिक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। तकनीक और इंटरनेट से हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, लेकिन सही और गलत जानकारी में अंतर समझाने तथा ज्ञान का सही उपयोग करना सिखाने का कार्य शिक्षक ही करते हैं। वे हमें केवल पढ़ना नहीं बल्कि सोचना, समझना और सही निर्णय लेना भी सिखाते हैं। हमें अपने शिक्षकों द्वारा दी गई सीख को अपने जीवन में अपनाना ही उनके प्रति सच्चा सम्मान है। हमें अपने शिक्षकों का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे वर्तमान को ज्ञान देते हैं और हमारे भविष्य को बेहतर बनाने की नींव रखते हैं। बहनों, समय है मनोरंजन का, तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं ऋतुओं के संधिकाल और आपकी स्वास्थ्य जागरूकता के विषय में। बहनों, प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। वर्ष भर में अलग अलग ऋतुएं आती हैं और अपने साथ वातावरण में अनेक परिवर्तन लेकर आती हैं। जब एक ऋतु समाप्त होकर दूसरी ऋतु शुरू होती है तो उस बीच के समय को ऋतुओं का संधिकाल कहा जाता है। उदाहरण के लिए, वर्षा ऋतु समाप्त होकर शरद ऋतु आती है, जब सर्दी समाप्त होकर गर्मी का आगमन होता है, जब मौसम में अचानक परिवर्तन देखने को मिलता है, तापमान, नमी, हवा और हमारे आसपास के वातावरण में बदलाव होने लगता है। यह परिवर्तन हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। संधिकाल के दौरान हमारा शरीर नए मौसम के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रयास करता है। इस समय हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहना चाहिए। मौसम बदलने पर सर्दी, जुखाम, खांसी, गले की खराश, बुखार तथा एलर्जी जैसी सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए थोड़ी सी सावधानी हमें कई परेशानियों से बचा सकती है। बहनों, सबसे पहले हमें अपने खानपान पर ध्यान देना चाहिए। हमें ताजा, पौष्टिक और संतुलित भोजन करना चाहिए। फल, हरी सब्जियां, दालें, अनाज और पर्याप्त मात्रा में पानी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। बहुत अधिक तला भुना, अत्यधिक मसालेदार या अस्वच्छ भोजन करने से बचना चाहिए। भोजन करने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह धोना भी बहुत आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है स्वच्छता। बदलते मौसम में कीटाणुओं और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए हमें अपने घर, कक्षा और आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। अपने हाथ नियमित रूप से साबुन से धोना चाहिए और खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना चाहिए। हमें गंदे पानी और खुले में रखे खाद्य पदार्थों से भी बचना चाहिए। पर्याप्त नींद और आराम भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। आजकल बच्चे पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल, टेलीविजन और इंटरनेट पर काफी समय बिताते हैं। देर रात तक जागने की आदत हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, इसलिए हमें समय पर सोना और पर्याप्त नींद लेना चाहिए। इसके साथ ही व्यायाम और शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। नियमित रूप से टहलना, योग करना, खेलना और हल्का व्यायाम करना शरीर को सक्रिय और स्वस्थ रखने में मदद करता है। सुबह की ताजी हवा में कुछ समय बिताना भी लाभदायक हो सकता है। ऋतु परिवर्तन के दौरान हमें मौसम के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। अचानक बहुत अधिक ठंडे वातावरण में जाने से भी बचना चाहिए। बहनों, हमें पानी पीने की आदत को भी बनाए रखना चाहिए। कई बार मौसम ठंडा होने पर हमें प्यास कम लगती है और हम पर्याप्त पानी नहीं पीते, लेकिन शरीर को हर मौसम में पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए नियमित अंतराल से पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। बहनों, स्वास्थ्य जागरूकता का अर्थ केवल बीमारी से बचना नहीं है, बल्कि अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना है। हमें तनाव से बचने के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, मनोरंजन और परिवार के साथ समय बिताने को भी महत्व देना चाहिए। खुश और सकारात्मक मन भी अच्छे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहनों, हम अक्सर कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। वास्तव में स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के बिना हम अपने जीवन के लक्ष्यों को अच्छी तरह प्राप्त नहीं कर सकते। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और सदैव जागरूक रहिए। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं बारिश की नमी और सीलन से बचने के उपाय के विषय में। बहनों, बारिश का मौसम हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, पेड़ पौधे खिले हुए उठते हैं और वातावरण ठंडा तथा सुहावना हो जाता है। लेकिन बारिश अपने साथ कुछ समस्याएं भी लेकर आती है। लगातार बारिश होने के कारण घरों की दीवारों, छतों और फर्श की नमी आ जाती है। सीलन के कारण दीवारों पर काले या हरे धब्बे दिखाई देने लगते हैं, पेंट खराब होने लगता है और घर में एक अजीब सी गंध आने लगती है। नम वातावरण में फफूंद और अन्य सूक्ष्म जीव तेजी से बढ़ सकते हैं। इससे कुछ लोगों को खांसी, छींक, नाक में परेशानी या सांस लेने की असुविधा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बारिश के मौसम में नमी और सीलन से बचाव करने का कुछ आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
बारिश रुकने के बाद कुछ देर के लिए खिड़कियां और दरवाजे खोल देना चाहिए ताकि अंदर की नमी बाहर निकल सके। जिन कमरों में हवा का आवागमन कम होता है वहां सीलन जल्दी पैदा होती है। यदि छत में पानी टपक रहा है या दीवार में कहीं से पानी आ रहा है तो उसकी मरम्मत समय पर करवानी चाहिए। छोटी सी दरार को नजरअंदाज करने पर बाद में बड़ी समस्या हो सकती है। छत की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था भी ठीक रखनी चाहिए ताकि बारिश का पानी जमा ना हो। बहनों, हमें अपने घर के फर्नीचर और सामान को भी नमी से बचाना चाहिए। लकड़ी के सामान को दीवार से थोड़ा दूर रखना ही अच्छा है, विशेषकर उन दीवारों से जिनमें सीलन अधिक आती है। कपड़े, किताबें और जूते चप्पल भी नम स्थानों पर नहीं रहने चाहिए।

0: बहनों, हमें यह समझना चाहिए कि सावधानी ही बचाव है। यदि हम बारिश शुरू होने से पहले ही घर की छत, दीवारों, नालियों और पाइपों की जांच कर ले तो सीलन की समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है। बहनों, बारिश प्रकृति का सुंदर उपहार है। हमें इसका आनंद लेते हुए इससे जुड़ी समस्याओं के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं पितृपक्ष की सनातन परंपरा और भारतीय संस्कृति के विषय में। बहनों, भारत एक ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ परिवार, संस्कार और पूर्वजों के प्रति सम्मान को सदैव विशेष स्थान दिया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि हम केवल अपने वर्तमान के बारे में न सोचें, बल्कि उन पूर्वजों को भी याद करें जिनके संस्कारों और प्रयासों से हमारा परिवार और समाज आगे बढ़ा है। इसी भावना से जुड़ी है एक महत्वपूर्ण परंपरा, पितृपक्ष। बहनों, पितृपक्ष वह अवधि है जिसमें हिंदू परिवार अपने दिवंगत पूर्वजों का स्मरण करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कर्म किए जाते हैं। बहनों, हमारी संस्कृति में एक प्रसिद्ध विचार है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। इसका अर्थ है कि माता और पिता को देवतुल्य सम्मान दिया जाए। पितृपक्ष इसी भाव को आगे बढ़ाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल हमारी व्यक्तिगत उपलब्धियों का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारे माता पिता, दादा दादी और अनेक पूर्वजों का योगदान भी रहा है। इस समय लोग जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं, दान करते हैं और अपने पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। इस प्रकार यह परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा की भावना को भी मजबूत करती है। भारतीय संस्कृति की सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है कि वह हमें अपने जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। पितृपक्ष हमें यही संदेश देता है कि अतीत का सम्मान करते हुए वर्तमान को बेहतर बनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छे संस्कार छोड़ें। बहनों, आज के समय में पितृपक्ष की परंपराओं को समझते हुए हमें इनके मूल संदेश, श्रद्धा, कृतज्ञता, परिवार के प्रति सम्मान, सेवा और सदाचार को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जिस परिवार को अपनी जड़ों का सम्मान होता है, उसकी संस्कृति की नींव सदैव मजबूत रहती है। बहनों, भारत की संस्कृति में पितृपक्ष का विशेष स्थान है। यदि हम इन परंपराओं को वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से देखें, तो इनके पीछे कई उपयोगी संदेश दिखाई देते हैं। पहला महत्व है मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। समाज में सहयोग की और समानता की भावना को बढ़ावा दिलाता है। इस अवधि में कई परिवार सात्विक और सादा भोजन करने पर जोर देते हैं। मौसम के परिवर्तन के समय हल्का, संतुलित और स्वच्छ भोजन करना स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। पितृपक्ष हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का संदेश भी देते हैं। तर्पण और धार्मिक कार्य करते समय जल को प्रदूषित न करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। बहनों, पितृपक्ष का वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक महत्व, इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए आइए सुनवाते हैं आपको यह वार्ता। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं श्रीमती रत्ना सरीन।
1: पैतृक पूर्वजों का पखवाड़ा, जिसे पितृ पक्ष भी कहा जाता है, हिंदू कैलेंडर में 16 चंद्र दिन की अवधि है, जब हिंदू अपने पूर्वजों को विशेष रूप से भोजन प्रसाद के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं, पितरों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। इसे 16 श्राद्ध, महालय पक्ष, अपर पक्ष आदि नामों से भी जाना जाता है। जन्म एवं मृत्यु का रहस्य अत्यंत गूढ़ है। वेदों में, दर्शन शास्त्रों में, उपनिषदों में एवं पुराणों आदि में हमारे ऋषि मुनियों ने इस विषय पर विस्तृत विचार किया है। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु और मृत्यु को प्राप्त होने वाले का जन्म निश्चित है। यह प्रकृति का नियम है। शरीर नष्ट होता है, मगर आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। अपने पूर्वजों को निमित्त दी गई वस्तुएं सचमुच उन्हें प्राप्त होती हैं या नहीं, इस विषय में अधिकांश लोगों को संदेह है। हमारे पूर्वज अपने कर्म अनुसार किस योनि में उत्पन्न हुए हैं, जब हमें इतना ही

0: नहीं मालूम, तो फिर उनके लिए दिए गए पदार्थ उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? क्या भोजन कराने से हमारे पूर्वजों का पेट भर सकता है? ना जाने इस तरह के कितने ही प्रश्न लोगों के मन में उठते होंगे। अब श्राद्ध संस्कार को ही लीजिए। श्राद्ध सूक्ष्म शरीरों के लिए वही काम करते हैं जो जन्म के पूर्व और जन्म के समय के संस्कार स्थूल शरीर के लिए करते हैं। यहाँ से दूसरे लोक में जाने और दूसरा शरीर प्राप्त करने में जीवात्मा की सहायता करके मनुष्य अपना कर्तव्य पूरा कर देता है। इसलिए इस क्रिया को श्राद्ध कहते हैं जो श्रद्धा से बना है। जिस प्रकार सभी संस्कार प्रकृति के कार्य को सहायता पहुंचाने के लिए बने हैं, उसी प्रकार श्राद्ध पदा का भी उद्देश्य यही है कि वह प्राणमय कोष की अन्नमय कोष के यथावत रहने के समय तक उस पर अवलंबित रहने की प्रकृति को नष्ट कर दें, और जब तक प्रकृति अपने साधारण प्रक्रिया में पहुंचाना चाहे उस मनुष्य को भूलोक में इस प्रकार धारण किए रहें। इस विषय में सबसे पहला आवश्यक कार्य यह है कि अन्नमय कोष नष्ट कर दिया जाए। पितृपक्ष की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। वैदिक काल में भी श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व था। पितरों को देवताओं के समान सम्मान दिया जाता था। यह मान्यता थी कि पूर्वजों का आशीर्वाद परिवार की उन्नति, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए आवश्यक है। पितृपक्ष को विशेष मानने का कारण यह है कि यह हमारे जीवन में पूर्वजों के योगदान के याद करने का अवसर देता है। यह न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने का भी माध्यम है। यह समय आत्मचिंतन और आध्यात्मिक विकास का अवसर देता है। यह पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सही समय है। यह परंपराओं और संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है। हालांकि पितृपक्ष धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, इसके वैज्ञानिक पहलू भी महत्वपूर्ण हैं। श्राद्ध में उपयोग किए जाने वाले जैसे तिल, कुश और चावल का स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव होता है। पितृपक्ष में दान करने से समाज में संतुलन और सहयोग की भावना पैदा होती है। पितृपक्ष हमें यह संदेश देता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों पर सीमित नहीं है। यह समय आत्मा की यात्रा और कर्म फल को समझने का अवसर देता है। यह हमें अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका भी देता है। पितृपक्ष में दान का भी विशेष महत्व है। जैसे अन्नदान, वस्त्रदान और गोदान को श्रेष्ठ दान माना गया है। यह दान न केवल पितरों को संतुष्ट करता है, बल्कि परिवार में समृद्धि लाता है। यदि तिथि ज्ञात ना हो तो सर्वपित्री अमावस्या को सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। पितृपक्ष हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का प्रतीक है। यह समय केवल धार्मिक अनुष्ठानों का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास और पारिवारिक एकता का भी माध्यम है। जब हम अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं, तब हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। पुराणों में कहा गया है कि हमारे पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं। गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं। श्राद्ध के समय पितरों के लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूरा होता है। गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के लिए निकाला गया भोजन इन जीवों के माध्यम से पंच तत्वों में विलीन होता है, और पंच तत्वों में विलीन हुए प्राणियों को तृप्ति देता है। हमारी संस्कृति में सारी वसुधा को एक कुटुंब माना गया है और सर्वहित की कामना की गई है। श्राद्ध इसी परंपरा को पोषित करता है। अबोले जीवों के प्रति हमें संवेदनशील बनाता है। हमारी ऋषि परंपरा समवेद स्वर में उद्घोषित करती है कि प्रकृति को हम जो देते हैं, वह वही हमें लौटाती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति का बड़ा सुंदर और वैज्ञानिक विवेचन भी मिलता है। श्रद्धा इदम श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। पितर के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो अर्पित किया जाता है वह श्राद्ध है। पुराणों में कई कथाएं इस उपलक्ष्य को लेकर हैं, जिसमें कर्ण के पुनर्जन्म की कथा काफ़ी प्रचलित है एवं हिंदू धर्म में सर्वमान्य श्री रामचरितमानस में भी श्री राम के द्वारा श्री दशरथ जी और जटायु को गोदावरी नदी पर जलांजलि देने का उल्लेख है एवं भरत जी के द्वारा दशरथ हेतु दशगात्र विधान का उल्लेख भरत कीनी दशगात्र विधाना तुलसी रामचरितमानस में हुआ है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर तीन प्रकार के ऋण प्रमुख माने गए हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इसमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा वे सब बुजुर्ग भी सम्मिलित हैं जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने तथा उसका विकास करने में सहयोग दिया। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी लगभग 3,85,000 किलोमीटर है। हम जिस समय पितृ पक्ष मनाते हैं अर्थात आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट अर्थात लगभग 3,81,000 किलोमीटर पर ही रहता है। इसलिए कहा जाता है कि पितृ हमारे निकट आ जाते हैं। शतपथ भ्रमण में कहा है, विभु उद्धर्व भागे पित्रो वसंति, यानी विभु अर्थात चंद्रमा के दूसरे हिस्से में पितरों का निवास है। चंद्रमा का एक पक्ष हमारे सामने होता है जिसे हम देखते हैं, परंतु चंद्रमा का दूसरा पक्ष हम कभी देख नहीं पाते। इस समय चंद्रमा दक्षिण दिशा में होता है। आज हम यदि आकाश को देखें तो दक्षिण दिशा में दो बड़े सूर्य हैं जिनसे विकिरण निकलता रहता है। हमारे ऋषियों ने उसे श्वान प्राण से चिन्हित किया है। शास्त्रों में इसका उल्लेख लघु श्वान और वृहद श्वान के नाम से है। इसे ही आज के विज्ञान ने केनिस माइनर और केनिस मेजर के नाम से पहचाना है। श्राद्ध में हम एक प्रकार से उसे ही हवी देते हैं कि पितरों को उनके विकिरणों से कष्ट ना हो। इस प्रकार से देखा जाए तो पितृपक्ष और श्राद्ध में हमें न केवल अपने पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं बल्कि पूरा खगोल शास्त्र भी समझ रहे हैं। श्रद्धा और विज्ञान का यह अद्भुत मेल है जो हमारे ऋषियों द्वारा बनाया गया है।
1: बहनों, अभी आपने सुनी वार्ता जिसका विषय था पितृपक्ष का वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक महत्व। इस विषय पर हमें जानकारी दे रही थी श्रीमती रत्ना सरीन। बहनों, खाना खजाना में हम आपको बताने जा रहे हैं कद्दू से बनने वाली कुछ टेस्टी रेसिपी। जी हाँ बहनों, कद्दू से सब्जी तो सभी बनाते हैं। आज हम बनाते हैं कद्दू से मसाला टिक्की। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम कद्दू, इसे हमें किसकर और उबालकर इस्तेमाल करना है, 2 बड़े उबले आलू, ब्रेड क्रम्स या सूजी, 2 में से जो भी आपके घर में अवेलेबल हो ले सकते हैं, आधा कटोरी नमक स्वाद अनुसार, हरी मिर्च 2 बारीक कटी हुई, 2-3 चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, लाल मिर्च 1/4 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, उबले और कद्दूकस किए हुए कद्दू और आलू में ये सभी सामग्री मिलाकर एक डो तैयार कर ले। अब इन्हें टिक्कियों का आकार देकर गर्म तवे पर घी या तेल जिसमें भी आप सेकना चाहें लाइट ब्राउन होने तक सेक ले। तैयार है टेस्टी कद्दू की टिक्की, इसे आप हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और अब बनाते हैं बहनों कद्दू का चीला। इसके लिए हमें चाहिए किसा हुआ कद्दू 1 कटोरी, 1 कटोरी रवा, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, चाट मसाला 1/2 चम्मच, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच दही। इन सभी सामग्रियों को एक कटोरे में थोड़ा लिक्विड बैटर बना ले और थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण को चीले का आकार देकर गर्म तवे पर घी या तेल लगाकर सेक ले। तैयार है आपका टेस्टी कद्दू का चीला। बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी को दे इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनवाते हैं नरेंद्र कुमार राहुल और साथियों का गाया ये भजन।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। आप सुन रहे हैं नरेंद्र कुमार राहुल और साथियों के गाए लोकगीत। आइए सुनते हैं चेतावनी।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति में आकाशवाणी मध्य प्रदेश से लीजिए सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं बद्री प्रसाद नागर। आइए सुनते हैं इनके गाए भजन।

बद्री प्रसाद नागर से अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत जूली फिल्म से लिया है, जिसे आवाज दी किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी की शब्द रचना, संगीत राजेश रोशन का।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में गाए याराना फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंडला में आयोजित कार्यक्रम में 9,04,126 तेंदुपत्ता संग्राहकों को 36,17,37,518 रुपए की बोनस राशि अंतरित करेंगे। इसके साथ ही 84 वन समितियों के सदस्यों को 26,56,53,929 रुपए का काष्ठ लाभांश भी वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व मंडला, पश्चिम मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, उत्तर सिवनी, दक्षिण सिवनी, उत्तर बालाघाट और दक्षिण बालाघाट वन मंडलों के तेंदुपत्ता ग्राहक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद पाडोना में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 8 अक्टूबर को मुंबई में प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठक करेंगे। इस दौरान वे प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और औद्योगिक विकास के अवसरों पर चर्चा करेंगे। बैठक इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश के तहत आयोजित होगी। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने आज भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक देश की पूरी तरह नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी और देश के भविष्य के लिए ड्रग्स और नशे को खत्म करना बेहद जरूरी है।
1: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये संकल्प लिया है कि 2029 तक ये देश पूर्णतः ड्रग मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा। निश्चित रूप से ये इस देश के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। जब उन्होंने नक्सलवाद को समाप्त करने की बात की थी तो उसको मूर्त रूप दिया और देश से नक्सलवाद समाप्त हुआ। देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से कटिबद्ध है।
0: गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, मंदसौर और डिंडौरी सहित विभिन्न जिलों में आयोजित ग्राम सभाओं में ग्रामीणों ने विकास योजनाओं और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की। वर्ष 2027-28 की ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्ताव तैयार किए गए। स्वच्छता, प्लास्टिक मुक्त गाँव, बाल विवाह और नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता पर भी जोर दिया गया। ग्राम सभाओं में सुशासन, पारदर्शिता, डिजिटल पंचायत और ग्रामीणों के विकास कार्यों में भागीदारी बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। प्रदेश से मानसून की विदाई हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून 24 जून को दाखिल हुआ था और 3 अक्टूबर को विदा हुआ। मानसूनी सीजन में प्रदेश में 35.8 इंच बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से करीब 4% कम है। अगले 3 दिन मौसम मुख्यतः साफ रहेगा और दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। 7 अक्टूबर से पूर्व मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मानसून की विदाई के बाद अब दिन में गर्मी और रात में ठंडक बढ़ने की संभावना है। अमन सहरावत ने एशियाई खेलों में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस वर्ग में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में।

जबलपुर में जन विश्वास अभियान के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. संजय गोयल ने शहपुरा विकासखंड के 3 सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। नर्मदापुरम जिले में शासकीय गृह विज्ञान अग्रणी महाविद्यालय में 3 MP बटालियन के दिशा निर्देशों के तहत NCC कैडेट्स ने स्वच्छता अभियान चलाया। झाबुआ में दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर पत्थरबाजी और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा लगातार निगरानी, पेट्रोलिंग और जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास सेतु अभियान के तहत आयोजित शिविर में विधायक गौरव सिंह पारधी ने अधिकारियों के साथ क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर और डीटीएच का ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। इस समय दोपहर के 2:15 होने को हैं। कुछ ही देर में दोपहर समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है।
2: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy and I'm sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
1: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में

0: सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और ऋषु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
2: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
3: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
2: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पारो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में 2 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर airnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
5: हूती विद्रोहियों के रियाद पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तैज और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशन में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
6: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जबकि कुमकुम मोहत व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली

0: मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

0: स्वागत है बाल मित्रों, जय हिंद
1: जय हिंद।
0: मैं हूँ आपकी बाल मित्र रेखा दीदी,
2: लेकर आई हूँ आपका अपना प्रोग्राम बाल सभा। बाल मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इन सभी सवालों के जवाब जानना सामान्य ज्ञान का एक हिस्सा है, और आज का हमारा विषय भी यही है, अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाएं। सामान्य ज्ञान का मतलब अपने आसपास की दुनिया, प्रकृति, विज्ञान, इतिहास, खेल, देश और दुनिया के बारे में जानकारी रखने से है। बाल मित्रों, सामान्य ज्ञान बढ़ाने से हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हम स्कूल में भी नई नई बातें सीख पाते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हम खेल खेल में भी अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा सकते हैं, जैसे किताबों से दोस्ती करें और उन्हें पढ़ें, समाचार और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुनें, सवाल पूछने से कभी न डरें, अपने दोस्तों के साथ कुछ गेम खेलें, अपने आसपास और प्रकृति को ध्यान से देखें और ऑब्जर्व करें। याद रखिए बाल मित्रों, हर सवाल का जवाब तुरंत आना जरूरी नहीं है, लेकिन हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम आज से ही अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाते हैं। जैसे कि आज से वर्ल्ड स्पेस वीक यानी विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का आरंभ होने जा रहा है, जो कि 4 से 10 अक्टूबर तक अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है। बाल मित्रों, आज एक और विशेष दिन वर्ल्ड एनिमल डे यानी विश्व पशु दिवस मनाया जा रहा है, जो कि पशुओं के कल्याण, उनकी सुरक्षा करना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता के उद्देश्य को याद दिलाता है। तो आइए हम सब इस विशेष दिन को याद करते हुए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगर

का झाड़ पूंछ पे लेकर चले पहाड़। पहाड़ पे बैठा बूढ़ा जोगी, जोगी की एक जोगन हो

0: देखो घूंघट डाल के चलता है, मांग में सिंदूर भरता है, माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी, इस पगड़े से बट पर वोट मतलब क्या, माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी, हिंदी में अलजेब्रा छान, बी आई पी अटल बिहारी बनियान, बी आई पी अनोखान।
1: बाल मित्रों, ज्ञान की दुनिया से जुड़ने के लिए हम बाल साहित्य की मदद ले सकते हैं, क्योंकि बाल साहित्य हमें हंसाता है, नई बातें सिखाता है और कभी कभी ऐसी सीख भी देता है जो जीवन भर हमारे साथ रहती हैं। बाल साहित्य में कहानियाँ, कविताएँ, बाल उपन्यास, चित्र पुस्तकें और ज्ञानवर्धक रचनाएँ होती हैं, जो हमारा मनोरंजन तो करती ही हैं, साथ में हमारा ज्ञान भी बढ़ाती हैं। तो इसी कड़ी में ज्ञान और मनोरंजन को बढ़ाते हैं, सुनते हैं हमारे बाल साथियों की ये मनमोहक प्रस्तुतियाँ।
2: नमस्कार, मेरा नाम अनाया है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक छोटे से गांव में एक आरव नाम का बच्चा रहता था। उसे मोबाइल पर खेलना बहुत पसंद था। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक रंग बिरंगी कहानी की किताब दी। आरव ने किताब खोली और उसमें एक छोटे से खरगोश की कहानी पढ़ने लगा। कहानी इतनी रोचक थी कि उसने पूरी किताब एक ही दिन में पढ़ ली। अगले दिन उसने दूसरी किताब पढ़ी, फिर तीसरी। धीरे धीरे उसे जंगल, जानवरों, अंतरिक्ष और महान वैज्ञानिकों के बारे में बहुत कुछ पता चलने लगा। अब आरव अपने दोस्तों को नई नई कहानियाँ सुनाता और उनके सवालों के जवाब खोजने में मदद करता। एक दिन उसकी शिक्षिका ने कहा, आरव तुम्हें इतनी सारी नई बातें कैसे पता चलती हैं? आरव मुस्कुराकर बोला, मैम मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी किताबें हैं। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किताबें हमारी सच्ची मित्र हैं, वे हमें ज्ञान देती हैं, हमारी सोच को बढ़ाती हैं और हमें हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर देती हैं। धन्यवाद।
3: मैं राघव फुलैया हूँ, मैं सीनियर केजी में हूँ। मैं आज एक कविता सुनाने वाला हूँ। आम स्वाद में खट्टा मीठा, हम बात है इसमें कोई खास, हर कोई देख से लंच आया भयंकर है, तो रहना पाए गर्मी के मौसम में आता फल उगरा चाहिए केला था। नमस्ते, मेरा नाम है अवध गुप्ता, आज मैं सीनियर के जे में हूँ और आज मैं एक हिंदी दिवस की राइम गाऊंगा। उसका नाम है एक छोटा सा बीच।

0: लगा। थैंक यू।
1: मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है, मैं सेना केजी में पढ़ता हूँ। एक छोटी किश्ती मेरे पास, उसको बनवाई मेरी रंगवाई और पानी में तैराई। एक मेंढक बैठा पानी में, उसने देखा मुझको घूरा और कूद गया किश्ती में। मेरी किश्ती डगमगाई, वो दूर तक गई, आंखों से छिप गई, डूब गई पानी में। थैंक यू।

你们不累不累，我数得到。这活动你们不比比比比比比比比比，这活动你们不比比比，我数得到。

0: नमस्ते, मेरा नाम अनिका वाष्णे है। मैं कक्षा 4th D में पढ़ती हूँ। आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक कविता जिसका नाम है हवा और धूल। हवा धूल को छेड़ के भागी, सोती धूल अचानक जागी, उड़ी हवा के पीछे पीछे हवा हो गई धूल के नीचे। धूल खोजती आँखें पीछे, दाएं बाएं आगे पीछे, हवा चल रही सांस खींचे, नीचे नीचे धूल के नीचे। लगा धूल को कुछ है गड़बड़, धूल दब से नीचे आई, धूल की आँख में धूल झोंक कर हवा हो गई हवा हवाई। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कविता जिसका नाम है हमारा आहार। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करे विचार, चावल दाल और सब्जी खाओ, तुम में तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना, दूध दही तुम छक कर खाओ, फूल फलों के बाग लगाओ, आम अमरूद पपीता खाओ, केला भी घर ले आओ, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते पीड़ा। थैंक यू।
1: मेरा नाम आयु बलैया है और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कविता प्रस्तुत कराना चाहता हूँ। लहरों से

0: डर करनों का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद।
1: माय नेम इज लावण्या यादव, मैं आपको एक पोएम सुनाने जा रही हूँ। चिड़िया आए उड़ उड़ उड़, बच्चे बोले चू चू चू, दाना खाओ पानी पियो, खूब खेलो खूब हंसो। बारिश आई चम चम चम, लेके जाता निकले हम, पेड़ पिसला गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम।
2: मेरा नाम नैवेद्य पटेल है, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मैं आज आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ, जिसका शीर्षक है ननिहाल। नरम रुई सा गोला हूँ, गोलू गोल मटोला हूँ, करहे सा चंचल भोला हूँ, छोटा श्याम सलोना हूँ। नानी का मैं प्यारा हूँ, नाना का मैं राज दुलारा हूँ, चंदा मामा से प्यारे मामा, उनकी आँखों का तारा हूँ। नानी देती दूध मलाई, नाना मुझे पढ़ाते हैं, मामा बाहों के झूले पर लेकर मुझे झुलाते हैं। नानी जी के बाग बगीचे कितने प्यारे लगते हैं, कटहल आम नीम के ऊपर मधुमक्खी के छत्ते हैं। बेला जूही चंपा गेंदे पर भौरे मंडराते करते हैं, तोता मैना बया सरीखे पंछी गाया करते हैं। खेतों में जब दौड़ बछड़ा पीछे भागा फिरता हूँ, फूलों पर रंगीन तितलियाँ उनको पकड़ करता हूँ, और बगिया के बीच पर तलैया जिनमें मछली रहती है, सारस बगुला राम चिरैया उसके मछली डरती है। उस पर पोखर के बगल में झाड़ जंगल जैसा लगता है, उल्लू बिल्ली गीदड़ नेवला सब भी जिसमें रहता है। ऐसा प्यारा सबसे न्यारा नाना जी का गांव है, धरती की सुंदरता अद्भुत और ममता की छाव है।
3: मेरा नाम अदीशा पटेल है, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मैं आज आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। सर्कस एक शहर में आया, लाल किले पर टेंट लगाया, उसके जोकर खूब हंसाते, कलाकार करतब दिखाते, एक पहिए पर कार चलाते, बिल्ली कुत्ता तोते मुर्गी बिना टिकट की रेल में चलते, प्यारे कुत्ते पूछ हिलाकर आग के गोले में घुस जाते, और अंत में शेर और ओ चीता रिंग के चक्कर 3 लगाते। धन्यवाद।
4: आम रिमझिम है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है लगातार अभ्यास करना चाहिए। एक गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। उसके सभी दोस्त पढ़ाई और खेलकूद में उससे आगे थे। जब भी स्कूल में परीक्षा होती, राम के कम अंक आते। उसके शिक्षक भी उसे समझाते कि यदि वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा और नियमित अभ्यास करेगा तो वह भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है, लेकिन राम जल्दी ही निराश हो जाता था। वह सोचता था कि कुछ बच्चे जन्म से ही होशियार होते हैं और कुछ बच्चे हमेशा कमज़ोर रहते हैं, इसलिए वह पढ़ाई करने के बजाय अपना अधिकतर समय खेलकूद और इधर उधर घूमने में बिताता था। एक दिन उसके विद्यालय में एक नई प्रतियोगिता की घोषणा हुई। यह गणित की प्रतियोगिता थी। राम के सभी मित्र उसमें भाग लेने के लिए उत्साहित थे। राम भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था, लेकिन उसकी गणित के सवाल हल करने में बहुत

कठिनाइयां होती थी। उसने अपने गणित के शिक्षक से कहा, गुरुजी मैं भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे गणित बिल्कुल नहीं आती। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मुझसे सवाल हल नहीं होते। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कोई भी व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता। सफलता पाने के लिए लगातार अभ्यास करना पड़ता है। यदि तुम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे तो एक दिन कठिन से कठिन सवाल भी हल कर लोगे। राम ने शिक्षक की बात ध्यान से सुन ली और उसी दिन से मेहनत करने का निश्चय किया। अगली सुबह वह जल्दी उठा और गणित की पुस्तक लेकर बैठ गया। शुरुआत में उसे एक भी सवाल ठीक से समझ नहीं आया। कई बार उसने सवाल हल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार गलती हो जाती थी। वह बहुत परेशान हुआ और पुस्तक बंद करके बैठ गया। तभी उसे अपने शिक्षक की बात याद आई, लगातार अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है। उसने फिर पुस्तक खोली और सवाल हल करने लगा। इस बार उसने अपनी गलतियों को ध्यान से देखा और उन्हें सुधारने की कोशिश की। अब राम ने एक नियम बना लिया, वह प्रतिदिन सुबह 1 घंटे गणित का अभ्यास करता और शाम को विद्यालय से लौटकर 2 घंटे पढ़ाई करता। और उसे जो सवाल समझ नहीं आते, वह अपने शिक्षक और मित्रों से पूछता। धीरे धीरे उसकी गलतियां कम होने लगीं और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ सप्ताह बाद राम पहले से अधिक कठिन सवाल हल करने लगा। अब उसे गणित से डर नहीं लगता था। उसे समझ आ गया था कि कठिनाई का सामना करने से ही ज्ञान बढ़ता है। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, मैं एक बहुत कठिन सवाल दिया। पूरी कक्षा में कोई भी विद्यार्थी उस सवाल को हल नहीं कर पाया। राम ने ध्यान से सवाल पढ़ा और कुछ देर सोचने के बाद उसे हल कर दिया। उसे शिक्षक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूरी कक्षा से कहा, बच्चों देखो, राम पहले गणित में कमज़ोर था, लेकिन आज उसने अपनी मेहनत और अभ्यास से कठिन सवाल हल कर दिया। यह सुनकर राम बहुत खुश हुआ। अब उससे विश्वास हो गया कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, यदि उसके लिए सच्चे मन से प्रयास किया जाए। कुछ दिनों बाद गणित की प्रतियोगिता का दिन आ गया। राम ने प्रतियोगिता में भाग लिया। वह बहुत कठिन सवाल पूछे गए, लेकिन राम घबराया नहीं। उसने शांत मन से सभी सवालों को हल करने का प्रयास किया। परिणाम घोषित हुआ तो राम ने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह देखकर उसके माता-पिता, शिक्षक और मित्र बहुत खुश हुए। राम को पुरस्कार के रूप में एक सुंदर ट्रॉफी और परिणाम दिया गया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि लगातार अभ्यास करने से कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। धन्यवाद।

0: तो कैसी लगी आपको आज की हमारी मनमोहक प्रस्तुतियाँ? हमें पत्र लिखकर जरूर बताएं। अब वक्त है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए अपनी रेखा दीदी को कार्यक्रम से विदा लेने की। खूब पढ़िए, खूब सीखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार। जय हिंद।
1: जय हिंद।
2: नन्हे मुन्ने बच्चे अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें।

सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने आज भोपाल में मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक देश को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी और देश के भविष्य के लिए ड्रग्स और नशे को खत्म करना

अंतरित करेंगे। इसके साथ ही वन समितियों के सदस्यों को काष्ठ लाभांश भी वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 अक्टूबर को मुंबई में प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठक करेंगे। इस दौरान प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और औद्योगिक विकास के अवसरों पर चर्चा होगी। और प्रदेश से मानसून की विदाई हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून 24 जून को दाखिल हुआ था और 3 अक्टूबर को विदा हुआ। मानसूनी सीजन में प्रदेश में 35.8 इंच बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से करीब 4% कम है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से ही शाम 5:02 पर युवावाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:33 पर। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे आज शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल से 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा। जिसमें 7:30 से 8:00 के बीच सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय रहेगा रबी फसलों की तैयारी एवं कृषि समसामयिक कार्य, विशेषज्ञ डॉक्टर रतनदीप सोनी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश में रात 8:00 फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं। 8:15 पर कार्यक्रम डगर विकास की। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी सागर की प्रस्तुति रहेगा, जिसमें आज का विषय रहेगा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। कुछ और फिल्मी नगमे 8:35 पर सुने जाएंगे। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 9:30 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी दिल्ली से ही रात 10:00 सुनिएगा एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स। विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा, इसका प्रसारण होगा रात 10:20 से। ये थे आज शाम प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 3:02 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर कुछ देर के लिए हमारा ट्रांसमिशन बंद होता है। इस बीच कार्यक्रम डीटीएच पर जारी रहेगा। शाम 5:00 से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 मीटर पर सुन सकेंगे।

आप सुन रहे थे चरस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। विनय अवस्थी ने इस गीत को पसंद किया। पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के ये हमारे श्रोता हैं और इसी गीत की फरमाइश की अम्बाला कैंट हरियाणा से रतन लाल, विनोद कुमार, साहिल, सुदेश और मनीषा ने। इस गीत को सुनना चाहते थे काशी निवास बंगाली पंजाब महाराष्ट्र के हमारे श्रोता प्रकाश रंभांडे, भारती रंभांडे। नागपुर के श्रोता टोनी बोरकर, ललिता बोरकर की ये फरमाइश थी। रामनगर जिला गुना के हमारे श्रोता ज्योति प्रजापति, नरेश प्रजापति, सार्थक प्रजापति और पालदानाका इंदौर के हमारे श्रोता हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी की फरमाइश हमने आपको सुनवाई। और इसी गीत को सुनना चाहते थे घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मित पंचोलिया।

रूप तेरा मस्ताना फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया, असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहते थे बड़ोड़ा करेली बाग के हमारे श्रोता दिव्य हर्ष, राधे, पारस पूजा रचना और इनके परिवार के सभी सदस्य, कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर, श्रीमती रजनी मलमकर की ये फरमाइश थी। और रेलवे कॉलोनी डी ब्लॉक आनंद विहार के हमारे श्रोता किशन वंजानी, नीलम वंजानी, स्वाति और कीशु वंजानी की ये फरमाइश थी। और ये हमारे श्रोता हैं इंदौर आड़ा बाजार के प्रतिभा पंचारे बबलू, जिया राशि, नेहा मनीष शर्मा और भावना के साथ।

साथ एक और नाम है आशीष जाधव का, और ये हमारे श्रोता हैं आरुष आर कम्मत, इन्होंने कोची केरल से ये फरमाइश भेजी थी।

कैथल हरियाणा के हमारे श्रोता सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा, पूजा वर्मा ने इस गीत को पसंद किया। दत्तारेंगी भाटापारा से हीरामन वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र चिंतामणि और नोखिलाल वर्मा की फरमाइश थी। प्रबोध चंद्र कंडपाल, रेणु कंडपाल, अंजलि कंडपाल की ये फरमाइश आई।

इंदौर से और गजवाटांड धनबाद से हमारे श्रोता हैं शाहिन बानो, समीना बानो, नाजिया और सायका बानो, और इसी गीत को सुनना चाहते थे। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र के हमारे श्रोता सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना गुंडा ने और इनके प्रतिभा पद्माकर गुंडा ने और इनके परिवार के सभी सदस्य पगला कहीं का इस फिल्म का गीत इन्होंने सुनना चाहा था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आपने सुना। नगमा निगार हसरत जयपुरी, मसकार शंकर जयकिशन थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

फिल्म जंगली में आपने सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ें। हसरत जयपुरी के बोल थे, तर्ज थी शंकर जयकिशन की। इस गीत की फरमाइश भेजी ज़िला चंद्रपुर महाराष्ट्र के हमारे श्रोताओं ने, जितेंद्र वाघमारे, प्रतिभा वाघमारे, मितांश वाघमारे और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश थी। ग्राम दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू ने इस गीत को पसंद किया। नूरे मुजस्सम रौमा, दिलावर हुसैन रौमा, अजहरुद्दीन तमामुद्दीन रौमा, इनकी फरमाइश है तहसील मालिया मियाना से। और परवेज़ अहमद, शहजाद अहमद, सरफराज अहमद, ये हमारे श्रोता हैं काशीपुर खालसा के, और इसी गीत को सुनना चाहते थे। जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चौरसिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया की।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में आंखें फिल्म का गीत, साहिल लुधियानवी का लिखा, रवि का संगीत था। अनारकली बाजार जगराओ के हमारे श्रोताओं ने इस गीत को पसंद किया। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुच्चा सिंह पाठक ने इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे। नाचन गांव, जिला वर्धा, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से आरती भगत, विशाली पूर्वी भगत, लता प्रदीप, विशाल भगत ने इस गीत को पसंद किया और इनके साथ ही रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश। अकोले संगम विहार दिल्ली के हमारे श्रोता हैं रणधीर गुप्ता, बबीता सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, राजकुमार भगवती, शकुंतला और ये हमारे श्रोता हैं, इन्होंने रामनगर जबलपुर मध्य प्रदेश से फरमाइश भेजी है। भगवान दास, सियाबाई, राजकुमार और दिनेश कुमार की ये फरमाइश है और ये ही नाम इसमें है। और लेक सिटी उदयपुर के हमारे श्रोता प्रकाश चंद्र, अमिता, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, अरुचि और नेहा अमेटा ने इस गीत को सुनना चाहा था। और यही थी श्रोताओं मन चाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का मन चाहे गीत प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। आप रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग और मन चाहे गीत में अपना साथ बनाए रखिए। भेजते रहिए अपने पत्र। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग, आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं असद जैदी का लिखा नाटक वायलिन वादक। निर्देशक हैं मदन शर्मा।
2: मैं सूत्रधार हूं और इस नाटक में बीच बीच में इसी तरह टपकता रहूंगा।
3: जिंदगी के इस नाटक को समझना आसान नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं अपनी मर्जी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं घटनाओं पर मेरा स्वामित्व हो। मैं चाहता हूं बस मैं यही चाहता हूं कि मैं कुछ चाहता हूं। क्या कुछ पता नहीं।
4: अनाम भैया, वॉलन सुनाओ ना।
3: हाँ, जरूर सुनाऊंगा ऋतु, अभी सुनाता हूँ।

0: एक बात पूछो ना भैया।
1: पूछो।
0: ये वायलिन तुम कहाँ से लाए?
1: ये वायलिन
2: बेटे अनाव, कहाँ जा रहे हो?
1: बाजार माँ।
2: अरे कुछ पहन कर नहीं जाओगे? बाहर बहुत सर्दी है।
1: अरे माँ कुछ नहीं होगा।
2: लो अपना गला अच्छी तरह ढक लो। ये कोट के बटन भी तो बंद कर लो, सर्दी तेज है।
1: अरे माँ।
2: अरे हाँ बेटे, आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या लाऊं तुम्हारे लिए?
1: अरे माँ पैसे कहाँ है तुम्हारे पास?
2: इस महीने की तनख्वाह में से बचा कर रखे थे।
1: तब तो जो मर्जी आए ले आना।
2: मैं तेरे लिए वायलिन लाऊंगी। मैंने आज मिस्टर बत्रा से पूछा था, उन्होंने कहा कि बेटे के लिए वायलिन खरीदो। मैंने उन्हें तुम्हारी रुचियां बताई थी।
1: माँ ये मिस्टर बत्रा कौन है?
2: हमारे स्कूल में नए टीचर आए हैं, हिंदी पढ़ाते हैं और नाटक खेलते हैं।
3: ये थी अनाम की 18वीं सालगिरह। माँ के दिए हुए वायलिन को उसने सीखना शुरू कर दिया। उसे लगा वायलिन के रूप में उसे जिंदगी की नई खुशी मिल गई है। अनाम का कॉलेज सुबह का था और माँ जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो शाम का था। अनाम कॉलेज से घर लौटता, माँ के हाथ से खाना खाता। जब माँ स्कूल चली जाती थी तो अनाम का वक्त काटना मुश्किल हो जाता। वायलिन आने पर उसका वक्त आसानी से गुजरने लगा। एक दिन की घटना है।
2: अनाम बेटे, तुम्हारे कॉलेज के नाटक का क्या हुआ?
1: अच्छा गया माँ।
2: तेरा रोल तो अच्छा रहा ना?
1: बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं स्टेज के पीछे रो दिया था।
2: क्यों?
1: माँ वो मैं श्रवण कुमार बना था। जब राजा दशरथ अंधेरे में पानी भरते हुए श्रवण कुमार को तीर मार देता है तो क्या मेरा रोल खत्म हो गया। मैं रोल खत्म होने पर स्टेज के पीछे खड़ा हो गया, मगर रोल सर से उतरा नहीं था। जैसे ही श्रवण कुमार के माँ बाप ने रोना शुरू किया, मेरे भी आंसू आ गए। सच मुझे तुम याद आ गई माँ।
2: बेटे तुम बहुत भावुक हो, बहुत भावुक।
3: यही था वो अनाम जो जीवन के 18 बसंत गुजार कर भी बच्चा ही बना हुआ था। माँ उसका संसार थी, उसकी सारी चीजें माँ के इर्द गिर्द केंद्रित थीं, क्योंकि जब से उसने होश संभाला तभी से उसके लिए सिर्फ माँ थी। पिता सड़क दुर्घटना में मारे गए थे, इसलिए अनाम की माँ को स्कूल में नौकरी करके वैधव्य के लंबे दिन गुजारने पड़े। एक दिन की बात है।
2: अनाम, अनाम।
1: क्या बात है माँ?
2: अनाम, मिस्टर बत्रा ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हें अपने नाटक में लेना चाहते हैं।
1: लेकिन माँ वो तो मुझे जानते ही नहीं।
2: जानते हैं। मैं तुम्हारे बारे में उनसे बात किया करती हूँ।
1: अब ठीक है माँ, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा।
2: नहीं, अकेले ही जाना।
1: क्यों?
2: मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा।
1: मगर क्यों माँ?
2: वो तुमसे अलग से बात करेंगे, मेरे साथ चलने से क्या होगा? आखिर रोल तो तुम्ही को करना है। आ गए तुम?
1: अच्छा नहीं रहा माँ।
2: क्यों?
1: वो उन्होंने नाटक के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, बस मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते रहे, रुचियों के बारे में पूछा, मेरे दोस्तों साथियों की बात, आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हो, बस ऐसी ही बातें।
2: ठीक तो है, वो तुम्हें समझना चाहते होंगे, तुम्हारे बारे में जानना चाहते होंगे।
1: मुझे तो वो पसंद नहीं आए माँ।
2: क्यों?
1: बस कुछ आदमी पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते।
2: ये बचपना छोड़ो अनाम, इस तरह नहीं कहा करते, मिस्टर पत्रा बहुत अच्छे आदमी हैं।
1: होंगे मगर।
2: अनाम।
1: माँ, इसमें नाराज होने की क्या बात है? ठीक है माँ, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें दुख होगा। तुम चाहोगी तो मैं उनके नाटक में काम करूंगा। आज उन्होंने मुझे कुछ ऐसी नजर से देखा कि मैं बहुत परेशान हो गया, बस इतनी सी बात थी।
2: अनाम, अब तुम जवान और समझदार हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
1: मुझे दुख है माँ।
3: मिस्टर बत्रा के बारे में अनाम की बात सुनते ही माँ कितनी विचलित हो गई। माँ की वो संदेह भरी नजर, चेहरे पर अचानक चौंकने का ये भाव, नाराजगी भरी आंखें, अनाम को पहली बार माँ के साथ ये तजुर्बा हुआ। इस तजुर्बे से अनाम को धक्का लगा। मिस्टर बत्रा से मिलना अनाम को अच्छा नहीं लगा और अनाम सोच भी नहीं पाया कि माँ को इससे दुख होगा। मिस्टर बत्रा के शुरू किए गए नाटक सुंदरता के सभी शिकारी में अनाम ने काम करना शुरू कर दिया। रिहर्सल होने लगी। रिहर्सलों के दौरान माँ मौजूद रहती। वो लगातार मिस्टर बत्रा से पूछती रहती,
2: कहिए बत्रा साहब, अनाम ठीक चल रहा है ना? एक्टिंग तो ठीक करता है। बस बस यही कसर है, मगर सुधार तो लेगा ना? हाँ, मुझे भी डर था, मगर ठीक है। बस बस ज्यादा तारीफ मत करिए। आप उसे खुश तो है ना? बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब, सो काइंड ऑफ यू। प्लीज प्लीज बत्रा साहब, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं।

0: मुझे तुम भी कह सकते हैं। सच तो ये है कि एक औरत के अकेलेपन के दिन कैसे होते हैं मैं ही जानती हूँ। मैं अब खुश रहने की कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी।
1: अब तो आप जान ही गए होंगे प्रिय श्रोतागणों कि नाटक एक नहीं दो चल रहे थे। एक नाटक का नाम सुंदरता के सभी शिकारी और दूसरा नाटक ऐसा था जो जिंदगी के वास्तविक रंगमंच पर खेला जा रहा था, मिस्टर बत्रा और अनाम की मां के बीच, जिसमें अनाम भी था। इस दूसरे मगर अदृश्य नाटक में फंसे अपने तीनों पात्र कुछ अरसे तक अपनी अपनी दिशाओं में चलते रहे और अपने अपने अंतर्द्वंद्वों का शिकार होते रहे। अब यह जानना कतई जरूरी नहीं कि कब क्या कैसे हुआ, मगर एक दिन अनाम ने मां से कह दिया कि आगे से वो रिहर्सलों में ना आए।
2: आखिर क्यों?
3: अच्छा नहीं लगता मां, बत्रा साहब अच्छे डायरेक्टर।
2: अच्छे डायरेक्टर वे चाहे ना हो, वो अच्छे आदमी जरूर है अनाम।
3: नहीं मां, मेरा मतलब उनकी बुराई से नहीं था, मगर तुम रोज रोज रिहर्सल में बैठी रहती हो, ये अच्छा नहीं लगता।
2: देखो अनाम, तुम अपने मन से उल्टी सीधी बातें निकाल कर फेंक दो।
3: बुरा मत मानो मां, मैं तो ना समझ हूं, बच्चा हूं, मगर मां मेरे लिए संसार का अर्थ ही मां है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता मां, तुम्हें खो देने का मतलब होगा संसार को खो देना।
1: और मां अनाम की कल्पनाओं के अंधेरे में हवा के उजले झरोखे सी मां अपनी उलझने लिए मिस्टर बत्रा के पास पहुंची।
0: अनाम ने कभी मुझसे अपने आप को काट कर नहीं देखा, बचपन से ही उसके साथ सिर्फ मैं रही हूँ, मेरे साथ उसके विचार चले हैं। मिस्टर बत्रा, अनाम नादान है, लड़कपन से आगे वो निकल नहीं पाया है। ये पहली बार हुआ है कि उसने मेरी बात की अवहेलना की और मेरे रोकते रोकते आप पर अपनी नापसंदगी की मोहर लगा दी है। कुछ कहिए मिस्टर बत्रा, चुप मत रहिए।
1: क्या कहते श्री बत्रा या कोई और? जिंदगी का अकेलापन कहीं तो 20-20 साल तक आपको नहीं खाता, और जब खाने लगता है तो एक दिन भी उसकी पूरी गिरफ्त में आने के लिए काफी है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए और तसल्ली से बत्रा साहब से बातें कीजिए, जिनकी जिंदगी के 40 बरस कोरे गए, वे अब एहसास की तहरीरें देख रहे हैं। दूर समंदर में उठती किनारे की रोशनियों से जगमगाती लहरों की तरह उनके अंदर विचारों का उठाव है। द्वंद्व में सिर्फ आप ही नहीं हैं।
0: अनाम बच्चा है, वो नहीं समझेगा एक औरत की तकलीफ।
3: न मां कुछ समझेगी न मैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, और अब मैं भी अपनी नाराजगी वापस कैसे लूं?
1: अंतर्द्वंद्व चलता रहा, मां और बत्रा, बत्रा और मां। अनाम ने देखा कि संसार का सारा अर्थ सिमट कर मां के लिए सिर्फ बत्रा रह गया है। वो देखता रहता, रिहर्सल करता रहता, देखता रहता। रात होती घर आता, मां कहती खाना खा, अनाम आता खाना खाता। मां कहती वायलिन न बजा, जा बिस्तर में जा, जाकर सो जा।
4: आ, आ, आ, आ अनाम, खाना खा, चल घर चल, जा बाजा बजा, बाजा बजा, जाकर सो सो जा, चल उठ उठ कर हाथ मुंह धो, हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर, चल नाटक कर, अच्छा कर, चल तू।

0: हंस खुलकर हंस, बाजा बजा वायलिन बजा, बस बंद कर अब बंद कर, चल कहना मान आज्ञा मत डाल, खुश रह आंसू मत से, खुलकर रो खुलकर रो खुलकर रो।
1: इस तरह नहीं गा सकते, मुझे बच्चा बहुत अच्छा आदमी है, मुझे बच्चा बहुत अच्छा आदमी है, मुझे बच्चा बहुत अच्छा आदमी है। नहीं, अकेले ही जाना चाहिए, मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा, मेरे साथ चलने से क्या होगा, मैं तेरे लिए वॉइल नहीं आऊंगा। मैंने आज मिस्टर बच्चा से पूछा था, उन्होंने कहा
2: अनाम
1: के लिए वॉइल नहीं
2: खरीदा। अनाम, अनाम, क्या हुआ बेटे, क्या तुम डर गए थे? सपनों डरो मत बेटा, डरो मत।
3: हाँ माँ, सपना था, सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना।

0: बस रितु,
1: और बजाओ ना नाम भैया।
0: बस रितु, अब कल।
1: अच्छा अनाम भैया, आपकी मम्मी कहाँ गई?
0: मेरी मम्मी? पता नहीं रितु, मेरी मम्मी कहाँ गई? तुम्हारी मम्मी तो है ना?
1: मेरी मम्मी घर पर है, आपको मेरी मम्मी के पास ले चलूं?
0: नहीं रितु,
1: क्यों?
0: वो मुझे मेरी मम्मी याद आ जाएंगी।
1: अच्छा नाम भैया, मैं चलती हूँ।
2: अनाम, ये वायलिन बंद करो और पहले मेरी बात सुनो।
0: सुन रहा हूं।
2: मेरी बात टालोगे तो नहीं?
0: क्या बात?
2: इतने ठंडे सुर में क्यों बोलने लगे हो तुम अनाम? बेटे, मैं मिस्टर बत्रा से शादी कर रही हूं। तुम्हारी क्या राय है?
0: मेरी राय कैसी?
2: तुम्हें दुख है?
0: कोई दुख नहीं, अच्छी बात है।
2: मेरी मर्जी पर चलोगे नहीं?
0: किसने कहा?
3: अनाम की मां अब मिसेज बत्रा हो जाती हैं। अब सिचुएशन यह है कि अनाम महोदय बेचैन हैं। घर पर ताला लगाकर वे अपनी मां के साथ अपने नए पिता के घर आ गए हैं। उनका मन बैरागी हो गया है।
2: अनाम, दिन भर से कहां गायब थे?
0: बाहर था।
2: बाहर से मतलब? मैं पूछ रही हूं कहां गायब थे।
0: शहर में घूम रहा था।
2: देखो अनाम, ये वायलिन उठाकर दिन दिन भर आवारागर्दी करना, किसी से बोलना ना चालना, पढ़ाई में मन ना लगाना।
0: बस करो माँ।
2: तुम्हारे पिता कह रहे थे तुम आज रिहर्सल में भी नहीं आए, ये सब कब तक चलेगा आखिर?
0: ठीक है।
2: क्या ठीक है?
0: आगे से ख्याल रखूंगा।
2: कहाँ जा रहे हो?
0: सोने के लिए।
2: खाना तो खा लो।
0: भूख नहीं है।
2: ठीक है, जाओ।
0: ये चिड़चिड़ापन तुम में क्यों माँ? ये असहिष्णुता मुझ में क्यों? मैं घटनाओं से समझौता नहीं कर पा रहा हूं। आखिर क्यों ये सूनापन क्यों घिराया है? अपनी मां को खोकर मुझे ऐसा क्यों लगने लगा जैसे मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह गया है? मैं इतना पराश्रय क्यों हूं? मैं तुमसे अपने आप को अलग क्यों नहीं कर पाता माँ?

0: मां को मां कहना अनाम ने बंद कर दिया है। वो उसे मिसेज बत्रा कहकर पुकारता है, अगर जरूरत होती है तो। एक अनजान बच्ची को वो वायलिन सुनाता रहता है। और एक संसार था मां का।
1: अनाम खोया खोया रहता है, उदास और बोझिल। वो इस घर में नहीं रहना चाहता, उसे पुराने घर की स्मृतियां सताती हैं। वो वहीं लौट जाना चाहता है। दिन दिन भर आवारा करती वायलिन और पड़ोस की बच्ची रितु। आप ही बताइए मैं क्या करूं, कैसे संभालूं इसे।
0: मिस्टर बत्रा, चुप क्यों हैं? कुछ कहिए ना, हमारे श्रोता आपकी वाणी सुनने को तरस रहे हैं।
1: अब मैं और नहीं सह सकती। कब तक यह निश्चय, आखिर कब तक? मैं किसी की जंजीर से नहीं बंधी हूं, चाहे बेटा हो। उसकी भावुकता और बचकानेपन पर अपनी बलि मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी।
0: जी हाँ, बलि ना होने दें। ये फैसला आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद।
1: आपको पता है अनाम घर छोड़ के चला गया, कल रात को यहाँ नहीं आया। स्कूल का एक लड़का बता रहा था कि पुराने घर में अकेला बैठा वायलिन बजाता रहता है। बहुत दिन हो गए नाम को यहाँ से गए हुए। एक बार का ऐसा गया कि फिर इस ओर झांक कर भी नहीं देखा। उसकी खबर मिलती रहती है, मैं बेचैन हूँ। पता चला है अनाम ने नौकरी कर ली है, पास हो गया है।
0: कितने आश्चर्य की बात है कि मिनट, घंटे, पहर और दिन गुजारना मुश्किल लगता है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन ऊब, उकताहट और बोरियत हमें खाए लेती है। अनाम को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो 20 बरस का हो गया है। मां से जुदाई के 2 वर्ष पल पल सदियों की तरह कटा, मगर ये सदियां कब मिलकर 2 साल बन गई पता ही ना चला। है ना आश्चर्य की बात?
2: वायलिन के साथ गुजारे गए 2 साल, बचपन के सुनहरे दिन, कैशोर्य के बदलाव के रंग से दिन।
0: मिस्टर अनाम,
2: पता नहीं कौन मेरे अंदर मुझे आवाज देता है।
0: मिस्टर अनाम,
2: बार बार खटखटाहट होती है, बार बार मैं जागता हूं, बार बार फिर खटखटाहट होती है। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। महीनों हो गए, मां की कोई याद नहीं। दो एक बार मिलने भी आई, मैंने मिलने से इनकार कर दिया। पता नहीं अच्छा किया या बुरा। घटनाएं अब सिर्फ एक धुंधली सी स्मृति बनकर रह गई हैं। न किसी के प्रति प्रेम उमड़ता, नफरत। ये मुझे क्या हो रहा है धीरे धीरे?
1: अनाम एक दिन मेरा अपमान करेगा, मैं उससे मिलने जाऊंगी और वो मुझसे मिलने से इनकार कर देगा। ओह, ये कभी सोचा तक न था। मगर क्या करूं, उसको अपने से हटा नहीं सकती। मैं उतनी क्रूर और कठोर नहीं बन सकती, नहीं बन सकती।
0: अनाम ने मातृत्व ढूंढा था, वो मां के दूसरे किसी पक्ष की कल्पना भी नहीं कर पाया था।
1: मातृत्व वैधव्य के लंबे दिन गुजारने से ही सार्थक नहीं होता नाम।
2: ये तुम्हारी भूल है माँ।

0: तुम मुझे समझ नहीं सकी।
1: कैसी भूल और किसकी भूल? जीवन के इन पेचीदा प्रश्नों का उत्तर किसके पास है?
2: कहाँ है उत्तर?
1: कहाँ है उत्तर?
0: कहाँ है उत्तर?
2: कहाँ है उत्तर?
1: कहाँ है उत्तर?
3: अनाम भैया।
0: हाँ रितु।
3: वायलिन सुनाओ ना।
0: रितु आज समुद्र के किनारे चलते हैं, वहां जाकर खूब वायलिन बजाएंगी, है ना?
3: हाँ हाँ चलो।

सारे शहर में खबर फैल गई कि समंदर के किनारे चट्टान पर बैठकर एक लड़का पिछले 12 घंटों से वायलिन बजा रहा है। बहुत सारे लोग उसे देखने जा रहे हैं, बहुत भीड़ है। यह भी सुना गया है कि एक 10 वर्षीय बच्ची निरंतर 12 घंटों से वायलिन वादक के साथ बैठी वायलिन सुन रही है।

0: सुनते हैं, अनाम समुद्र के किनारे वायलिन बजा रहा है। रितु के मामा भी परेशान हैं, वो भी इसी के साथ हैं।
1: विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि युवा वायलिन वादक जो पिछले 20 घंटों से लगातार वायलिन बजा रहा है, उसका नाम अनाम पाठक है। कुछ लोगों का अनुमान है कि संभवतः वो लगातार वायलिन बजाने में विश्व रिकॉर्ड कायम करना चाहता है। एक अन्य सूचना के अनुसार पुलिस थाने में एक बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बच्ची के माँ बाप ने किसी अनाम पाठक के प्रति संदेह व्यक्त किया है। विश्वास किया जाता है कि ये युवक संभवतः वही युवा वायलिन वादक है, और ऋतु नामक जिस बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, ये वही बच्ची है जो उक्त वायलिन वादक को पिछले 21 घंटों सुन रही है।
2: अनाम भैया को वायलिन बजाते बजाते रात हो गई।

प्राप्त समाचारों के अनुसार एक युवा वायलिन वादक जिसका नाम अनाम पाठक बताया जाता है आज समुद्र के किनारे मृत पाया गया। संभवतः उसने आत्महत्या की है। इस आत्महत्या के पीछे 2 दिन पूर्व की उस घटना का हाथ बताया जाता है जब उस युवक ने लगातार 25 घंटे तक बिना रुके वायलिन बजाकर पूरे शहर को चकित कर दिया था। बाद में युवक की मां ने उसके हाथ से वायलिन छीनकर तोड़ दिया था। मृत युवक अत्यधिक संवेदनशील और प्रतिभाशाली था, मगर एक चिकित्सक के अनुसार कुछ मानसिक व्याधियों से ग्रस्त था वो वायलिन वादक।

वायलिन वादक। नाट्य तरंग में अभी आप असद जैदी का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया मदन शर्मा ने। यह रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के जयपुर केंद्र के सौजन्य से।

प्यार की चुवन अपने पन का गांव छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती,
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान, बेमिसाल संगीत की
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग। उत्तम जी नमस्कार, एक बार फिर से विविध भारती की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद जी, नमस्कार जी, आप सब सुनने वालों को मेरा प्रणाम।
0: उत्तम जी, एक बहुत लंबा प्रोग्रेशन आपका रहा है। आपने 13 साल की उम्र में बतौर वायलिनिस्ट अपना सफर शुरू किया था
5: जी,
0: और उसके बाद म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, ये एक पूरी यात्रा है। और म्यूजिक डायरेक्टर में भी एक पहले उत्तम जगदीश की जोड़ी बनती है, फिर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। हमारे बहुत सारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि एक म्यूजिशियन का क्या काम होता है, म्यूजिक डायरेक्टर का क्या काम होता है, और अरेंजर असल में क्या करता रहा है।
5: जी, वैसे तो म्यूजिशियन बनना इटसेल्फ इज ए बहुत बड़ी बात है
0: जी।
5: एक बहुत विख्यात संगीतकार है जिनका नाम है इलैयाराजा साहब
0: जी,
5: दुनिया जानती है उनको। उन्होंने एक स्टेज पे या पता नहीं कहाँ कहा था, उन्होंने वो बात उनकी मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा था कि जी म्यूजिशियंस आर बॉर्न नेवर मेड।
0: वाह,
5: तो म्यूजिशियन बनना जो है ये एक कुदरत की देन है। कुदरत की देन को हासिल करना, कुदरत की देन को पॉलिश करना, कुदरत की देन को आगे बढ़ाना, ये इंसान के हाथ में है। क्योंकि म्यूजिक तो आपको मिल गया, ऊपर वाले ने दे दिया, लेकिन सुर की साधना, संगीत की साधना, इसके लिए जो पुराने लोग थे 20-20 साल रियाज करते थे। तो जब मेरी लाइफ शुरू हुई एज ए संगीतकार, तो 4.5 साल की उम्र में पिताजी ने मटका सिखाया
0: जी,
5: फिर तबला सिखाया, सितार सिखाई, वोकल सिखाया, डांस सिखाया। बॉम्बे में आके वेस्टर्न क्लासिकल वायलिन शुरू किया
0: जी।
5: तो मुझे आज भी याद है 60 की एज में जब उन्होंने शुरू करवाया मुझे, तो उन्होंने टाइम टेबल बनाया था। यूनुस जी, ये आज बड़ी अनहोनी सी बात लगती है, उन्होंने मेरा टाइम टेबल बनाया था 13.5 घंटे का।
0: बाप रे बाप,
5: 13.5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे और 1.5 घंटा,
0: और उसमें खेलना और
5: कुछ नहीं,
0: कुछ भी नहीं,
5: कुछ नहीं। 3 घंटे के रियाज, उसके बाद 0.5 घंटा ब्रेक, खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ, फिर खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ। तो 13.5 घंटे मैं खड़े होकर प्रैक्टिस करता था।
0: ओहो,
5: बैठना भी नहीं, खड़े होके। वायलिन की एक पोजीशन होती है खड़े होने की, बस उससे हिलना नहीं, अगर पांव थोड़ा सा हिल गया तो शाम

0: को माँ कंप्लेंट करती थी कि आज इसका पाँव हिल गया।
1: ओहो,
0: तो ये तपस्या होती है
1: जी
0: जो आज के युग में खत्म हो गई है। लेकिन संगीत की साधना जो है ना, वो आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ या चर्च जाओ, उससे कहीं ऊपर है। आज हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, अगर आपने साधना कर ली संगीत की तो आप समझिए कि आपने चारों धाम घूम ली।
1: बिल्कुल,
0: आप मक्का पहुंच गए, आप मंदिर पहुंच गए, आप अमृतसर पहुंच गए, क्योंकि आपने संगीत की साधना की। संगीत की साधना जो है वो भगवान की साधना है।
1: क्या बात है,
0: और उसकी साधना है जिसको कोई देख नहीं सका आज तक।
1: वाह,
0: उसकी साधना है।
1: बिल्कुल, शैलेंद्र जी ने लिखा भी है ना, स्वर की साधना परमेश्वर की।
0: परमेश्वर। तो यहाँ से संगीत की लाइफ शुरू हुई एज ए म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन में भगवान की कृपा रही कि 1962 में पहली रिकॉर्डिंग बजाई और 1964 में पहला सोलो बजाया मौसा साहब के लिए।
1: जी जी,
0: मुझे फिल्म याद नहीं
1: जी,
0: लेकिन सोलो बजाया। सोलो म्यूजिशियन बनना एक बहुत
1: बड़ी बात होती है,
0: बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में 1965 में एज अरेंजर बनने की शुरुआत थी, भगवान ने शुरुआत करवाई और वो शुरुआत दी मुझे शंकर शंभू कव्वाल जो थे उन्होंने दी
1: जी।
0: और वहाँ से शुरू हुआ सिलसिला। तो मैं चलता रहा एज ए अरेंजर, काफ़ी काम करता रहा। यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है कि अगर हिंदुस्तान में किसी एक कॉर्नर में एक फिल्म बनी है तो उसमें उत्तम सिंह ने अरेंज किया है।
1: वाह वाह वाह, मतलब तमाम भाषाओं में,
0: तमाम
1: प्रदेशों में,
0: कोई भी भाषा हो अगर फिल्म बनी है
1: जी
0: तो मैंने उसमें अरेंजमेंट जरूर किया है। मतलब वहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर जो है उनको उत्तम सिंह चाहिए, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो अपना हरियाणा हो या बंगाल हो या कहीं भी हो,
1: साउथ हो,
0: कहीं भी हो, कुछ भी हो, पंजाब हो, कुछ भी हो, तो मैंने अरेंजमेंट किया। तो मुझे लगता है अगर मैंने सब अकाउंट रखा तो 15-20 हज़ार गाने तो मामूली बात है।
1: बाप रे बाप रे बाप, एक जीवन काल में इतना काम,
0: इतना काम।
1: जब काम एकदम से चारों तरफ बढ़ने लगा, पिताजी माँ कितने खुश थे?
0: बहुत खुश थे जी। और 60 में आए हम लोग और 66 में पहला घर ले लिया था।
1: वाह वाह,
0: और वो 17,000 रुपए का घर था।
1: क्या बात है।
0: तो पहला घर अपना
1: किस इलाके में था?
0: खार में।
1: जी जी,
0: खार 10th रोड में था, आज भी है वो बिल्डिंग
1: जी।
0: तो वो पहला घर था 17,000 रुपए का। 17,000 रुपए में शायद मुझे लगता है 7 या 8 हज़ार रुपए कर्जा था।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: आधा कर्जा था।
0: आधा कर्जा था, लेकिन वो कर्जा खत्म हो गया क्योंकि
1: काम तो कर ही रहे थे।
0: तो मुझे बड़ी एक चैन भरी जिंदगी होती है ना, उसमें बहुत बड़ा चैन शांति मिलना होता है जब आपके मन की बातें पूरी हो जाए
1: जी।
0: तो मुझे शांति इस बात की है कि मेरे माता पिता को जो चाहिए था वो उनका पूरा हो रहा था।
1: जी जी जी,
0: वो लड़के को म्यूजिशियन बनाया जाता है, लड़का भगवान की कृपा से सोलो वायलिस्ट बन गया
1: जी।
0: फिर वो चाहते थे कि लड़का तरक्की करे तो लड़का अरेंजर बन गया
1: जी।
0: अरेंजमेंट में भी भगवान की कृपा से बहुत नाम हो गया, बहुत काम किया। फिर वो चाहते थे कि लड़का और तरक्की करे तो और तरक्की, तो लास्ट स्टेज तो म्यूजिक डायरेक्टरी है।
1: बिल्कुल,
0: म्यूजिशियन की जो लास्ट स्टेज है वो
1: म्यूजिक डायरेक्टरी,
0: इस इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर है। खैर वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि हमारे माता पिता की जो एक जर्नी है
1: जी
0: वो कैसे कैसे आगे बढ़ती गई, लेकिन माता पिता बहुत खुश थे
1: जी। ये जो सर म्यूजिक अरेंजमेंट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता रहा है। आज के जमाने में चीजें हालांकि बदल गई हैं, लेकिन उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि हम ये चीज संजो लें कि म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक अरेंजर के काम में क्या फर्क है और म्यूजिक अरेंजर कितना महत्वपूर्ण काम रहा है भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास का, जिसकी वजह से कई गाने चमक गए और हमेशा के लिए अमर हो गए।
0: अमर हो गए जी, बिल्कुल, ये बात आपने अच्छी कही। देखिए जी, पुराने जो संगीतकार जिनमें मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, श्री रामचंद्र, खयाम साहब, जो भी पुराने संगीत, जंगर जयकिशन, इनके पास हमेशा एक अरेंजर रहा है
1: जी।
0: मैंने नौशाद साहब के साथ 35 साल एज ए अरेंजर, एज ए असिस्टेंट काम किया। ऐसे ही बहुत सारे लोग और बहुत बड़े बड़े अरेंजर जैसे सेबेस्टियन साहब, फ्रेंकी साहब, मास्टर जी, उसके बाद में श्याम राव जी, पार्टे

0: जी, ये बहुत बड़े बड़े लोग अरेंजमेंट थे, तो इन्होंने बहुत काम किया। बासु मुरारी, आर डी बर्मन के यहाँ, एस डी बर्मन साहब के यहाँ,
1: जी
0: बहुत सारे उस टाइम के जो म्यूजिक एक्टर थे ना, लिखना नहीं जानते थे, म्यूजिक लिखना नहीं जानते थे,
1: नोटेशंस.
0: नोटेशन लिखना। टू यूज ए बिग ऑर्केस्ट्रा यू हैड टू हैव समबडी जो ये सब लिखे और पूरा उसमें कॉर्ड डाले, हारमोनी डाले, तो ये सब अरेंजर किया करते थे।
1: यानी अरेंजर हर एक इंस्ट्रूमेंट पर क्या बज रहा है उसके नोटेशंस.
0: नोटेशन और उसकी नॉलेज होना
1: जी,
0: वो बहुत जरूरी
1: और
0: है।
1: वही तय करता था कि इस गाने में वायलिन बजेगा इंट्रो
0: जी
1: में,
0: जी
1: M1 में क्या बजेगा, M2 में क्या
0: जी
1: बजेगा.
0: मोस्ट प्रॉब्ली 99% यही
1: जी
0: करते थे। फिर म्यूजिक डायरेक्टर की अपनी कंसेंट होती है,
1: जी
0: जैसे मदन साहब है, चलो हम मदन साहब की बात करते हैं। मदन साहब ने गाना बनाया, मास्टर जी ने अरेंजमेंट किया, मदन जी आपको पूरा भरोसा है कि मास्टर जी जो बनाएंगे वो अच्छा ही बनेगा। फिर मास्टर जी ने म्यूजिशियंस बोले कि भाई मुझे आज 24 वायलिन चाहिए, व्योला चाहिए, चलो चाहिए, चलो। उसमें मदन जी को कुछ पता नहीं है कि मैंने क्या क्या म्यूजिक है, पर मदन जी अपना म्यूजिक सुन रहे हैं, यस साउंडिंग गुड, ओके,
1: वो बदल भी सकते हैं चाहे तो.
0: वो चाहे बदल भी सकते हैं, क्योंकि ही इज दी सुप्रीम पावर। लेकिन कराने वाले कौन? मास्टर
1: अरेंजर है.
0: मास्टर जी अरेंजमेंट, और लिखने वाला उनके साथ, क्योंकि मास्टर जी तो ब्लाइंड थे लिखने वाले। मदन साहब के यहाँ बहुत से अरेंजर आए, मैंने जब शुरू किया तब मास्टर जी थे वहां पे,
1: मास्टर जी, यानी हम अपने सुनने वालों को बता दें कि सोनिक जी,
0: सोनिक जी,
1: सोनिक ओमी की
0: सोनिक
1: जोड़ी
0: ओमी,
1: थी.
0: हाँ सोनिक ओमी का जो जोड़ी थी उसमें सोनिक साहब। और सोनिक साहब के बारे में एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, वो
1: जी
0: ब्लाइंड थे
1: जी
0: और निहायत ही डेडिकेटेड म्यूजिशियन।
1: वाह वाह.
0: एक बार हम उनकी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे, मैं लिख रहा था, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक हमने मदन साहब के म्यूजिक रूम में ये कंपोज किया था,
1: जी
0: क्योंकि मदन साहब के पास पियानो था,
1: हाँ
0: तो मास्टर जी वांटेड ए पियानो टू कंपोज, तो मैं उनके साथ लिख रहा था, वहां बैठ के हमने कंपोज किया। मदन साहब नहीं थे, मास्टर जी ने मदन साहब को कहा मुझे आपका रूम चाहिए, बोले हाँ ले लो। तो एक सीन ऐसा आया कि जिसमें जो हमारे साथ दूसरा आदमी था राज करके, जो लिखता था कि इस सीन के बाद क्या क्या होगा, तो वो सीन लिख के आया, तो हम लोग घर में बैठ के बना रहे थे। तो राज को पूछा, राज क्या था? तो बोले जी इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था। उन्होंने बताया पूरा सीन, 1.5 मिनट का पीस था, मुझे आज भी याद है। बोले नहीं राज, तुम कहीं मिस कर रहे हो,
1: गजब.
0: एक जगह ऐसी थी जहां पे वो हीरो चला था और टक्कर के पाँव की आवाज थी, वो तुमने
1: वाह.
0: शायद मिस किया है, तो तुम जाओ बाकी करके आओ। वो वापस गया मोबिला पे, फिर उन्होंने वापस देखा तो वाकई मिस था,
1: ये मेमोरी
0: ये
1: सोनिक जी की
0: मेमोरी, क्योंकि
1: कसम.
0: ब्लाइंड थे तो ध्यान सारा पूरा। तो मुझे आज भी याद है उनका, मास्टर जी का। तो मास्टर जी वैसे फैंटेस्टिक अरेंजर, फैंटेस्टिक कंपोजर, उनके अपने पाने के भी कितने हिट हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल. हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में गाना सुनते हैं.

0: मदन जी के कुछ कुछ गजलें तो ऐसी हैं, उनको निकाल दो, अपना मास्टर जी का म्यूजिक निकाल दो तो ऐसा लगेगा कि ये गजल है, लेकिन मास्टर जी के म्यूजिक ने उस गजलों को रूप रंग ही चेंज कर दिया। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वॉज टोटली कम्पोज बाई मास्टर जी। हाँ, मदन साहब थे वहाँ पे, हमने बजाया बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक। सोनिक कौन सा पीस ले रहे हो अभी? जी फलाना पीस ले रहा हूँ, सुनवाओ एक दफा। सुना, ये कहाँ कहाँ पे आ रहा है जी? यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, देन मदन साहब यूज टू इमेज के म्यूजिक कैसा लगेगा वहाँ पे, ओके टेक करो।
1: क्या बात है।
0: तो म्यूजिक एंड अरेंजर की जो कम्बिनेशन है, नाम हम डेफिनेटली एक कंपोजर का सुनते हैं
1: जी
0: कि भाई ये कंपोज किसने किया है, नौशाद साहब ने, ये मैं किया मदन साहब ने, ये शंकर जयकिशन, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं।
1: जी जी जी
0: म्यूजिशियंस हो गए, अरेंजर हो गया, आपके सिंगर्स हो गए, सिंगर्स का तो नाम आता है पर म्यूजिशियंस का तो नाम नहीं आता, अरेंजर का भी नाम नहीं आता। हाँ, स्क्रीन पर अगर नाम दे दिया हो कि भाई असिस्टेंट म्यूजिक एक्टर सो, वो अलग बात है। अच्छा, मैंने जब अरेंजमेंट शुरू किया तो मेरा अरेंजमेंट करने का ये होता था कि आपने गाना बनाया,
1: जी
0: आपने गाना बनाया और मैंने गाना लिख लिया। मैं जब तक गाना नहीं लिखता, गाना मेरा नहीं होता।
1: मतलब आप अपने हाथ से लिखते हैं
0: मैं
1: खुद।
0: अपने हाथ से जब नोटेशन लिख लूंगा उस गाने का,
1: जी
0: तो फिर वो गाना आपका है ही नहीं, वो गाना मेरा हो गया।
1: अच्छा
0: फिर मैं उसके बाद उसका म्यूजिक बनाता हूँ,
1: ओके
0: फिर मैं उसका पूरा म्यूजिक बनाया, मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या हो गया, यहाँ फ्लूट, यहाँ सरोद, यहाँ जो भी है, जो भी है।
1: और ये कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ फ्लूट का।
0: ये मेरी डिसाइड है,
1: जी
0: ये मेरी चॉइस है, मेरी लाइकिंग है, मेरा म्यूजिक है। और उसके बाद मैं फिर रिकॉर्डिंग तक, फाइनल तक मैं वहाँ पे हूँ, जब तक वो गाना पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा। अभी जैसे मैंने प्यार किया, वो उसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक था,
1: जी
0: लेकिन एवरीथिंग वॉज डन बाई मी, म्यूजिक अरेंजमेंट से लेकर म्यूजिक बजवाना, म्यूजिक रिकॉर्ड करना, लता जी आती थी, लता जी को गवाना, दीदी को क्या चाहिए, क्या होता है, उसके बाद फाइनल मिक्सिंग तक आई एम देयर।
1: यानी इंट्रोडक्शन म्यूजिक में मान लीजिए कि गिटार के स्ट्रिंग्स हैं, जैसे किसी गाने में आते हैं आजा
0: जी
1: शाम होने आई में
0: जी जी
1: हॉर्न की आवाज आती
0: जी
1: है,

0: क्योंकि आपको एक स्केलेटन मिलता है
1: जी,
0: आज की जो जबान है वो ये है कि आपको एक स्केलेटन मिल गया, अभी फैशन डिजाइनर उसके ऊपर डिजाइन करेगा।
1: करेक्ट,
0: तो
1: ये काम है।
0: हाँ, ये कौन है, इसकी ड्रेस किसने बनाई है, सो एंड सो ने। इसकी ड्रेस, अरे यार इसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, किसने बनाई, सो एंड सो ने। तो फीमेल तो वही है, बट ड्रेसेस जो है वो फैशन डिजाइनर है। तो ये गाना है, अब गाने को कैसे सजाना है और उसकी रूह कैसे कायम रहे और अपनी रूह जो है वो उसको लेके चले साथ में।
1: जी जी
0: तो ये दो रूहों का मिलन है, एक संगीतकार और एक अरेंजर।
1: वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात कही।

0: दो रूहों का मिलन है।
1: वाह।
0: लेकिन वो एक बन के आपके पास आता है
1: जी,
0: आपको ये पता नहीं कि दूसरी रूह कब इसके अंदर ज्वाइन हो गई
1: और कहाँ कहाँ है,
0: कहाँ कहाँ आई
1: जी।
0: लेकिन वो आपको जो सुनाई दे रहा है वो स्वयं सुन।
1: एक लंबी यात्रा बतौर म्यूजिक अरेंजर आपकी रही है, लेकिन तमाम म्यूजिक अरेंजर्स का काम आपने देखा है, तो ऐसे कौन से म्यूजिक अरेंजर्स हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा स्नेह और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, एक आइडियल की तरह देखते हैं?
0: देखिए जी, वैसे तो सारे ही अरेंजर बहुत कमाल थे
1: जी।
0: सेबेस्टियन साहब तो बहुत ही कमाल थे,
1: शंकर जयकिशन के
0: नए सबके साथ और सबके साथ बसंत देसाई साहब के साथ,
1: जी।
0: फिर पाटे जी थे जिन्होंने काम किया कल्याणजनन जी के साथ, वासु मुरारी आर डी बर्मन के साथ काम किया, एच डी बर्मन के साथ किया, फिर मास्टर जी ने मदन साहब के साथ काम किया, उषा खन्ना के साथ काम किया। मेरी पसंद हमेशा मास्टर जी रहे,
1: सोनिक जी,
0: सोनिक साहब रहे।
1: क्या बात है।
0: और मैंने कई बार अपने अरेंजमेंट में उनको फॉलो भी किया,
1: किस तरह से?
0: उनके स्टाइल को।
1: अच्छा, उनकी स्टाइल को।
0: उनके स्टाइल को फॉलो किया
1: जी जी
0: मैंने, लाइक किया उनके स्टाइल को। उनके स्टाइल को वो वायलेंस कैसे बजते थे, वो वायलेंस मैंने अपने अरेंजमेंट में भजवाए,
1: वाह।
0: तो वो एक फील जो है वो अलग है। तो उसमें मैंने हमेशा मास्टर जी को प्रेफर किया। बहुत बड़े अरेंजर थे हमारे प्यारेलाल जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उन्होंने जो अपने साथ काम किया वो तो अलग, लक्ष्मी गाय प्यारेलाल तो अलग बात है,
1: लेकिन तमाम
0: वैसे भी
1: लोगों
0: उन्होंने
1: के साथ।
0: काम किया, क्या काम किया उन्होंने एज ए अरेंजर। उनसे बड़ा अरेंजर कोई था ही नहीं उस टाइम पर, उनका नाम बहुत बड़े अरेंजरों में आता था। लेकिन सब घूम घाम के आया तो मुझे सोनिक साहब बहुत पसंद आया, क्योंकि वैसे उनका मैंने काम भी किया, तो मेरा अपना एक स्टाइल था, लेकिन मैंने उनके स्टाइल को अपने साथ रखा हमेशा।
1: क्या बात है
0: जी।
1: सोनिक जी के साथ कोई याद, कोई दिलचस्प याद, क्योंकि आपने उनके साथ बजाया बहुत है।
0: मैंने बजाया भी है, उनके साथ लिखा भी है, उनके साथ कंडक्टिंग भी किया है, सब किया उनके साथ, बहुत सारे
1: लंबा
0: काम
1: साथ
0: किए।
1: है।
0: और लास्ट का उनका जो पीरियड था वो सारा मेरे साथ गुजरा।
1: अच्छा
0: जी, वो हालात किसी के कभी एक जैसे नहीं होते,
1: जी जी
0: तो लास्ट में उन्होंने मेरे साथ कई बार रिकॉर्डिंग में बाजा बजाया,
1: अरे
0: क्योंकि हारमोनियम उनसे अच्छा कोई बजाता नहीं था,
1: जी जी
0: इतने बड़े हारमोनियम प्लेयर थे वो।
1: अच्छा,
0: तो उन्होंने बहुत मेरे साथ, क्योंकि मैं एज ए अरेंजर मेरे पास बहुत काम था,
1: जी
0: तो हालात कुछ ऐसे थे, फिर वो मेरे साथ उन्होंने बजाया।
1: एक समय ऐसा आया जब उन्होंने मदन जी का साथ छोड़ दिया था।
0: हाँ, वो उनको अपनी फिल्में बहुत मिल गई थी ना उस टाइम पर,
1: सोनी गोमी की जोड़ी।
0: हाँ, सावन भादों के बाद उनके पास काफी काम आ गया था।
1: हाँ।
0: मुझे आज भी याद है, एक महीना उनका ऐसा था, 28 दिन रिकॉर्डिंग थी उनकी।
1: अरे बाप रे, यानी हर एक दिन
0: एवरीडे गाना था उनका।
1: गजब गजब गजब।
0: मैं उस टाइम के साथ बजाता था एवरीडे सॉन्ग, इतना काम था उनके पास। फिर उनका काम कम होता चले गया, जो भी है। तो अरेंजमेंट की पोस्ट बहुत बड़ी है जी। मैंने तो अरेंजमेंट की पोस्ट ऐसे संभाली है कि भाई गाड़ी को बनाना भी है
1: जी,
0: और गाड़ी को शिमला लेके भी जाना है बम्बई से,
1: वाह वाह,
0: और शिमला जाके छोड़ के भी आना है।
1: क्या बात है।
0: तो ये एक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने गाने को समझिए मुंबई में ले लिया, उसको पूरा बनाया, उसकी पूरी

0: पॉलिशिंग की, उसका इंजन सब ठीक किया, सब कर रहे। जब अच्छा लगा कि हाँ अच्छा लगा, तो इसका बाकी इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिलेंगे, वो रास्ते में मिलेंगे। तो पूरा करते करते करते करते करते ये छोड़ गया।
1: वाह वाह वाह,
0: तो इस तरीके से मैंने काम किया हमेशा।
1: अच्छी मिसाल दी आपने। हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में दिल ने फिर याद किया, फिल्म का गाना सुनते हैं
0: जरूर सुनिए, बहुत कमाल के गाने थे वो।
1: जी।

0: एक बात मास्टर जी की मैं सुनाना चाह रहा था लेकिन बातों में व्यस्त कर गया। देखिए, मैं रात को सिटिंग करके घर आ गया।
1: जी
0: वो समझिए मेरे से 500 मीटर दूर रहते थे
1: अच्छा
0: कार में। हाँ, वो
1: जी
0: 500 मीटर दूर थे, मैं यहाँ, मैं भी कार में था। तो मैं पूरा गाना लिख के घर में आ गया और रिकॉर्डिंग थी परसों, कल का दिन गैप था। तो सुबह सुबह उनका आदमी मेरे पास आया, सुबह 6 बजे। बोले, मास्टर जी ने कहा है कि आधे घंटे के लिए आके जाओ। क्या, मैं तो रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, आके जाइए आप प्लीज, बहुत ज़रूरी है। तो मैं सुबह 7:30 बजे उनके पास पहुँचा। मैं कहा, मास्टर जी क्या हुआ? बोलते, यार उत्तम बैठ यार, मैं सारी रात सोया नहीं।
1: अरे
0: मैं कहा, क्या हुआ? कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ मैंने गलती की है। तो एक बार एक काम कर प्लीज़, वो इंट्रोडक्शन सुनाओ।
1: ये कौन सा गाना था?
0: ये मुझे याद नहीं,
1: अरे
0: लेकिन लेकिन इंट्रोडक्शन सुनाओ। तो मैंने इंट्रोडक्शन उनको सुनाया।
1: जी जी
0: तो बोलते, ये तो ठीक है। तो पहला म्यूजिक सुनाओ, फर्स्ट म्यूजिक सुनाया। बोलते, ये भी ठीक है, अपने आप ही बोल रहे हैं, ये भी ठीक
1: हाँ
0: है। फिर दूसरा म्यूजिक सुनाओ, दूसरा म्यूजिक सुनाया। हाँ उत्तम, यही गड़बड़ है।
1: अरे
0: मैं,
1: बाप
0: क्या
1: रे,
0: हुआ मास्टर जी? बोले, ये जो तुम 4 बार गा रहे हो ना, ये मेरे नहीं है, ये धनी राम जी के हैं।
1: अरे बाप रे बाप,
0: मैंने कहा, मास्टर जी मैंने तो कहीं नहीं सुना। बोले, तुमने नहीं सुना, लेकिन ये धनी राम जी के 4 नोट हैं इस गाने के। उन्होंने वो गाना गा के सुनाया कि इस गाने के ये 4 नोट हैं। मैं ऐसा हैरान हो गया। मैं कह, ये, और उन्होंने वो चेंज किया।
1: गजब। और इसके लिए वो सारी रात परेशान भी
0: देखिए,
1: रहे।
0: आप एक आज का टाइम देखिए, आज जो कॉपी मास्टर है वो सबसे बड़ा म्यूजिक्टर है,
1: जी
0: सबसे
1: जी
0: बड़ा राइटर है, सबसे बड़ा वो है, क्योंकि वो कॉपी कर रहा है।
1: और ये कॉपी नहीं कर रहे,
0: ये
1: इसके लिए
0: कॉपी,
1: परेशान
0: किसी की
1: रहे।
0: कॉपी हो गई गलती से तो वो बोल रहे हैं कि अरे यार, ये तो उनका था, धनी राम जी का था।
1: बाप रे,
0: फिर उन्होंने वो 4 बार चेंज किए, मैंने लिखे पूरे। और उसके बाद फिर मैं म्यूजिक में गया, दूसरे दिन रिकॉर्डिंग। कौन सा गाना था मैं भूल गया, मुझे याद नहीं,
1: जी
0: लेकिन ये इंसिडेंट था।
1: ये अद्भुत घटना है, ये एक डेडिकेशन और ईमानदारी की एक
0: ईमानदारी के
1: बहुत ही अद्भुत घटना है। उत्तम जी, ये जो पूरी आपकी यात्रा है, इसमें चाहे नौशाद हो, चाहे रोशन साहब हो, मदन मोहन हो, सी रामचंद्र हो, तमाम लोगों के साथ आपने बजाया है।
0: जी,
1: बल्कि नैयर साहब की बाद वाली जो पारी है उसमें भी आप साथ में थे।
0: मुझे बुलाया था लेकिन कुछ कारणवश मेरा हो नहीं सका। मुझे तो एज ए अरिजन के लिए बुलाया था उन्होंने,
1: अच्छा
0: हाँ, लेकिन हो नहीं सका।
1: जी,
0: जी,
1: सी रामचंद्र के साथ?
0: अन्ना के साथ मैंने बजाया बहुत, और अन्ना मुझे बहुत प्यार करते थे।
1: जी
0: अन्ना की एक जगह मैं आज भी नहीं भूल सकता। मैंने फर्स्ट टाइम मोपेट ली थी, डैडी,
1: मोपेट, जी
0: मोपेट डैडी ने 500 रुपये की या 450 रुपये की से मोपेट ली थी। तो मैं लिंकिंग रोड से मोपेट में जा रहा था,
1: अच्छा,
0: तो मेरे बाजू से एक गाड़ी निकली,
1: हाँ,
0: हेराल्ड गाड़ी थी। तो
1: हेरल्ड,
0: जोर से निकल गई, तो आगे जाके वो गाड़ी ने रोक दी। तो मैंने कहा, तो ऐसे बाहर निकले तो अन्ना,
1: गजब,
0: तो मुझे रोका। मैंने कहा, अन्ना आप कहाँ? मैंने तुमको देखा इसलिए मैंने गाड़ी रोक ली, तुम ये कहाँ बाइक में जा रहे? मैं कहा, अन्ना डैडी ने ली थी तो मैं ऐसे ही चला रहा था, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी उसे। मुझे आज भी याद है, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उत्तम बहुत आगे जाओगे। ये जो आशीर्वाद है,
1: जी
0: ये जो प्यार है यूनुस जी, ये मांगने से नहीं मिलता।
1: क्या प्यारी बात है, वाह वाह वाह,
0: आशीर्वाद कभी भी मांग नहीं सकते आप,
1: जी, उसके
0: आशीर्वाद
1: काबिल
0: आपको
1: होना पड़ता
0: लेना
1: है।
0: पड़ता है,
1: जी
0: हासिल करना पड़ता है। और मुझे याद है कि मैं अन्ना की रिकॉर्डिंग में हमेशा लास्ट तक, मेरी बड़ी किस्मत रही है बहुत अच्छी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, खयाम साहब, श्री रामचंद्र साहब, एन दत्ता, उसके बाद में आपके आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, नौशाद साहब, मैंने शुरू इनके साथ किया
1: जी
0: और इनके जाने तक मैं इनके साथ था।
1: क्या बात है,
0: ये कितनी खुशकिस्मत की बात है कि मैंने उनके साथ शुरू किया,
1: जी, और
0: लेकिन उनके
1: लगातार साथ रहा।
0: लगातार साथ रहा, जब तक वो नहीं गए,
1: जी
0: जब तक वो चले गए मैं उनके साथ।
1: जी जी जी
0: तो ये बहुत प्यार मिला सबका।

0: अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात की, पर पंचम की बात रह गई है, और पंचम के साथ आपका काम भी है और एक साथ भी तो रहा है
1: ऑलमोस्ट 25 साल।
0: जी जी जी, कुछ यादें बांटिए।
1: पंचम जी के साथ जहाँ काम शुरू किया, मुझे लगता है वो भूत बंगला का बैकग्राउंड था।
0: ओहो हो, वो तो बहुत ही करामती बैकग्राउंड है भाई।
1: हाँ, वो 65 का है शायद वो।
0: जी जी, महमूद की फिल्म।
1: तो वहाँ से मैंने एज ए म्यूजिशियन उनके साथ शुरू किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे मैं उनका सोलो वायलिनिस्ट हो गया।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: फिर उनकी वायलिन का जो सेक्शन है वो पूरा मैं लीडर था। पहले मैं बजाता था, मैं सेट करता था, फिर सब लोग बजाते थे। तो मरोड़ जी आके रिहर्सल करते थे सुबह 9 बजे। तो 9:15 बजे के करीब हम लोग सेट करते थे और चलता रहा, काम चलता रहा। लेकिन जब कुछ सोलो बजाना होता था तो उत्तम बजाएगा सोलो तो है, क्योंकि उनके पास सोलो इंस्ट्रूमेंट जैसे मैं हो गया, भूपेंद्र जी गिटार हो गए, शिव जी संतूर हो गए, उसके बाद में हरि जी फ्लूट हो गए,
0: मनोहरी दादा
1: मनोहरी दादा की फ्लूट हो गए,
0: सेक्सोफोन
1: हो गए, चलो सोलो बजाना तो बसुदा हो गए। तो घर के रिदम में अगर कुछ सोलो बजाना है तो मारुति हो गया,
0: मारुति बजाते थे।
1: हाँ, और उनके मतलब ही हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। पंचम हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। तो मुझे किसी ने बोला कि क्या था, तो मैंने कहा जैसे अकबर के पास 9 रत्न थे,
0: जी
1: ऐसे RD बर्मन के पास भी 9 रत्न थे।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: और 9 रत्न कौन थे
0: जी,
1: मनोहरी जी
0: एक,
1: बासु जी
0: दो,
1: के भूपी जी
0: तीन,
1: उसके बाद भानु,
0: हाँ
1: चार, मारुति,
0: पांच,
1: देवीचंद,
0: छ,
1: अमरुत,
0: सात,
1: होमी मुल्ला
0: आठ,
1: और एक चंद्रकांत।
0: नौ। गजब गजब।
1: ये 9 लोग
0: जी,
1: उनके घर में बैठे होते थे, काम करते थे,
0: ये सब हीरे थे, नगीने थे ये,
1: और
0: सब
1: इसमें
0: फिल्म
1: कई लोग
0: म्यूजिक
1: तो मतलब जब होमी है, ये चंद्रकांत है, ये इनका काम था इंस्ट्रूमेंट लेके जाना,
0: हाँ।
1: रखना और इंस्ट्रूमेंट घर में लाना, ये भी उनका काम था। म्यूजिशियन भी थे और ये काम भी करते थे।
0: गजब गजब।
1: हाँ, चंद्रकांत
0: ये
1: हो
0: एक
1: गया,
0: पूरी टोली का,
1: पूरी टोली का काम था। और मतलब उनका काम जो मैंने कभी कभी, मैं तो ज्यादा जाता नहीं था उनके रिहर्सल रूम में, लेकिन पंचम ने अगर कुछ गाया है
0: जी
1: तो भूपी जी ने कुछ गा दिया, मारुति ने कुछ गा दिया, अपना मारुति ने कुछ बजा दिया, 15-20 मिनट के बाद गाना ओके हो गया, चलो चलते हैं,
0: वाह वाह वाह,
1: खाना खाते हैं,
0: ऐसी सुपर क्रिएटिव। शान फिल्म के गाने में यमा यमा में आपने जो वायलिन बजाया वो बहुत अलग है, उसके बारे में बताइए।
1: वो मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब तो रोज ही बजाते रहते थे, बट ये पीस ऐसा था तो मैंने कहा इसको ऐसे करें तो इसको ऐसे करें, तो करते करते वो हमारा फिक्स हो गया म्यूजिक। और फिर वो आप वो गाना सुनिए, आपको बहुत मजा आया, बहुत बहुत खूबसूरत वायलिन है उसके अंदर,
0: क्या बात है,
1: बहुत उतार चढ़ाव है उसके अंदर, और इसको इजिप्शियन स्टाइल बोलते हैं।
0: जी,
1: तो सुन लीजिए आप
0: जरूर।

0: सर, इतने सारे गानों की बातें हुई, पंचम के साथ कुछ और याद हमारे साथ बांटना चाहें आप?
1: पंचम जी के साथ यादें तो बहुत सारी हैं, बट ऐसा है, एक बार मैं पंचम के साथ नाराज हो गया था।
0: अरे
1: वो क्या हुआ कि एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो केबीएन एक सेंटेंस आ गया था, मैं केबीएन, केबीएन का मतलब कोई बात नहीं होता ना, अरे केबीएन कोई बात नहीं, हो गया कोई बात। तो ऐसे काफी दिनों से केबीएन चल रहा था,
0: जी
1: तो हम लोग भी अच्छा लगा कि आशा जी ने गलती कर दी केबीएन, उन्होंने गलती कर दी केबीएन, एक तीसरे ने गलती कर दी केबीएन, कोरस ने गलती कर दी केबीएन। तो ये केबीएन कुछ 4-5 महीने से चल रहा,
0: एक जुमला बन गया
1: एक
0: था।
1: जुमला बन गया था। तो अभी एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो एक पीछे से कि वायलिन वाले की गलती हो गई
0: ओ
1: और उसको कट करना पड़ा। तो पंचम नाराज हो गया, ही स्टार्टेड शाउटिंग, काम नहीं करते ध्यान से, ध्यान कहाँ रहता है, ये होता है वो होता है, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग जा रही थी, ये हो गया वो हो गया, चलो टेक करते हैं, अभी गलती मत करना। सब साइलेंट हुआ तो मैं खड़ा हो गया। पंच जी, मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ केवीएन केवीएन केवीएन, आशा जी का गलती हुई थी केवीएन, गोपी जी की गलती हुई थी केवीएन, इनकी गलती, एक वायलिन वाले ने गलती कर दी तो आप इतना शाउट कर दे, व्हाट इज दिस? अरे उत्तम, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उस आदमी का एक कमाल था, उस आदमी में कहीं ईगो नहीं था,
0: क्या बात है,
1: ही लाइक ए फ्रेंड, एंड आई एम सॉरी, आई एम सॉरी उत्तम, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी।
0: वाह।
1: फिर मैंने कहा केबीएन केबीएन। फिर सब लोग, सब म्यूजिशियन हंस पड़े, वायलिन वाले भी हंस पड़े कि वायलिन में कोई बोला तो सही, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती।
0: जी,
1: तो ये सोलोस जो है वो तो है, अरे एक बेचारे से किसी से गलती हो गई तो एकदम शुरू हो गया। तो ये किस्सा। फिर एक बार ना पंचम क्या क्या था, पंचम का क्रिएटिविटी बहुत थी।
0: आपको कुछ पीसेस याद आते हैं?
1: पीस तो वैसे बहुत सारे मैंने ठीक करवाए, ले जो भी है, लेकिन आपका एक बहुत, आपकी एक फिल्म है सागर,
0: हाँ,
1: तो सागर में बहुत बड़ा पीस था,
0: जलपरी वाला।
1: वायलिन सोलो का पीस था
0: अच्छा
1: सागर फिल्म,
0: जी,
1: तो जो वो कमल हासन बजाता है,
0: अच्छा, वो जी।
1: तो मुझे आके बोला गया कि इतना बड़ा पीस है, ऐसे ऐसे है, ये है, और वो बजाते बजाते तार टूट जाती है,
0: हाँ
1: ये हमको पिक्चर में दिखाना है।
0: जी,
1: मैं बड़ा परेशान हो गया, पहले तो पूरा पीस बनाया, पीस वहीं बैठ के कंपोज किया, ऐसे बजेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये चलो मेरा पीस कंपोज हो गया, अभी तार टूटे कैसे?
0: तो तोड़ना पड़ेगा सचमुच।
1: टूटेगी नहीं ना ऐसे, तार ऐसे नहीं टूटते,
0: जी
1: कितना भी मारोगे टूटेगी, जब कभी कभी टूट जाती है, ऐसे
0: हाँ
1: नहीं टूटते। फिर मैंने, अभी वो वायलिनिस्ट नहीं है, किशोर सिंह करके एक बहुत अच्छा वायलिनिस्ट थे,
0: जी,
1: उनको बुलाया, जैसे वो चैम्बर है ना, मैं वहाँ खड़ा होकर गया, जिस उस चैम्बर में लता जी आशा जी वगैरह सब वहाँ उसी चैम्बर, तो उस चैम्बर में मेरे को जगह दी गई कि उत्तम ये यहाँ से बजाओ, क्योंकि बाहर से उनको हॉल में नॉइस, तो ठीक है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा किशोर जब मैं पूरा पीस बजाऊंगा तो मैं तुमको साइन दूंगा, मैं ऐसे करूंगा तो तू ट्रंक करके साइन दे, जैसे ये ऐसे,
0: स्नैप आ
1: तो
0: जाए।
1: हाथ से करना,
0: जी
1: जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे ये वायलिन है ना,
0: जी
1: अभी ए, ये
0: हाँ
1: साउंड है,
0: जी
1: ये चाहिए, तार टूट गई,
0: हाँ
1: तो की 2-3 रिहर्सल की, जब वो किशोर पूरा समझ गया तो रिकॉर्डिंग की, तो फिल्म में दिखाया कि उन्होंने तार टूटी है
0: हाँ
1: लेकिन वो हाथ से किया हुआ है।
0: वो पीस आप बजाएंगे हमारे लिए?
1: नहीं, वो पीस, वो पीस अब नहीं बज सकता है।

0: एक दिन कुछ पता नहीं अजीब सा गाना लेके आया।
1: हाँ
0: हम लोगों ने बजाया, मैं कहा यार क्या बात है। तो मैं वेट कर रहा था पंचम के, पंचम आए तो मैं पूछूं। तो पंचम जी आए तो मैं कहा पंचम दा ये कहाँ से लाते हो रोज रोज यार।
1: हाँ
0: बोलता है उत्तम हो जाता है यार, काम करते रहते ना हो जाता है। वो जो हो जाता है ये बात जो है ना, ये जब मैं म्यूजिक बना तब मुझे समझ में आया कि ओ
1: काम करते रहने से हो जाता
0: काम
1: है।
0: करने से हो
1: ये जो
0: जाता
1: अजीब सा गाना था ये कौन सा
0: है।
1: था?
0: नहीं याद नहीं।
1: वो याद नहीं। अच्छा।

नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज एवं न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है न्यूज़ हेल्प टाइम्स में इस घंटे की खास खबरें।

0: श्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि 2017 में शुरू होने के बाद से अब तक 16 पेंशन अदालतों के जरिए 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बारडोना जिले के सांतिपनी विद्यालय में वरिष्ठजनों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक ली एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रदेश में आज सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार के तहत नगरीय क्षेत्रों में वार्ड और जोन स्तर पर मेगा सेवा सेतु शिविर लगाए गए। शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी द्वारा नागरिकों की समस्याओं और आवेदनों का मौके पर निराकरण किया। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक देश को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी और देश के भविष्य के लिए ड्रग्स और नशे को खत्म करना बेहद जरूरी है। प्रदेश में मानसून 24 जून को दाखिल हुआ था और 3 अक्टूबर को विदा हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी सीजन में प्रदेश में 35.8 इंच बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से करीब 4% कम है। और एशिया खेल का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। एशियाई खेलों में भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ पदक तालिका में 4th स्थान हासिल किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे विश्व पशु दिवस पर। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। दोस्तों, क्रम जीवनालोक में हम चर्चा करेंगे बुरे वक्त का सबसे अच्छा मित्र ज्ञानवर्धक पुस्तक विषय पर, और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं विश्व पशु दिवस। विश्व पशु दिवस प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पशुओं के प्रति लोगों में प्रेम, दया और संवेदनशीलता की भावना उत्पन्न करना तथा उनके अधिकारों और संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। पशु हमारे पर्यावरण और प्रकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पृथ्वी पर जीवन के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पशु और मनुष्य का संबंध बहुत पुराना है। साथियों, प्राचीन समय से ही मनुष्य ने पशुओं को अपने जीवन का साथी बनाया है। गाय, भैंस, बकरी आदि पशु दूध प्रदान करते हैं। बैल और घोड़े जैसे पशु पुराने समय में खेती और परिवहन में सहायता करते थे। हाथी जैसे बड़े पशु भी मानव जीवन में विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी रहे हैं। दोस्तों, आज भी अनेक परिवार पशुपालन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं। दोस्तों, विश्व पशु दिवस हमें यह याद दिलाता है कि पशु भी जीवित प्राणी हैं और उन्हें भोजन, पानी, सुरक्षित वातावरण और उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। हमें उनके साथ क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। कई बार लोग पशुओं को बिना भोजन पानी के छोड़ देते हैं या उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं। यह मानवता के विरुद्ध है। हमें पशुओं के प्रति प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। साथियों, आज अनेक जंगली पशु और पक्षी संकट में हैं। जंगलों की कटाई, प्रदूषण, अवैध शिकार और प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के कारण कई प्रजातियों की संख्या कम हो रही है। यदि हम समय रहते प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां कई महत्वपूर्ण पशु पक्षियों को केवल किताबों में ही देख पाएगी। इसलिए जंगलों की रक्षा करना और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। साथियों, पशु पर्यावरण के संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जंगलों में शाकाहारी और मांसाहारी जीव खाद्य श्रृंखला का हिस्सा होते हैं। पशु बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। मधुमक्खियां और अन्य जीव परागण में योगदान देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जीव प्रकृति के चक्र में किसी न किसी रूप से उपयोगी होता है। दोस्तों, विश्व पशु दिवस के अवसर पर विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों को पशु संरक्षण के बारे में जानकारी दी जा सकती है। चित्रकला, निबंध, भाषण और पोस्टर प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। घायल या भूखे पशुओं की सहायता करना, गर्मी में उनके लिए पानी रखना और पशुओं के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना भी अच्छे

कार्य हैं। दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि पशुओं की रक्षा केवल सरकार या पशु संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हमें अपने आसपास रहने वाले पशुओं के साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, विश्व पशु दिवस केवल एक दिन मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि पूरे वर्ष पशुओं के प्रति दया और जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देता है। मनुष्य और पशु प्रकृति के एक ही परिवार का हिस्सा हैं। यदि हम पशुओं और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारी पृथ्वी अधिक सुंदर और संतुलित बनेगी। इसलिए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम पशुओं से प्रेम करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे तथा उनके प्रति हमेशा दयालु व्यवहार रखेंगे। आइए साथियों, समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय विश्व अंतरिक्ष सप्ताह पर चर्चा करने का। संदर्भ है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। दोस्तों अंतरिक्ष मानव के लिए हमेशा से ही जिज्ञासा और आकर्षण का विषय रहा है। आकाश में चमकते तारे, चंद्रमा, सूर्य और अनेक ग्रहों को देखकर मनुष्य के मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न हुई कि इस विशाल ब्रह्मांड के रहस्य क्या हैं। अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करने और अंतरिक्ष विज्ञान के महत्व को समझने के लिए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान ने मानव जीवन को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतरिक्ष सप्ताह के माध्यम से लोगों को अंतरिक्ष अनुसंधान, वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा ब्रह्मांड के बारे में जागरूक किया जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान केवल वैज्ञानिक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध हमारे दैनिक जीवन से भी है। आज संचार, मौसम की जानकारी, नेविगेशन, टेलीविजन प्रसारण और आपदा प्रबंधन जैसी अनेक सुविधाओं में अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग किया जाता है। साथियों, मानव ने अंतरिक्ष की खोज के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्ष 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 नामक पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। इसके बाद अंतरिक्ष अनुसंधान में तेजी आई। वर्ष 1969 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। इन उपलब्धियों ने पूरी दुनिया को अंतरिक्ष विज्ञान की नई संभावनाओं से परिचित कराया। साथियों, भारत ने भी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत ने अनेक कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है, जिनका उपयोग संचार, मौसम, कृषि, शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। साथियों, भारत के चंद्र अभियान भी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में योगदान दिया। इसके बाद चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशनों ने भारत की अंतरिक्ष क्षमता को आगे बढ़ाया। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ी। इसके अलावा मंगलयान के माध्यम से भारत ने मंगल ग्रह के अध्ययन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। साथियों, अंतरिक्ष विज्ञान का महत्व भविष्य में और बढ़ने वाला है। वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों और उपग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं। पृथ्वी से बाहर जीवन की संभावनाओं, ग्रहों की संरचना और ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसे विषयों पर लगातार शोध हो रहे हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान से विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कई विकास कार्य हो रहे हैं। दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान विशेष रूप से प्रेरणादायक है। यह उन्हें विज्ञान, गणित और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, हम कह सकते हैं अंतरिक्ष केवल रहस्यों से भरा हुआ विशाल संसार नहीं है, बल्कि यह मानव वैज्ञानिक प्रगति का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अंतरिक्ष अनुसंधान ने हमारे जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है और भविष्य में भी इसके नए अवसर सामने आएंगे। दोस्तों, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह में विज्ञान के प्रति जिज्ञासु बनने, नई खोजों के लिए प्रयास करने तथा मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए वैज्ञानिक सोच विकसित करने की प्रेरणा देता है। आइए साथियों, चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवन आलोक में हमारे आज के विषय बुरे वक्त का सबसे अच्छा मित्र ज्ञानवर्धक पुस्तकें पर चर्चा करने का। दोस्तों पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र मानी जाती हैं। सच्ची मित्रता वही होती है जो कठिन समय में हमारा साथ दे, हमें सही रास्ता दिखाए और निराशा से बाहर निकलने की प्रेरणा दे। इस दृष्टि से ज्ञानवर्धक पुस्तकें बुरे व्यक्त की सबसे अच्छी मित्र हैं। जब व्यक्ति अकेलापन, परेशानी, चिंता या असफलता का अनुभव करता है तब अच्छी पुस्तकें उसका मन शांत करती हैं और उसे नई सोच तथा नई दिशा प्रदान करती हैं। दोस्तों पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। उनमें विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी, अनुभव और विचार संकलित होते हैं। इतिहास, विज्ञान, साहित्य, दर्शन, भूगोल, कला, अनेक विषयों की पुस्तकें हमें दुनिया को समझने में सहायता करती हैं। एक अच्छी पुस्तक पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है और हमारी सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। दोस्तों जीवन में कठिन समय आना स्वाभाविक है। विद्यार्थी को परीक्षा में असफलता मिल सकती है, किसी व्यक्ति को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है या कभी कभी मनुष्य किसी समस्या के कारण निराश हो सकता है। ऐसे समय में ज्ञानवर्धक पुस्तकें हमें यह समझाती हैं कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं और प्रयास करने से परिस्थितियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। महान व्यक्तियों की जीवनियां हमें संघर्ष और परिश्रम से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। साथियों पुस्तकों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे बिना किसी स्वार्थ के हमारा मार्गदर्शन करती हैं। एक अच्छी पुस्तक को जब हम बार बार पढ़ते हैं तो हर बार उससे कोई नई बात सीखने को मिलती है। पुस्तकें हमारे विचारों को सकारात्मक बनाती हैं और हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं। वे हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने में सहायता करती हैं। दोस्तों आज के समय में मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट, टेलीविजन, सोशल मीडिया हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। इनके माध्यम से जानकारी प्राप्त करना आसान है, लेकिन पुस्तकों का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। पुस्तकें पढ़ते समय हमारा ध्यान किसी एक विषय पर केंद्रित रहता है, इससे एकाग्रता और धैर्य का विकास होता है। विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक पुस्तकों का विशेष महत्व है। पाठ्य पुस्तकों के अलावा सामान्य ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, साहित्य और महान व्यक्तियों की जीवनियों से संबंधित पुस्तकें पढ़ने से उनका ज्ञान व्यापक होता है। अच्छी पुस्तकें विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत, भाषा कौशल और तर्क करने की क्षमता विकसित करती हैं। दोस्तों ज्ञानवर्धक पुस्तकें केवल कठिन समय में ही हमारी मित्र नहीं होती, बल्कि अच्छे समय में भी वे हमारा मार्गदर्शन करती हैं। वे हमें अपनी सफलताओं का सही उपयोग करना सिखाती हैं और जीवन में विनम्र बने रहने की प्रेरणा देती हैं। यदि हम नियमित रूप से अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत डाल लें तो हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। हमें अपने रुचि के अनुसार अच्छी पुस्तकों का चयन करना चाहिए। दोस्तों हम कह सकते हैं कि ज्ञानवर्धक पुस्तकें वास्तव में बुरे वक्त की सबसे अच्छी मित्र हैं। वे कठिन परिस्थितियों में हमारा मनोबल बढ़ाती हैं, हमें ज्ञान देती हैं और सही दिशा दिखाती हैं। आइए साथियों अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

0: अभी युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की थी।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ एवं न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।

ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फूल और कांटे फिल्म से। बोल समीर के हैं, संगीत नदीम श्रवण का, आवाज कुमार सानू और अलका याग्निक की।

आकाशवाणी जबलपुर से श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर आनंद बख्शी का लिखा गीत अब हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम हीरो, आवाज रेशमा की।

आप सुन रहे थे किशोर कुमार को, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन, फिल्म का नाम था कुदरत। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं अजनबी फिल्म के लिए समीर का लिखा और अनु मलिक का संगीतबद्ध किया गीत, आवाज़ सुनिधि चौहान और कुमार सानू की।

अजनबी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। और अब वक्त है कार्यक्रम विवरण का। पहले हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बता दें। देशभक्ति फिल्मी गीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। 6:30 पर सुनिएगा संजवाती कार्यक्रम में गैर फिल्मी भजन। कृषि जगत कार्यक्रम

कार्यक्रम में आज शाम 7:21 पर आकर्षण होगा हल्दी एवं अदरक में रोग प्रबंधन विषय पर डॉक्टर वेदांत गौतम से ली गई भेंट वार्ता।

आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित कार्यक्रम डगर विकास के सुनिएगा रात्रि 8 बजे। गुलदस्ता कार्यक्रम रात्रि 8:30 पर प्रस्तुति होगी श्याम टहलानी की। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर, और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, ये तो थे हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

हमारी पहली सभा में कल प्रातः 6:05 पर सुनिएगा वंदना कार्यक्रम में भक्ति रचनाएं। चिंतन कार्यक्रम 6:30 पर श्री रामचरित मानस गान प्रसारित किया जाएगा सुबह 6:35 पर। 6:45 का समय होता है कृषि सामयिकी का। कल इस कार्यक्रम में सुनिएगा चुकंदर की खेती विषय पर सुझाव।

गुड मॉर्निंग जबलपुर, हर रोज़ की तरह सुनना न भूलें सुबह 7:20 पर। लोक रसधार कार्यक्रम में कल सुबह 9 बजे हम आपको सुनवाएंगे मिठाई लाल चक्रवर्ती के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा के 25 वर्ष पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं सदी, ये कार्यक्रम आप सुनते हैं सुबह 10:05 पर। आकाशवाणी दिल्ली से विश्व दर्पण कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 10:10 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा आप सुनेंगे 10:20 पर।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम सुने जा सकते हैं 11 बजे से। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे हमारी दूसरी सभा में कल शाम 6 बजे। संजवाती कार्यक्रम में गैर फिल्मी भजन सुनिएगा कल शाम 6:30 पर। श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम संबंधी जानकारी सुन रहे थे। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। अब आप आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are

0: अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना, यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि यह क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार आगे के आवंटन पर विचार किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। समाधान की सफलता दर 71.79% है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से निर्देश दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों की मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4th स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

और लीजिए अब सुनिए महेंद्र कपूर और साथियों को। फिल्म का नाम पूरब और पश्चिम, बोल इंदिवर के हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

मुरली की मधुर धुन, कान्हा की मनमोहक मुस्कान और राधा कृष्ण का प्रेम भक्ति की एक ऐसी अनुभूति है जो सीधे हमारे हृदय को छू जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म करते रहें और परिणाम की चिंता प्रभु पर छोड़ दें।

अगर भक्ति सच्ची है तो प्रभु हर मुराद पूरी करते हैं। कहते भी हैं ना कि भगवान तो अपने भक्त के बस में होते हैं, और जब भक्ति अटूट हो तो भक्त की मांग का स्वरूप भी बदल जाता है कुछ इस तरह।

राम नाम की महिमा ही ऐसी है जो मन को शांति और जीवन को नई दिशा देती है। जब भी मन अशांत हो, उस क्षण प्रभु श्री राम का स्मरण हमारे भीतर विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तो आइए कुछ पल सांसारिक चिंताओं से दूर होकर भगवान श्री राम के चरणों में अपने मन को समर्पित करें। प्रस्तुत है श्री राम जी का ये मधुर भजन।

कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, इसलिए प्रत्येक कार्य हमें समय से करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सहज और सरल हो जाता है। ईश्वर भक्ति में भी यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। उस परमपिता परमेश्वर को हमेशा याद करते चलें, क्योंकि हरि नाम ही हमें इस भव बंधन से पार लगाएगा। इसलिए हरि का नाम आज और अभी से जपें, ताकि बाद में पछताना न पड़े।

और श्रोताओं, ये था संजीवाती कार्यक्रम का आखिरी भक्ति पुष्प। आज इस कार्यक्रम में आपने लता मंगेशकर, हरिओम शरण, जगजीत सिंह, ओम व्यास और अनु जलोटा के स्वर में कुछ भक्ति रचनाएं सुनी। इसके साथ ही संजीवाती कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ एवं न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।

ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। अब आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं।

0: आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को, पश्चिम बंगाल से रुक्मिणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are important agendas for emerging and middle powers. Speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today, the External Affairs Minister said emerging and middle powers are from Global South and Global North who are united in the goal of being more relevant. He pointed out that the world is changing, its agenda and landscape is changing, and there is a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate.
2: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
1: Union Agriculture and Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan has said the centre will support Andhra Pradesh in providing pakka houses to poor families in the state. The minister, along with Chief Minister N. Chandrababu Naidu, launched a pilot project for constructing houses using 3D concrete printing technology at Buripalayam village in Guntur district today. Speaking on the occasion, Mr. Chauhan said the center sanctioned 3 lakh houses for Andhra Pradesh and would sanction another 3 lakh houses

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: ये देख कैसे।
6: हैप्पी बर्थडे भाई।
7: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
6: हमेशा शॉपिंग।
8: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
9: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
10: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
8: आई नो ना।
10: RBI कहता है,
11: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंडला में तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पाडुना में तेज विकास को शासन की प्राथमिकता बताया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में 3D तकनीक से आवास निर्माण परियोजना का शुभारंभ किया और एशियन गेम्स में भारत ने 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते 10 पदक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंडला में आयोजित कार्यक्रम में 8 वन मंडलों के 9 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों के खातों में 36 करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक की बोनस राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस राशि से मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट सहित विभिन्न वन मंडलों के तेंदुपत्ता संग्राहक लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वनवासियों और तेंदुपत्ता संग्राहकों के आर्थिक हितों को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पाडुना में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में जिले के तेज विकास और नागरिक सुविधाओं को शासन की प्राथमिकता बताया।
1: बात जब से जिले की घोषणा हुई है, हमने लगातार विकास के लिए पर्याप्त धनराशि देते हुए जिला कार्यालय से लेकर सभी लगातार पदों की मंजूरी भी देते जा रहे हैं और हरेक वो क्षेत्र, चाहे आज जिस जगह हमें है, ये सांदीपनी का भव्य दिव्य भवन बनना या अलग अलग प्रकार की सारी संभावना पे काम करते हुए सरकार के माध्यम से जो बताया गया कि जो सामान्य से बारिश कम हुई है, हमारे राज्य के लोगों के लिए, पांडुरना के लोगों के लिए रोजगार से लेकर के सभी प्रकार की मदद की जितनी प्रकार की जरूरत हो हम पूरी सहायता करेंगे।
0: उन्होंने युवाओं को उद्योग और स्वरोजगार से जोड़ने, कृषि एवं स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और पशुपालन व दुग्ध उत्पादन की संभावनाओं के विस्तार पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने सेवा सेतु शिविर में विभिन्न योजनाओं के हित लाभ वितरित किए। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले के बुरी पालिम गांव में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक से मकान बनाने की परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेगी। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में सेवा सेतु अभियान के तहत सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने हितग्राहियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ और प्रमाण पत्र वितरित किए। वर्षों से आवासीय अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे लोहपीटे समाज के पात्र परिवारों को आवासीय पट्टे भी प्रदान किए गए। मंत्री ने कहा कि पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिलाना सरकार की प्राथमिकता है।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में जबलपुर के स्कूलों में अटल लैब के हो रहे प्रभावों की जानकारी दी जा रही है।
3: पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीएमएम जबलपुर में विद्यार्थियों के नवाचार और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए अटल टिकरिंग लैब स्थापित की गई है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश

0: में चयनित 500 विद्यालयों में केंद्रीय विद्यालय सीएमएम जबलपुर भी शामिल है। अटल टिंकरिंग लैब में विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की अवधारणाओं को व्यावहारिक रूप से समझने का अवसर मिल रहा है। लैब में रोबोटिक्स, सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर, 3D प्रिंटर, कंप्यूटर और अन्य आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। विद्यालय के विद्यार्थियों ने इस लैब में स्मार्ट डस्टबिन, स्मार्ट जेब्रा क्रॉसिंग, ब्लूटूथ कार, धुआं पहचानने वाली कार और बाधा पहचानने वाली कार जैसे नवाचारी प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। लैब का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मकता, समस्या समाधान और डिजाइन सोच विकसित करना तथा उन्हें केवल तकनीक का उपयोग करने वाला नहीं बल्कि नए समाधान तैयार करने वाला बनाने की दिशा में प्रोत्साहित करना है।
1: एशियन गेम्स 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी 5 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीतकर देश की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शूटिंग में नीरू डांडा ने 2 स्वर्ण, 1 रजत सहित 3 पदक जीते, वहीं विवेक सावकर और इशिका चौधरी ने हॉकी में स्वर्ण, क्रांति गौर ने क्रिकेट में स्वर्ण और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में कांस्य पदक हासिल किया। राज्य के अन्य खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के बड़ौद में आयोजित 2 दिवसीय प्रांत स्तरीय विज्ञान मेला एवं वैदिक गणित प्रतियोगिता में मालवा प्रांत के विभिन्न जिलों के 386 छात्र छात्राएं शामिल हुए। नीमच में सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा सेतु अभियान के माध्यम से नगर पालिका कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय जनकल्याण शिविर आयोजित किया गया। खंडवा जिले के हरसूद में वीरांगना रानी दुर्गावती एवं गोंडवाना की गौरवशाली विरासत को समर्पित जयंती समारोह जारी है। आज दूसरे दिन पारंपरिक लंगड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत नगर निगम द्वारा प्रसिद्ध धर्म टेकरी में श्रमदान अभियान चलाया गया। भोपाल में दिव्यांग, अनाथ और निर्धन बच्चों के लिए करीब 45 वर्षों से काम कर रहे समाजसेवी सरदार खान के जीवन पर बायोपिक फिल्म बनाई जाएगी। गुना जिले के राघोगढ़ में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने एक दिव्यांग आवेदक को रेड क्रॉस के माध्यम से 10,000 रुपये की तत्काल सहायता दिलाई और स्वास्थ्य विभाग को उपचार में सहयोग के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंडला में तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पाडुना में तेज विकास को शासन की प्राथमिकता बताया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में 3D तकनीक से आवास निर्माण परियोजना का शुभारंभ किया और एशियन गेम्स में भारत ने 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते 10 पदक। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।
2: 3 कॉलेज में
3: डोंट वरी
2: फीस तो देखो।
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन,
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का नो कोलैटरल। वो कहा है? मिठाई।
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। लीजिए अब सुनिए किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत सुन भी बारे सभी किसान भैया बिन्ना भौजी काकी और चाहे तन तन से मोड़ा मोड़ी रेडियो पे सुन रहे हैं जॉन लाडली भौजी के, तो सब के राम राम भौजी की। अब देखो पितृपक्ष चल रहे, सभी जने अपने सियानों के अपने पूर्वजों के याद कर रहे हैं, उनकी तिथि के दिन भोग अर्पण कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, पवित्र नदियों में जाके कछु ऐसे विशेष स्थान बनाए गए हैं जिते पे जाके अपने पितरों को तर्पण करो जात है। तो ऐसे ही पवित्र नदियों में जाके अपने पूर्वजों को याद करके तर्पण कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, लोगों हैं भोजन करा रहे हैं, ये सब बातें सबके पता है। कहें भौजी पता है सभी, सब जने सब कछु कर रहे हैं, पर हम तो एक बात बता रहे हैं कि कल तेतर भैया मिल गए सकारे, दोना में रखे थे भोग रखे हते और कौआ देख रहे हते, रोड के ते किनारे चले जा रहे थे, हम कहें का होगा तेतर भैया जी दोना धरे हो, दो दोन कौन कौन के लाने लेके जा रहे हो। कहने लगे देखो एक तो गैया है दे हैं, कुत्ता है दे हैं, कौआ है दे हैं, और जो दो दोना है सो कि काल को भी नहीं खाओ, कौआ दिखानो ही नहीं, तो भी दो ही दोना हाथ में धरे कि कहूँ कौआ दिख जाए कि कहूँ दूसरे पशु दिख जाए तो हम उन्हें खवा दें। हमने कही तेतर भैया देखो कौआ नहीं दिख रहे तो कबूतर दिखे तो कबूतर ही खवा दो, ऐसा कछु नहीं है कि तुम कौआ ही ढूंढो। अरे भौजी तुम मजाक बहुत करो। तो हमने कही मजाक की क्या बात है, कौआ भाव कि कबूतर भाव, जे कोई भी पशु है पक्षी है उम्दा तरीके से तुम भोग खा ले तो होगा, प्रसाद उन्हें मिल गया समझो। तो कहने लगी सांची कह रही हूँ, तो हम इतना ही धर के अब इतना देर देखा थे कि कौन कौआ आ रहा हो कि कौन सा पशु है कि गैया ही मिल जाए, फिर ऐसे में इतनी बातें भाई बातों ही बातों में हमने कही अब जा बताओ कि बिन जो दुलारी काकी हैं अपनी उनके थे तुम्हें पता है कजन कितने मुतके उनने जो पशु होते जो रोडों पे सड़कों पे किनारे बैठे रहते वे अपने घरे ले गई हैं। कहते क्या बता रही भौजी, हमने कही सांची कह रहे उनने छत पे पीछे अंगना में जितनी जो सड़कों पे छोड़ जाते हैं ना, एक तो देखो पशु पाल ले तो उन्हें भी धरो नहीं जाए तो वे छोड़ जाते, तो वे इते उते बैठी कहूँ पे भी हैं। अब जब वे सड़कों पे बैठी रहे थे तो उससे कहा हो जाते हाथ से भी तो हो जाते हैं और पशु अलग जख्मी हो जाते हैं, तो उनने एक बीड़ा उठाओ कि वे सब अपने घरे ले गई, ऐसे उनके कजन कितने कुत्ता 8-10 ठैया हैं, 2-3 ठैया तो गईयें धरी भैंसियाँ धरे हैं। वो के बाद अब कह रही थी कि देखत रहने कहूँ कोई पशु है दिक्कत न बने, तुम और देखने तो इतने ले आने, उन्हें आश्रय दे हैं, उम्दा हम भोजन दे हैं। ओ के बाद हमने कही कि भैया जा बताओ कि तुम्हें पता है आज कौन सा दिन आए। कहने लगी हैं अब इतनी बातें कर रही हैं कौन सा दिन है, पहले नहीं बता सकी कौन सा दिन आए। हमने कही हम तुम्हारी देख रहे थे कि तुम्हें कछु पता है जानकारी है कि नहीं। तो तेतर भैया बोले जानकारी तो देखो मुतकी रहते पर बिसर जाते, रोज नए नए दिवस होते हैं, आज कछु ऐसे पशु की बातें कर रही तो कछु पशु को काजे का है कछु कल्याण दिवस है का। हमने कही कल्याण दिवस समझो आज विश्व पशु दिवस आए, जो दिना सबसे पहले हम बताए दे रहे हैं 24 मार्च 1925 के एक जर्मन लेखक और प्रकाशक हते हेनरिक जिमरमैन गेन भैया, वे उनने जो पशु दिवस मनाओ ओ के बाद से फिर 4 अक्टूबर 1929 की बात आए जब से जो पशु दिवस मनाओ जान लगो, काय बनान जान लगो कि देखो पशुओं की जो रक्षा करने हैं, पशुओं को आश्रय देने हैं और जो इनसी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उन्हें बचाने हैं, उनके ऊपर होवे वाले अत्याचार क्रूरता जो सब रोकने हैं। अब देखो पशु ने हुई हैं तो खाद्य श्रृंखला कैसे चल है, और ओ के बाद जे हमें का देते हैं हमारी सहायता कराते हैं खेती करवे में, वे हमारे सच्चे साथी हैं कह लो बिल्कुल। ओ के बाद वे भगवान के वाहन भी हैं, वे दुग्ध देते हैं वे के अलावा, और हमारे जो पहले की हम बात करें सामान ढोवे के भी काम आते, हल वखर में बैला लगाते हैं वे, और मुतके ऐसी काम हैं जोन पशु हमारे हमारे सच्चे मित्र की तरह हमारे संग देते हैं। कहन लगे भौजी जा तुमने बिल्कुल साँची बात कही, काहे कि देखो अजौन पशुपालक हैं पशुपालक होते हैं उनके भी कछु उनके प्रति जिम्मेदारी होते हैं। एक तो पशु मूक होते वे कहते नहीं हैं कि उन्हें का है, लेकिन जोन पशुपालक हैं उनकी भावनाओं के समझें
उनसे प्रेम करें, उन्हें समय समय पर टीकाकरण कराएं, काय की टीकाकरण हो वो उनको बहुत ज़रूरी है, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करें। जो नहीं है कि पशु बीमार है तो बीमार है, अरे ठीक हो जाए है, घरेलू इलाज कर रहे हैं, समय पे उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। साफ सुथरों उनकी व्यवस्था रहे कि उनको आश्रय अच्छा उम्दा होने चाहिए, पानी की व्यवस्था उम्दा होने चाहिए, जो उनमें वे पानी पियत हैं, हौदी है, नांद है, बस साफ़ होने चाहिए, भोजन अच्छों कराने चाहिए। आप उनकी सेवा कर हो तो वे भी हमें अच्छे उत्पादन दें, हम लोग हमारी भी सहायता करें, हमें लाभ मिले। यही से यही सब कारणों से कहते हैं कि पशु दिवस, हर दिन पशु दिवस है, हमें पशुओं के प्रति प्रेम धरने हैं, अच्छो व्यवहार धरने हैं। देखो बात बड़ी सीधी सादी है कि हमें कहूँ भी जब देखें कि कोई भी पशु कहूँ फंसो है, हमें वो की सहायता करने हैं तो हमें तुरंत दौड़ के वो की सहायता करने हैं। कहूँ भी फंसो पशु है, चार जने हैं बुला के मदद करके वो निकालने हैं। देखो बातें अभी मुतकी हैं, पर पहले जैसे हमने कही कि पितृपक्ष चल रहे हैं और हमारे जो तेतर भैया हैं उनके पूर्वजों की सियानों की तिथि चल रही है। तेतर भैया का मुतके झने हैं जो सब काम करते हैं, काय की सभी अपने पूर्वजों को सियानों को आशीर्वाद चाहिए। अब देखो हमरे इतने तो है कहा पवित्र नदी है, कौन सी नर्मदा नदी, हम सब रे उतई जात है, काय की पास पड़त है उम्दा पवित्र नदी, दर्शन के दर्शन हो गए, कहें तो दर्शन से सुई लाभ मिलत है, उम्दा उतने कहूँ कहूँ मेला भरत है, मुतके संत हैं, भक्त हैं, सब उतई मिल जाते हैं। और जब उनको जो लोकगीत उनके भजन चलत हैं तो ऐसो उम्दा लगत है कि का बताइए।

0: कुछ तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अब देखो का भाव कि जब कक्का है मिल गई, गैया सुई मिल गई, कुत्ता भी मिल गया, सब मिल गया, वो तो कक्का हमसे कहने लगे अब चलो मन तनक शांत भाव कि जो भोग जो उन्हें देने थे उन्हें मिलो, अब संगे चलो घरे अच्छी उम्दा तुम्हें अदरक की चाय पिवाएं। हम कहें कक्का हम बिल्कुल न पिए, हमें घरे जान दो, बिल्कुल नहीं हमें घर जान दो, मुत के काम है। कहने की चलो तो घर को अच्छो बढ़िया अदरक निकलो उम्दा खूब अच्छी स्वादिष्ट तुम चाय पियो तो कहो वाह मज़ा आ गो। हमने कही चलो तो फिर ठीक है। तो ऐसे ही हम कक्का के घरे गए, चाय वाय पी, उम्दा देखे कि कक्का के घरे होते कहने लगे ये बार हमने हल्दी भी लगाई, अदरक भी लगाए। हम कहे बड़ो उम्दा काम करो कक्का तुमने, तुम्हें पता है कक्का की जो हल्दी में एंटीबायोटिक होते है? कहने लगे हमें सब पता है, तुम का बते हो। हम कहें हम आप पता नहीं है तो हम बता दें कि वहाँ एंटीबायोटिक होते हैं और जो अदरक होते वो से तो मुझ की बीमारियाँ हटाते हैं। अरे भौजी हमें सब कछु पता है, हमें कछु ने बताओ, बस जा बताओ कि जब इनमें कोई ऐसी रोग व्याधि हो जाए ओके काचू उपाय है। काहे कि एक बार का भाव थो कि तनक हमने अदरक लगाए तो उमदा ने भाई रोग लग गओ तो बामे। तो हमने कही काहे गुस्सा हो रहे कक्का, काहे नाराज हो रहे, हम तो जाते ही हैं उते जानकारी है उते से हम देते ही हैं अपने चौपाल में। तो चौपाल में मुतकेलो डॉक्टर भैया आते हैं और जौन डॉक्टर भैया आ हैं तो उमदा से बैठ के सुने करें कि का बता रहे हैं, सुनते ही नहीं हो, चाहे जहाँ रेडियो धरो रहत तुम इतने उते भागत रहत। तो कहने लगे अब बिल्कुल सुने करे, ध्यान से देखो काम इतो रहते तो सुन नहीं पाए, तो ध्यान दे के सुने करे ना कि इतने से जानकारियाँ का जा रही हैं। तो ऐसे ही देखो आज की जानकारी उमदा है तुम्हारे काम की, सुन लेने हल्दी और अदरक में कैसे रोग प्रबंधन करने हैं। देखो डॉक्टर वेदांत गौतम भैया से जी, विपिन भैया उमदा से जानकारी इनने लई तो जई इनकी बात है जो हम आपके सुनवे हैं, तो बस सुनो।
4: किसान बहन भाई राम राम। आज हम एक महत्वपूर्ण बातचीत लेके आए हैं, हल्दी और अदरक में रोगों का प्रबंधन कैसे हो, और ये महत्वपूर्ण बातचीत होगी हमारे साथ उपस्थित डॉक्टर वेदांत गौतम जी से, जो कि पौध रोग विभाग कृषि महाविद्यालय जबलपुर से पधारे हुए हैं। वेदांत जी इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
5: धन्यवाद सर।
4: जो हल्दी और अदरक की फसलें हैं हमारे क्षेत्र में, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सा रोग या कौन सी बीमारी पहुँचाती है?
5: किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा समस्या अदरक और हल्दी की खेती में कंद सड़न की वजह से है। यह एक नहीं बल्कि 3 जीवाणु या कवक से मिलकर होती है, जिसमें मुख्य रूप से गीली सड़न, सूखी सड़न और अदरक में विशेष रूप से जीवाणु उठा है।
4: हमारे किसान बहन भाई, रोग आ गया तो कैसे इसके लक्षणों को पहचान पाएंगे?
5: जिन भी क्षेत्रों में पानी भरने की समस्या है वहाँ पे हमें ये देखना है कि कोई प्रभावित पौधे खेत में उपस्थित हैं या नहीं
4: जी।
5: और इसे पता करने के लिए हम उन पौधों को उखाड़ेंगे, तने को जड़ के पास से बाहर निकालेंगे, और अगर यह पीथियम या फिर हम इसको गीली सड़न बोलें तो उस जगह पे जो कंद होगा वो बहुत नरम होगा
4: जी।
5: और पानी जैसा हो जाएगा और उससे एक सड़े हुए अंडे जैसी दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी।
4: अच्छा।
5: और उसका ऊपरी छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा। लेकिन अगर उसी जगह पे जीवाणु उकठा की समस्या दिख रही है तो हम क्या करेंगे कि तने को काटकर एक गिलास साफ पानी में डुबाएंगे, अगर एक मिनट के अंदर दूध जैसा सफेद तरल पदार्थ बहने लगे तो यह जीवाणु उकठा है।
4: अच्छा।
5: पत्तियां अगर किनारे से पीली होकर अंदर की तरफ बढ़ती हैं और पूरा पौधा अचानक गिर जाता है। अगर इसी में सूखी सड़न की समस्या है तो कंद सिकुड़ जाएगा, गहरा या काला रंग का हो जाएगा
4: जी।
5: और सूखा और सख्त होगा। ये सारी समस्याओं को देखने के लिए आपको मुश्किल से 2 मिनट का समय लगेगा।
4: तो बुआई के पहले जो कंद है, रोपण के पहले क्या उपचार करना चाहिए?
5: जिस भी कंद का हम उपयोग कर रहे हैं बुआई के लिए वो रोग मुक्त होना चाहिए। इसके अलावा बीज उपचार करना बहुत अति आवश्यक है। इसके लिए एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण आता है बाजार में, आप उसे लें। उसका 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसको उपयोग करके आप 30 मिनट के लिए अपने कंदों को उसमें डुबा कर रखें और डुबाने के बाद उनको सूखी जगह पे छोड़ दें। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा है, सीडोमोनास है, आप इनको भी बीज उपचार के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना चाहिए और इसको जो जल है उसमें घोल के आप अपने कंदों को 30 मिनट तक रख दें। और जब हम बात करते हैं जीवाणु के बारे में, एक मार्केट से दवा लाइए स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और उसके साथ में हमारा टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का एक मिश्रण आता है, इसको आप 10 लीटर पानी में 2 ग्राम डालिए और 30 मिनट तक आप अपने कंधों को उपचारित करिए।
4: एक व्यवहारिक समस्या होती है कि हमारे खेतों में बरसात के समय पानी भर जाता है, तो जो मेड़ या क्यारी बनाने में क्या ऐसे भरे हुए पानी में फायदा हो सकता है?
5: दोनों फसलों के लिए हमारे क्षेत्र में कभी भी समतल जमीन नहीं बल्कि 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंची उठी क्यारियों में ही खेती करनी चाहिए या बुवाई करनी चाहिए। क्यारियां ढलान की दिशा में बनाएं तथा ऐसा हो कि पानी उसमें से बह जाना चाहिए। हर 3 से 4 क्यारियों के बाद एक निकासी नाली अवश्य बनाएं और मिट्टी में अच्छी तरह सड़ी हुई खाद मिलाएं। अगर आपकी गोबर खाद आधी सड़ी हुई है तो इससे क्या होगा कि उसमें जो हम जीवाणु उकठा की बात कर रहे थे वो उसका स्रोत बन जाता है।
4: अच्छा, एक रोग जिसमें कि हल्दी की पत्तियों पर भूरे धब्बे पड़कर वो सूख जाती है, तो ये कौन सी बीमारी है और कौन सी दवा का उपयोग इसमें वो कर सकते हैं?
5: इसे हम पर्णचित्ती रोग बोलते हैं। पहले निचली पत्तियों पर छोटे भूरे काले धब्बे पीले घेरे में दिखाई देंगे
4: जी।
5: और फिर उसके बाद उनकी पत्ती की नोक से वो सूखने लगेंगे। इसकी वजह से 15-20% तक उपज घट सकती है। नियंत्रण के लिए क्लोरोथैलोनिल 75% वेटेबल पाउडर का उपयोग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में कर सकते हैं
4: जी।
5: इसके अलावा आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% वेटेबल पाउडर है उसको आप 3 ग्राम प्रति लीटर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा समस्या गंभीर दिख रही है तो आप एक मिक्सचर यूज करिए, मिश्रण यूज करिए जिसमें टेबोनाकोनेजोल और ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन का एक मिश्रण आता है, वो आप 0.4 ग्राम प्रति लीटर के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं और दोबारा 15 दिन बाद फिर से छिड़काव करें।
4: आपने बीच में एक जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा का जिक्र किया था
5: जी,
4: क्या इसको बाजार से लेना जरूरी है, वे स्वयं बना सकते हैं?
5: देखिए, ये खुद से बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप जो उसका मटेरियल है वो आप 0.5 किलो 1 किलो बाजार से लेके आ सकते हैं और उसको लाने के बाद आप अपने यहाँ जो आपकी सड़ी हुई खाद आपने बना रखी है उसमें अच्छे से उसको मिश्रित कर दीजिए और मिश्रित करने के बाद उसको 3 से 4 दिन में किसी डंडे की मदद से अच्छे से हिलाते रहिए। और इससे क्या होगा कि 15 से 20 दिन में 25 दिन में आपकी खाद ट्राइकोडर्मा के साथ बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी और इसके बाद जब आप बुवाई कर रहे हो उस समय खेत में आप क्यारियों में या फिर पूरे खेत में आप 2 से 3 क्विंटल 4 क्विंटल तक आप ट्राइकोडर्मा या सड़ी हुई खाद को डाल सकते हैं
4: जी। जड़ों में एक व्याधि होती है सूत्रकृमि जिसको कि नेमाटोड बोलते हैं, तो इसके संबंध में आपसे मार्गदर्शन चाहेंगे।
5: अगर खेतों में पानी की समस्या है या फिर पानी नहीं इकट्ठा हो रहा आपके खेत में तो उन जगहों पे मेलोडोगाइनी इनकॉग्निटा जो कि एक जड़ गांठ सूत्रकृमि है उसका बहुत ज्यादा प्रकोप देखने को मिला। यहीं पे करीबन जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर खमरिया का क्षेत्र है जहाँ पे मूंग लगी हुई थी, वहां से एक किसान भाई ने हमसे संपर्क किया और उनका पूरा का पूरा खेत केवल जड़ गांठ सूत्रकृमि के प्रभाव से नष्ट हो गया। उसी तरीके से जब आप हल्दी और अदरक की खेती करते हैं वहां पे ये प्रत्यक्ष रूप से ना काम करके यह क्या करता है कि आपकी जो जड़ है या फिर कंद है उसमें छोटे छोटे छिद्र कर देगा और उन छिद्रों के माध्यम से जो आपका पीथियम है, फ्यूजेरियम है और जो जीवाणु उकठा है यह पौधे के अंदर चले जाएंगे और आपका पौधा समाप्त हो जाएगा। कोशिश करिए कि आपके खेत में जिस समय भी ये समस्या दिखे उस समय कम से कम 4 से 5 दिन तक खेत को पूरी तरीके से पानी से भर के रखें
4: जी।
5: दूसरा कोशिश करिए कि आपकी जो मेड़ है उस मेड़ में गेंदा है उस गेंदे को लगाएं और अगर हो सके तो एक सीजन में आप पूरे खेत में गेंदे की खेती करें। गेंदा एक बहुत ही अच्छा जड़ गांठ सूत्रकृमि का प्रबंधन करने का उपचार है।
4: शुरुआत में आपने एक जो गंभीर रोग है फसलों का उकठा, इसके बारे में जिक्र किया था, तो ये यदि दिखता है 1-2 पौधों में भी तो क्या कदम उठाने होंगे?
5: अगर आप खेत में जा रहे हैं और आपको दिख रहा है कि आपकी किसी भी पौधे की पत्तियां अचानक से पीली पड़ रही हैं, तो आप उसको पूरी तरह उखाड़ लें और पौधे को कंद सहित और आसपास की 30 सेंटीमीटर की मिट्टी के साथ निकालें, खेत के बाहर लेकर जाएं और उसको जला दें अथवा क्या करें कि खेत से दूर कहीं पे एक छोटा सा गड्ढा बना के उसको उसके अंदर दबा देना चाहिए
4: जी।
5: इसको कभी भी नाली में या फिर मेड़ पे कभी भी नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि जो भी इसके स्पोर्स होते हैं वो पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं
4: जी।
5: जिस क्षेत्र में आपको ये समस्या दिखी थी एक पौधे के आसपास के एरिया में वहां पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसको आप 3 ग्राम प्रति लीटर में घोल बनाकर वहां पे डाल दें
4: जी।
5: इसके अलावा आप ब्लीचिंग पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं
4: जी। कौन सी किस्में और बीमारियों के प्रति जो प्रतिरोधी रहे या सहनशील रहे अपनाएं हमारे किसान बहन भाई कि उनका लाभ कम ना होने पाए?
5: हल्दी के लिए आप राजेंद्र सोनिया, सुवर्णा और सुरोमा जैसी किस्मों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें पर्णचित्ती एवं कंद सड़न के प्रति सामान्य देसी बीज से बेहतर सहनशीलता दिखती है। इसके अलावा जब आप अदरक की बात करते हैं तो अदरक के लिए सुप्रभा और सुरुचि किस्में कंद सड़न के मुकाबले तुलनात्मक रूप से बहुत बेहतर हैं। हालांकि जीवाणु उकठा के लिए कोई भी अभी तक कोई भी किस्म ऐसी नहीं मिली है जो कि पूर्ण रूप से प्रतिरोधी हो।
4: वेदांत जी, एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आपसे चाहेंगे कि भंडारण के समय कंद को कैसे बचाएं।
5: जब हमारा कंद जो है वो परिपक्व हो जाए, हमें तभी खुदाई करें और कोशिश करें कि हमारे जो कंद हम निकाल रहे हैं मिट्टी के अंदर से, उनमें किसी भी तरीके की चोट न पहुंचे। इसके अलावा कटाई के बाद 2-3 दिन तक उन्हें धूप नहीं लगने देना चाहिए, उन्हें छाया में सुखाएं और अगले सीजन के बीज भंडारण हेतु एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डेफ्योनोकैनाजोल का मिश्रण उपयोग करें 1 ml प्रति लीटर के माध्यम से और उससे उपचारित कर ही भंडारित करें। इसको भंडारण करने के लिए आप छोटा सा गड्ढा बनाइए, वहां पे सूखी रेत या भूसे की परत पर भंडारण करें और कभी भी इसको बंद डब्बों में ना रखें और सड़ा कंद अगर आपको दिखता है बीच बीच में देखते रहें तो उसको तुरंत बाहर निकालें।
4: जहां तक हल्दी और हम अदरक की बात कर रहे हैं, इसकी खेती में क्या सावधानी हमारे किसान बहन भाई बरतें कि उनको नुकसान ना हो?
5: आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पिछले साल का संक्रमित खेत है उस खेत का बीज आप कभी भी अगले साल उपयोग ना करें
4: जी।
5: उसके अलावा वर्षों तक कभी भी हमें एक ही तरीके की फसल 2-3 साल 4 साल 5 साल नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा जो समतल या नीची जमीन है वहां पर बुवाई करना या ज्यादा सिंचाई करना, यह जीवाणु उकठा और पीथियम को आकर्षित करता है, तो हमें बहुत निचले क्षेत्रों में इसकी खेती नहीं

0: करनी चाहिए।
1: जी, ये तो आपने बताया कि क्या सावधानी बरतें, मतलब कि क्या नहीं करना है, अब करना क्या है जब हम इस समय खेती की बात करें तो
0: अपने खेत का निरीक्षण करते रहें। अगर आपके खेत में 2-3 दिन तक लगातार बहुत तेजी से पानी भर रहा है तो आप कोशिश करें कि क्यारी बनाकर या किसी भी तरीके से उस पानी को बाहर निकालने की कोशिश करें। और अगर आपको लग रहा है कि किसी क्षेत्र में बीमारी है तो आप उस जगह, अगर आप जूता पहन के चप्पल पहन के जा रहे हैं तो आप सेम उसी जूते चप्पल को पहन के किसी स्वस्थ पौधे की तरफ ना जाएं। इसके अलावा 2-3 दिनों के अंदर खेत में घूमकर देखें कि कोई पौधा अगर अचानक मुरझा रहा है या पीला तो नहीं पड़ रहा है, तो उसे तुरंत निकालें और उसे जला दें।
1: जी, हमारे किसान बहन भाई को यदि समझ में नहीं आती है कि बीमारियां कौन सी है या पहचान नहीं पाते हैं, लक्षण नहीं समझ पाते हैं, तो वो क्या करें, किसकी मदद लें?
0: तो आप प्रभावित पौधे कंद को और आसपास की मिट्टी को सुबह इकट्ठा करें और अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या पादप रोग विज्ञान विभाग जबलपुर ले जाएं। सही निदान के बिना गलत दवा पर पैसा बर्बाद हो सकता है।
1: विदान जी, आपने मार्गदर्शन दिया है हल्दी और अदरक में पौध सुरक्षा के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: आज तो पार्टी चाहिए,
3: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तो भैया हरे, देखो विशेषज्ञ भैया हरे जोन मार्गदर्शन दिए थे, अगर हम उनकी सलाह मान के कोई भी काम करत हैं, चाहे जोन हमारा वो क्षेत्र वो बनो हैं किसान वाणी, जहाँ से उतने किसान भैया हरे अपनी बतात हैं, सेवाएं देते हैं, उतने से उनकी अगर हम सेवाएं लेके भी कोई काम करत हैं खेती पाती को, तो ज़रूर सफल होते हैं और उत्पादन भी अच्छे होते हैं। एक अलावा देखो, आज हम एक और बात बते हैं। बात ऐसी है कि आज हमने बाहर देखी आसमान में मुतके तारे छिटके आए। अब देखो तनक तनक रात में हल्की ठंडक होने लगी, दिन लेकिन गर्म होने लगे, घाम तेज पड़त है। अब घाम तो तेज लग है पर अब सर्दियों के दिन आ जी हैं। अब देखने रातें बड़ी हुई हैं, दिन छोटे हुई हैं, जो सब कैसे होते है, जो सब जौन सूर्य है जौन पृथ्वी की परिक्रमा करत है वो के कारण होते है। एक के अलावा देखो, अंतरिक्ष में मुतकी ऐसी बातें हैं, ऐसे रहस्य हैं कि जिनकी खोजें चल रही हैं। अब अंतरिक्ष की बात हमें ऐसे याद आ गई, काहे कि जौन आज के दिन से ले कर 10 अक्टूबर तक अंतरिक्ष सप्ताह मना है। अब भाई ध्यान आई जब वाली बात, तो आप औरों के हम बताएं कि देखो अंतरिक्ष सप्ताह मने हैं। अब जो काय मने हैं, काय की देखो जौन पूर्व जौन ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में कितने रहस्य हैं, कितने उपग्रह हैं, कितने ग्रह हैं, सूर्य पृथ्वी की ओर चक्कर लगाते हैं, कितने कैसे दिन होत कैसे रातें होत हैं। और एक अलावा 4 अक्टूबर के ही 1957 में पहलो मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 को प्रक्षेपण भाव हतो, अंतरिक्ष की खोज करवे के काजे उते उपग्रह भेजो हतो, उते पता लगाओगा कि उते पानी है कि नहीं, हवा है कि नहीं, ये सब बातें काहे हम जिस सुनत रहते, हमारी मोड़ी पढ़ाते लिखाते तो हमें हम सुनत रहते कि जब का पढ़ रही है का नहीं पढ़ रही है। और तो हमने कही आप और भी तनक सी हम जानकारी दे दें कि अंतरिक्ष विज्ञान के कितने फायदे हैं और यह के लोगों के जागरूक करने हैं, तो एक बारे में बताने पड़े। युवाओं के रुचि बढ़ावे के काजे जौन हमारे पढ़वे वाले युवा हैं, जौन छात्र हैं, उन्हें विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित के प्रति रुझान बढ़ाने हैं, उनकी रुचि बढ़ाने हैं। यही से जौन जे अंतरिक्ष के जौन नए नए शोध हो रहे हैं, सब मोड़ा मोड़ियों का मन भी लगा थे कि खोज हो रही है तो कैसे खोज हो रही है, उतः का है, ये सब विषय की जानकारी के काजे जौन सप्ताह मनाओ जात है। एक के बाद देखो कई मुतकी ऐसी बातें हैं जौन अंतरिक्ष की बातें हैं जौन हमें पता नहीं रहे, पर जब हम समझते हैं तो हमें समझ में सुई आ जाते हैं कि उतने अंतरिक्ष में कोई निश्चित दिन नहीं हुए भैया, और उते पे जोन यात्री जात है ना, वे 90 मिनट में पृथ्वी के एक चक्कर पूरा कर पाते हैं एक परिक्रमा, और उते 16 बार सूर्य उदय होत और सूर्यास्त होत है। ऐसी मुतकी ऐसी बातें हैं जोन जानकारी देवे बारी हैं। पर देखो जानकारी बहुत सारी हैं, बातें भी बहुत सारी हैं, पर हम बातें करते रहे हैं तो आप और हम लोकगीत कब सुने हैं। तो देखो अब हम लोकगीत उम्दा सो है तनक लोक भजन सो हो जाए, काहे कि दिन भी ऐसे चल रहे हैं। तो द्वारका प्रसाद शर्मा भैया की आवाज़ में जो तनक पहले सुनो, फिर जोन मुत की बातें बची हम आप औरों से कर लें।

तो भैया रो देखो कितना उम्दा लोक भजन है। तो कृष्ण भगवान जी के ऊपर हम तो कहते हैं प्रभु की आराधना भक्ति कभों खाली नहीं जाए। अब देखो एक और बात बता दे, जो पहले वालों ने अब दमैया वारो गीत हमें मिठाई लाल चक्रवर्ती भैया ने गाओ हो तो वो हमने सुनवाओ। अब देखो बात इतनी सी आए कि आज तो हम पशु दिवस मना रहे हैं, अंतरिक्ष सप्ताह भी मना रहे हैं, तो हमें जो वन्य प्राणी हैं उनको संरक्षण करने हैं, पशुओं की मदद करने हैं। और जब भी देखें हम कि उन्हें कछु दिक्कत है, परेशानी है, उन्हें कछु उनके शरीर के नुकसान हो रहा है, तो उनकी सहायता जरूर करें। और देखो बातों बातों में टाइम सुई होगा, अब दो लाडली भौजी के विदा, तो सबके राम राम और जय जवान जय किसान।

0: अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुर्खियों में कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल से।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म कुदरत में। मजरू सुल्तानपुरी का गीत था और धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है सरस्वती चंद्र से। इस गीत को आवाज़ दी है मुकेश ने, इंदिवर का गीत है और संगीत निर्देशन है कल्याण जी आनंद जी का।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश को सरस्वती चंद्र फिल्म में इंदिवर का गीत था और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में अंगूर फिल्म का नगमा, जिसको लिखा है गुलजार ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सागर फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

शतौलिया पानन ले रहे थे फिल्म संगीत का। मीडियम वेब डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी सागर का है।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वृहत योजना की जो आपकी घर की छत को ही आपका बिजली घर बना देगी। योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस क्रांतिकारी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फरवरी सन 2024 में किया गया।
1: 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी।
0: कभी एक सपना था कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, आज लाखों परिवार इस सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देश के 50 लाख से अधिक परिवार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से प्रकाशित हो रहे हैं। अब हर घर की छत पर सिर्फ सोलर पैनल नहीं बल्कि बचत, स्वावलंबन और एक दीप्तिमान भविष्य की उम्मीद रोशन हो रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से सतत विकास के लक्ष्यों में से एक स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिल रही है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं सागर डिप्टी कलेक्टर रजत सोनी जी। आप नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के OIC भी हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है।
2: यह केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देना है, जिसमें मुख्य तौर पर जो सोलर एनर्जी है उसको बढ़ावा देते हुए और घरेलू उपयोग में रेसिडेंशियल मतलब खुद की छत पर ही खुद की बिजली का उत्पादन करना। मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्लांट लगाए जा रहे हैं। पहला प्लांट 1 किलोवाट का है जिनको कम ऊर्जा की आवश्यकता है, लगभग 100 यूनिट प्रति माह उनके लिए है, जिसमें 30,000 रुपए तक सब्सिडी मिल जाती है। दूसरा प्लांट जो है वो 2 किलोवाट का रहेगा जिसमें 60,000 रुपए तक की सब्सिडी है और लगभग ऊर्जा का उत्पादन 200 यूनिट प्रति माह। और तीसरा जो प्लांट रहेगा वह 3 किलोवाट का है जिसमें 78,000 रुपए तक सब्सिडी मिल जाती है और इसकी जो उत्पादन क्षमता होती है वह 300 यूनिट तक होती है, जो एक बड़े घर को या बड़े परिवार को भी कवर करती है।
0: सोलर प्लांट लगवाने के लिए किस तरह की जगह की आवश्यकता होती है? कोई विशेष स्थान होता है जहां ये लगाया जा सकता है?
2: नहीं, इसके लिए विशेष कोई स्थान की आवश्यकता नहीं है। बस छत पर जो दक्षिण पूर्व का कोना होता है उसमें लगभग 12x12 या थोड़ा बड़ा प्लांट है तो 16x16 की छत पर भी आसानी से लगाया जा सकता है।
0: जी, अब बात आती है आवेदन की, तो आवेदन की प्रक्रिया को हमें समझाइए।
2: इसके लिए आवेदन जो प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह योजना का पोर्टल है उस पर आसानी से आवेदन किया जा सकता है।
0: इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए?
2: इसमें विशेष कोई पात्रता मापदंड नहीं है। भारत के सभी नागरिक इसके लिए पात्र हैं और जो सरकार का लक्ष्य है वह 1 करोड़ हितग्राहियों को इससे जोड़ना है और उनको सब्सिडी उपलब्ध कराना है। और एक बात और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें केवल 5% की ब्याज दर पर इसमें लोन भी उपलब्ध हो जाता है। काफी लंबे समय के लिए लोन रहता है, जो उसकी किस्त होती है इंस्टॉलमेंट होता है वो भी बहुत कम होता है, मुश्किल से 1,000 से 2,000 रुपए के बीच में।
0: ये योजना हमें आत्मनिर्भर तो बना ही रही है, अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से ये योजना हमारी आय का जरिया भी बन सकती है।
2: स्वाभाविक तौर पर जो अक्टूबर मंथ में इसका पूरा एक कैलकुलेशन होता है, एक ऐप से आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं और अक्टूबर मंथ में पूरा कैलकुलेशन होता है। यदि आपकी 1000 यूनिट बिजली एक्सेस में बन जाती है तो वह MPV आपसे लगभग 2.80 से 3 रुपीज के बीच में आपसे उसको रेट दे देती है आपको।
0: तो इस प्रक्रिया में जो बिजली उत्पादन हम उपभोग नहीं करते हैं उसका पैसा कहाँ दिया जाता है? क्या हितग्राही को नगद दिया जाता है या बिल में ही उसे समायोजित किया जाता है?
2: यह उनके बिल में ही समायोजित हो जाता है क्योंकि MPV का मीटर घर पर लगा होता है तो उसका जो नॉमिनल चार्ज होता है, मीटर चार्ज जो होता है, वो तो सोलर हो ना हो आपको देना ही पड़ता है, तो उसको भी उसमें समायोजित कर लिया जाता है। मीटर चार्ज को भी इसमें समायोजित कर लिया जाता है तो आपका बिल लगभग 0 भी हो सकता है।
0: अच्छा, यानी इस योजना का लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का कनेक्शन लेना भी जरूरी है?
2: मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का कनेक्शन होना अनिवार्य है। उसमें जो स्मार्ट मीटर होता है उसके माध्यम से ही पूरी प्रक्रिया संचालित होती है। बस इसमें 2 ऑप्शन और होते हैं, एक ऑन ग्रिड एक ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड में MPV से ही पूरा संचालित होता है और ऑफ ग्रिड में इन्वर्टर और बैटरी के माध्यम से भी आप अपनी ऊर्जा को अपने घर में ही संचित कर सकते हैं।
0: अंत में इस योजना के बारे में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं इस योजना को लेकर एलन मस्क का एक कथन कहना चाहूंगा कि सूर्य कभी बिल नहीं देता और यह जो ऊर्जा है यह बहुत सस्टेनेबल है। आप आज निवेश करेंगे और इसकी आगामी आपको कई पीढ़ियों तक इसका लाभ मिलेगा।
0: धन्यवाद आपका। श्रोताओं, अभी आपने जाना कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, आवेदन कैसे किया जाता है, और अब हम जानेंगे सोलर पैनल की गुणवत्ता कैसी होती है, उपभोक्ताओं को किन सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना है, इनकी वारंटी, मॉनिटरिंग और रखरखाव आदि के बारे में। और ये जानकारी हमें दे रहे हैं लोकेंद्र गोयल जी, आप असिस्टेंट हैं मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड सागर में।
3: एक उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना संयंत्र लगवाने के लिए हमारे विभाग से जो रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं उनसे संपर्क करना चाहिए और अच्छी ब्रांडेड कंपनी के संयंत्र को ही लगवाना चाहिए। मार्केट में आ रहे सस्ते लो क्वालिटी के संयंत्र को नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि ये संयंत्र लॉन्ग लाइफ के लिए लग रहा है और इसमें ब्रांडेड कंपनी के संयंत्र में सोलर पैनल 25 साल की गारंटी के लिए आता है, उसमें लगने वाला इन्वर्टर 8 साल की गारंटी के लिए आता है, ब्रांडेड कंपनी की वायरिंग लाइफ टाइम की गारंटी के लिए आता है, इसमें लगने वाला स्ट्रक्चर लाइफ टाइम की गारंटी वाला भी आता है। तो उपभोक्ता को चाहिए अच्छे कंपनी का संयंत्र लगवाएं, जिससे उसका आपको रिजल्ट भी भविष्य में अच्छा मिलेगा। सोलर पैनल ब्रांडेड कंपनी का 25 साल की वारंटी के साथ मार्केट में उपलब्ध है। इसमें सभी ब्रांडेड कंपनियों ने अपने एक ऐप बनाए हुए हैं, सामान्यतः हर वर्ग का व्यक्ति मोबाइल को उपयोग कर रहा है। जिस भी इस कंपनी का आपने अपने घर पर वेंडर से मिलकर संयंत्र स्थापित किया है, उसका ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप को आप सोलर संयंत्र के इन्वर्टर के पास ब्लूटूथ चालू कर उसका जनरेशन देख सकते हैं। कहीं भी दुनिया में रहें, अपने मोबाइल में इंटरनेट चालू करके उसकी रीडिंग वहीं बैठे बैठे पूरी जानकारी पर डे की, पर मिनट की, पर मंथ की, पर ईयर की ले सकते हैं। इसमें सिस्टम के बारे में, आपको डिस्काम में जा रही लाइट के बारे में, घर पर उपयोग होने वाली लाइट के बारे में पूरा आपको अपने मोबाइल पर डाटा प्रतिदिन दिखता है। अभी वर्तमान में जो सोलर पैनल मार्केट में उपलब्ध हैं वो डिस्कॉम धातु से बनाए हुए पैनल हैं, बहुत सेंसर पैनल हैं। सुबह 6 बजे जब सूर्यनारायण देव का उदय नहीं होता, उसके पहले ही आप देखिए सिस्टम में, इन्वर्टर में, अपने मोबाइल पे देखिए, जनरेशन प्रारंभ हो जाता है। इसी तरह से शाम को भी, सूर्यास्त के बाद भी उजाला जब रहता है वायुमंडल में, उस उजाले में भी सोलर पैनल काम करता है। या यूं कहे साल भर में इसका एवरेज जितने दिन भी कम धूप भी होती है तब भी जनरेशन पर्याप्त होता है और उपभोक्ता को पर्याप्त जनरेशन और इसका लाभ मिलता है। हमारे विभाग का एक स्लोगन भी है, सौर उजला से देश का विकास, गांव गांव बिजली, घर घर प्रकाश।
0: गांव गांव बिजली, घर घर प्रकाश, ये स्लोगन है ऊर्जा विभाग का। अब हम बात कर रहे हैं इस योजना के हितग्राहियों से और सुनते हैं सागर शहर के क्षेत्र बड़ा बाजार निवासी अनुश्री जैन को।
4: पहले मैं पेट्रोल वाली गाड़ी चलाती थी, उसके बाद जब ये सिस्टम लगाया तो मुझे लगा कि मुझे दूसरी ई वाहन का यूज करना चाहिए, तो मैंने एक ई वाहन खरीदा और मेरा बिल फिर भी जीरो है और मेरा पेट्रोल का खर्चा भी बच रहा है। मैं सबको यही सलाह दूंगी कि सभी ये सिस्टम लगवाएं और अपने सारे इक्विपमेंट्स को ई में कन्वर्ट करें, जिससे आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे और एनवायरमेंट के लिए भी ये सिस्टम फ्रेंडली है। मैंने 2 साल पहले ये सिस्टम लगवाया था। मैंने 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाया है जिसमें मुझे 78,000 की सब्सिडी भी 2 महीने बाद मिल गई थी।
0: और अब सुनिए इस योजना के हितग्राही प्रोफेसर गिरीश मोहन दुबे को।
5: मैं गिरीश मोहन दुबे, डॉक्टर हरी सिंह और विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विभाग से मैं प्रोफेसर के पद से रिटायर हुआ हूँ। जब मैं पहली बार अपने एक मित्र के यहाँ गया और मैंने वहाँ सोलर प्लांट देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि क्यों ना मैं अपने घर में भी सोलर प्लांट लगाऊं। और इस सोलर प्लांट को लगभग 3 साल हो गए हैं। कंपनी से सीधे बात की थी और कंपनी ने सब्सिडी जो है उसको उसमें इंक्लूड करते हुए मुझे 4 KV का प्लांट लगाया था। इस पर मैंने अभी तक 1 पैसा भी खर्च नहीं किया है, 3 साल से अधिक अवधि होने को है, क्योंकि उनसे मेरा 3 महीने में सफाई का एग्रीमेंट है। मैंने भी स्वयं अपने थोड़े से व्यय से उस पर इस तरह की व्यवस्था की है कि साप्ताहिक रूप से मैं उस पैनल को साफ करता हूं ताकि जितना उसकी कैपेसिटी है वह मैक्सिमम हमारे पास प्राप्त हो सके। मैं कहूंगा ये प्लांट जो है सभी को लगाना चाहिए और इससे जो सरकारी ऊर्जा है उसका भी व्यय कम हुआ है। मैंने कम से कम 8 से 10 ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मेरे अनुभव से या मेरे सोलर प्लांट से प्रेरित होकर अपने घर में लगाया है।
0: और अब हितग्राही राजकुमारी जैन के अनुभव।
6: ऊर्जा सिस्टम से बिजली में हमको पूर्णतः लाभ मिला है, हमारा 0 बिल आता है, सभी सिस्टम हमारे यहाँ काम करते हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे जल्दी से जल्दी आप लोग भी इस योजना से जुड़ें।
0: श्रोताओं, विशेषज्ञों और हितग्राहियों की सकारात्मक राय इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत को हरित और अधिक ऊर्जा कुशल भविष्य की ओर आलोकित कर रही है। आइए हम सब मिलकर इस सुनहरे सफर का हिस्सा बने और सशक्त भारत के विकास की डगर पर कदम बढ़ाएं। डगर विकास की सूत्रधार अदिति जैन, प्रस्तुति सुब्रता यादव, योगदान आकाशवाणी सागर।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की, प्रस्तुति आकाशवाणी सागर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए गुलदस्ता कार्यक्रम, प्रस्तुति है श्याम टहलानी की।

कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले सभी श्रोताओं को श्याम टहलानी का नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। डायबिटीज़ होने से रोकें, अपने शरीर में खून से कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज पहुंचाने के लिए इंसुलिन हार्मोन बनता है। जब यह हार्मोन ऐसा नहीं कर पाता तब उसे इंसुलिन का अप्रभावी होना कहते हैं। अध्ययनों में यह पाया गया है कि डायबिटीज़ के कई मरीज जो इंसुलिन के अप्रभावी होने से पीड़ित हैं, ऐसे मरीज बिना दवा के भी डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। इंसुलिन के अप्रभावी होने के कारण अकर्मण्यता यानी शारीरिक श्रम का अभाव, अधिक भोजन करना या भरपेट भोजन करना, भोजन में कार्बोहाइड्रेट वसा की अधिकता, रक्त में शुगर की अधिकता, बढ़ी हुई उम्र या अनुवांशिकता, तनाव, जलन, चिंता, घुटन, भय, बार बार मीठे पदार्थों का सेवन है। इन कारणों को दूर करने के लिए इन नियमों का पालन कर इंसुलिन को पुनः प्रभावी बनाया जा सकता है। नियमित व्यायाम, योग, तली पदार्थ न खाना, वजन को कम करना, मोटा अनाज खाना, पेट का मोटापा घटाना, तनाव पर नियंत्रण, मीठे का कम से कम सेवन, दिन भर के भोजन को कई भागों में खाना, प्रोटीन युक्त पदार्थ की मात्रा भोजन में बढ़ाना। हर डायबिटीज मरीज के पास ग्लूकोमीटर रहना चाहिए, जिससे नियमित जांच कर अपने खान पान और एक्सरसाइज की सही प्लानिंग कर चिकित्सीय सलाह से दवा की मात्रा पुनः निर्धारित कर सकते हैं। खून में शुगर की निर्धारित मात्रा पर निगाह अवश्य रखें, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया यानी खून में शुगर कम की स्थिति भी न बने। हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण यानी कमजोरी, पसीना आने पर तुरंत मीठी चीज़ खानी पड़ती है, नहीं तो बेहोशी जैसी गंभीर जानलेवा स्थिति बन सकती है। आइए अब सुनते हैं ये गीत।

चेरी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसके सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। किसी भी तरह की बेरीज हेल्थ के लिए अच्छी है। आइए अब सुनते हैं यह गीत।

इसी के साथ गुलदस्ता कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप गुलदस्ता कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तुति थी श्याम टहलानी की। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।

0: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हुर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: There are countries who are emerging.
3: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 3 लाख घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
4: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3 लाख मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
1: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
5: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
1: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
7: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 0 FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
8: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
7: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
9: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
7: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
10: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहिन ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: Good evening. This is Akashwani. I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers, highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agendas. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan hands over 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh, lays foundation stone for country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology. Campaigning ends for by-polls to 5 assembly seats across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and a Lok Sabha constituency in Assam, voting on Tuesday. Iran says Strait of Hormuz to remain closed until US meets its 7 conditions, plans to expand range of missiles. And Asian Games 2026 draw to a close in Japan in a dazzling ceremony. India sign off in 4th place with 85 medals comprising 21 gold. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said it is marked by the repositioning of the United States, the rise of China and growing global interdependence.
12: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose.

0: थे वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित रूपक मन के मौसम उम्र के साथ आलेख डॉक्टर बानी आनंद प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक मन के मौसम उम्र के साथ।
1: सूरज हर सुबह लगभग एक ही जगह से उगता है, लेकिन हर उम्र में उसकी रोशनी एक जैसी नहीं लगती। कभी वही सुबह एक नई शुरुआत लगती है, तो कभी वही सुबह एक बहुत लंबा दिन।
2: उम्र बढ़ती है तो शरीर में बदलाव दिखाई देते हैं, बालों में सफेदी, चाल में धीमापन, चश्मे का नंबर, दवाइयों की संख्या, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिन्हें कोई एक्सरे नहीं पकड़ता।
1: काम से रिटायर होने के बाद खाली हुआ समय, बच्चों के घर से चले जाने के बाद खाली हुआ कमरा, जीवन साथी के जाने के बाद खाली हुई कुर्सी, और धीरे धीरे कम होती बातचीत के बीच मन में पैदा हुई एक खामोशी।
2: हम अक्सर पूछते हैं उम्र कितनी हो गई, लेकिन शायद एक और सवाल पूछा जाना चाहिए, उम्र के इस पड़ाव पर मन कैसा है? क्योंकि उम्र बढ़ना केवल शरीर की कहानी नहीं है,
1: ये रिश्तों की कहानी है, भूमिकाओं की कहानी है, पहचान की कहानी है, और साथ ही बिछोह की कहानी है, और इन सबसे बढ़कर ये सुने जाने की कहानी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में हम इसी अनकहे संसार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
2: दिल्ली स्थित एक प्राइवेट ओल्ड एज होम से कुछ आवाजें और कुछ आवाजें सुदूर बिहार से।
3: मेरा नाम आशुतोष मुखर्जी, इलाहाबाद से आए हैं। हम इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में ऑफिसर थे, रिटायर हो गए। म्यूजिक इज माय हॉबी, बोंगो कॉन्गो। हमारा पूरा ऑर्केस्ट्रा था वहाँ। इलाहाबाद में अब कोई है ही नहीं मेरा। हमारे दो डॉटर्स हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं। लड़कियों की शादी हो गई, वाइफ डेथ हो गई।
4: माय नेम इज कृष्णा विश्वास।

0: I used to live with my daughter, but she has expired. I came here. I feel very lonely. Generally, I like to watch TV and like to storybook.
1: मेरा नाम है विजेंद्र सिंह शेखावत, आर्मी श्री रिटायरमेंट में चौधर से, और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। उनकी देख रेख जैसे रात बिरात हारी बीमारी होती है, 10 का मेरे स्टाफ है। नहीं ऐसे को नहीं, सभी आते हैं, एक दो दिन तो उनका मन नहीं लगता, फिर यहाँ पर माहौल में डल जाते, सब खुश रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, यहाँ पर टीवी देखते हैं, न्यूज पेपर देखते हैं, यहाँ कीर्तन भाव होते हैं हफ्ता में एक दिन, कॉलेज के स्कूल के स्टूडेंट आते हैं, वहाँ डांस करते हैं, तमोला खिलाते हैं, अंताक्षरी करते हैं, गाना सुनाते हैं, तो उनका अच्छा टाइम पास हो जाता है।
2: मेरा नाम बेबी सिन्हा है, मैं खगड़िया चित्रकूट नगर डीएवी रोड से हूँ। मैं यहाँ पर अपने लड़का के नाम से स्कूल खोली हुई हूँ। मैं अकेले अपने घर में रहती हूँ। स्कूल खोलने का मकसद मेरा यही था कि बच्चे के बीच में रहूँगी, मैं खुश रहूँगी।
3: मेरा नाम श्यामा कांति सिन्हा है, मेरी उम्र 69 बरस है। मैं बिहार शरीफ में रहती हूँ, अपने पति के साथ अकेले। मैं पहले सर्विस करती थी, अब मैं रिटायर हो गई हूँ, अकेले दोनों रहती हूँ। कभी कभी बहुत मुश्किल होती है, गिर जाती हूँ मैं भी, मेरा पति भी। पूरे दिन अकेले काटती हूँ, पेपर पढ़ती हूँ, कभी मोबाइल देखती हूँ। मेरे बच्चे हैं जो दूर में रहती हैं, दो बेटियाँ, उनको आना भी मुश्किल है। मैं सोचो के कभी कभी रोना आता है, रोते रहती हूँ।
4: धुंधले दर्पण में गालों के अरुणाइयां, अपनी आँखों को दिखला के चलता रहा। उम्र के उंगलियां दस्तखत कर गई, मैं भुलावे का उबटन ही मलता रहा। कौन से रास्ते जाने किस मोड़ पर, कब बिछड़ कर मेरा पाकपन रह गया। पत्ते झरने लगे, बूढ़ा बरगद हुआ, बस गई उम्र का आकलन रह गया। पत्ते झरने लगे, बूढ़ा बरगद हुआ, पत्ते झरने लगे, बूढ़ा बरगद हुआ।
5: भारत को लंबे समय तक युवा देश के रूप में देखा गया, लेकिन अब भारत की जनसंख्या की तस्वीर बदल रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की एल्डरली इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी का हिस्सा 2021 में लगभग 10.1% अनुमानित था, और 2031 में 13.1% तक पहुँचने का अनुमान लगाया गया था।
6: और इससे आगे की तस्वीर देखें तो UNFPA की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 2022 के 10.5% से बढ़कर 2050 में 20.8% होने का अनुमान है। यानी आने वाले दशकों में भारत में हर 5 लोगों में लगभग एक व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो सकता है।
5: ये सिर्फ जनसंख्या का बदलाव नहीं है, ये परिवार की संरचना बदलेगा, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत बदलेगा, सामाजिक सुरक्षा की जरूरत बदलेगा, और मानसिक स्वास्थ्य की हमारी समझ को भी बदलना होगा। क्योंकि सवाल ये नहीं कि हम कितने लोगों को लंबी जिंदगी दे पाएंगे, सवाल ये भी है कि क्या हम उस लंबी जिंदगी को अर्थपूर्ण, सम्मानजनक और सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ बना पाएंगे। कई वर्षों तक भारत में और वर्तमान में दोहा कतर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में सेवाएं दे रहे डॉक्टर नवाब खान कहते हैं,
7: केयर सिस्टम है ना इंडिया में चेंज हो रहा है। पहले एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, वो अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में तब्दील हो रहा है। केयर टेकर्स थे पहले के कंपैरिजन में, कम हो रहे हैं एक्चुअली। दूसरा है कि जो चीजें उनके अंदर होती है, एंजाइटी है, जो लोनलीनेस है, जो फॉरगेटफुलनेस है, डिमेंशिया से रिलेटेड चीजें होती है, जो उनका लॉस है, जिससे लॉस ऑफ पार्टनर है, इस चीजों के लिए। तो बेसिकली होता क्या है कि इंसान जब हार जाता है तो उनका गुस्सा खुद की तरफ होने लगता है, लेकिन जब गुस्सा बाहर की तरफ होता है तो फिर वो फाइट की स्पिरिट में दिखता है, कि अपने राइट्स के लिए लड़ना, स्पेस के लिए लड़ना, अपने इमोशनल कनेक्टिविटी के लिए लड़ना, मतलब आई एम समथिंग, ये सेल्फ

0: हो जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी इसको फैमिली वाले अलग वे में ले लेते हैं कि अच्छा इस उम्र में इतना ईगो दिखा रहे हैं। ये एक ब्लेसिंग है एक्चुअली, जिसको फैमिली वाले को समझना ये चाहिए कि नहीं, स्टिल ही इज हैविंग फाइटिंग स्पिरिट, द लाइफ इज देयर। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप कितने साल तक जीते हैं, इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि इन सालों में जिंदगी कितनी थी, उस जिंदगी को भरने की जरूरत होती है एक्चुअली।
1: पूरी जिंदगी किसी व्यक्ति की पहचान कई भूमिकाओं से बनती है। कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, किसान, व्यापारी, गृहिणी, माता पिता, फिर एक दिन नौकरी या सेवा समाप्त होती है और उसके साथ सिर्फ वेतन या खुद की भूमिका ही नहीं ठहरती, कभी कभी दिनचर्या भी रुक जाती है। सहकर्मियों से रोज का मिलना रुकता है, निर्णय लेने की आदत बदलती है और व्यक्ति के मन में एक प्रश्न जन्म लेता है, अब मैं कौन हूं?
2: ये प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है। व्यक्ति को अपने जीवन में उद्देश्य, सामाजिक संबंध और अपनी भूमिका का एहसास भी चाहिए।
1: अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना एक ही बात नहीं है। कोई व्यक्ति परिवार के बीच भी रहकर भीतर से बहुत अकेला महसूस कर सकता है और कोई व्यक्ति अकेला रहकर भी अपने जीवन से संतुष्ट हो सकता है।
3: मेरा नाम दशरथ भगत है। मैं प्लस टू विद्यालय स्थानीय खगड़िया स्टेशन रोड से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं अभी अकेले घर में रहता हूँ। मेरी पत्नी शिक्षिका थी, 2013 में एक्सपायर कर गई। तीन बच्ची है, तीनों बच्ची शादी हो गई है। एक लड़का है, वह बीटेक करके यूपीएससी की तैयारी करता है, लेकिन घर में मैं अकेला रहता हूँ। अकेलापन तो अनुभव होता है लेकिन साथी लोग हैं, इसलिए हम लोग का समय बड़ी आसानी से कट जाता है। थोड़ा अध्यात्मिक होने के कारण और विभिन्न संस्था से जुड़े रहने के कारण मेरा पर्सनल लाइफ ठीक है। बुनियादी केंद्र में ये हम लोगों का एक मनोरंजन होता है। मैं खुश हूँ अपने लाइफ से।
1: WHO के अनुसार दुनिया में लगभग हर 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति लोनलीनेस का अनुभव करता है। वृद्ध लोगों में लगभग 11.8% लोनलीनेस का अनुमान दिया गया है। WHO ये भी रेखांकित करता है कि लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन का संबंध मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्गजीविटी से है। और सोशल आइसोलेशन इससे अलग अवधारणा है। यहाँ व्यक्ति के सामाजिक संपर्कों और रिश्तों की संख्या और गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो जाती है।
2: कभी कभी कितने लोग हैं ये समस्या नहीं है, बल्कि कितने लोग हैं जिनसे मन की बात की जा सकती है। यही वो जगह है जहाँ मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। डॉक्टर नवाब खान कहते हैं,
0: ये चीज जो स्टडीज से रिफ्लेक्ट हुई है, मैक्सिमम स्ट्रेस अपने पार्टनर के खोने से होता है, बाकी स्ट्रेस सब उसके नीचे आते हैं। इवन अगर जो लोग ओल्ड एज में रहते हैं, उनके दोस्त हैं और उनकी नजरों के सामने अगर कोई जाता है, दे फील वेरी वेरी सैड एंड बैड। अल्टीमेटली उनको ये फील होता है कि मेरा नंबर आ रहा है। जिस वक्त इंसान को ये फीलिंग होने लगे कि मेरा नंबर आ रहा है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है उसके पास, तो इनोवेशन खत्म हो जाते हैं, एक दो जील जो धीरे की होती है वो खत्म हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। कि हर कम्युनिटी में उम्र के साथ जो स्पेसिफिक चैलेंजेस है वो आते ही आते हैं। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कुछ कर ले, तब भी एक जो कम्युनिटी का रोल होता है, जो एक रिलेटिव का रोल होता है, जो एक दोस्तों का रोल होता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: भारत में पारिवारिक संरचना भी बदल रही है। माइग्रेशन बढ़ा है, शहरीकरण बढ़ा है, परिवार छोटे हुए हैं, बच्चे शिक्षा और रोजगार के लिए दूसरे शहरों या दूसरे देशों में चले जाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ सोशल सपोर्ट की आवश्यकता कम नहीं होती।
2: इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार जब वृद्ध लोग अपने वयस्क बच्चों के साथ नहीं रहते तो लिविंग अरेंजमेंट्स में जेंडर डिफरेंसेस दिखाई देते हैं।
1: यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। उम्र के बहुत आगे के पड़ावों पर विडोहुड और अकेलेपन का जोखिम महिलाओं में अधिक हो सकता है।
2: UNFPA की रिपोर्ट विशेष रूप से एजिंग के फेमिनाइजेशन की ओर ध्यान दिलाती है, यानी वृद्ध आबादी में महिलाओं का बढ़ता अनुपात और उनके साथ जुड़ी आर्थिक या सामाजिक वल्नरेबिलिटीज।
1: इसीलिए सीनियर सिटीजन्स को एक समान समूह मानकर नहीं देखा जा सकता। एक अकेले रहने वाले पुरुष का अनुभव अलग हो सकता है, महिला का अलग, ग्रामीण बुजुर्ग का अलग और शहर में अकेले रहने वाले वृद्ध का बिल्कुल ही अलग। और आर्थिक रूप से सुरक्षित व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अनुभव भी आर्थिक रूप से असुरक्षित व्यक्ति से बिल्कुल अलग हो सकता है। लंबे समय से भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर।
4: भारत में बुजुर्गों की मानसिक सेहत और इलाज से जुड़े आंकड़े गंभीर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज यानी IIPS के देश के सबसे बड़े सर्वे जो अब तक हुआ है, लॉन्जिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया यानी LASI LASI की रिपोर्ट के मुताबिक, और आपको बता दूं कि बुजुर्गों की मानसिक सेहत से जुड़े ये आंकड़े मुख्य रूप से LASI वेव 1 रिपोर्ट से लिए गए हैं। इन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 6 जनवरी 2021 को जारी किया था। ये आंकड़े देख लेने चाहिए, इससे हमें समस्या कितनी गंभीर है और कितना ज्यादा और काम किया जाना बाकी है इससे पता चलता है। तो आंकड़े इस तरह हैं कि भारत में लगभग 20% वरिष्ठ नागरिक 60 साल से जिनकी उम्र ज्यादा हो किसी न किसी तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्या या मनोरोग से जूझ रहे हैं। डिप्रेशन यानी अवसाद बुजुर्गों में ये आम समस्या हो गई है। आंकड़े देखें तो लगभग 41.7% बुजुर्गों ने किसी न किसी स्तर पर डिप्रेशन के लक्षणों की शिकायत की है, ये रिकॉर्ड में है। इसके अलावा डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी, भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 7.4 बुजुर्ग, ये संख्या बैठती है लगभग 88 लाख। महिलाओं में ये खतरा ज्यादा रहता है। बुजुर्ग पुरुषों के मुकाबले बुजुर्ग महिलाओं में मानसिक तनाव और डिप्रेशन की दर ज्यादा देखी गई है। इसकी जो खास वजह है वो एकाकीपन और आर्थिक निर्भरता है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों में अवसाद के लक्षण ज्यादा पाए गए हैं, क्योंकि वहां मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अभी अपेक्षा के हिसाब से कम है।
1: LASI के विश्लेषण में 75 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में प्रोबेबल मेजर डिप्रेशन की प्रेविलेंस 9.4% तक दर्ज हुई। 60 से 64 वर्ष में ये 8.3% थी।
2: एक और महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है। LASI में सिम्टम बेस्ड असेसमेंट से डिप्रेशन का स्तर सेल्फ रिपोर्टेड डायग्नोसिस की तुलना में कहीं अधिक पाया गया। इन दोनों आंकड़ों के बीच का अंतर हमें एक महत्वपूर्ण सवाल देता है। क्या मानसिक स्वास्थ्य की समस्या कम है या हम उसे पहचान कम रहे हैं? यही इस कार्यक्रम की केंद्रीय चिंता भी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को बीमारी मानकर ही नहीं देखता तो वो मदद लेने कैसे जाएगा?
1: और अगर परिवार हर उदासी को उम्र का असर है कहकर टाल देता है तो पहचान और उपचार की संभावना और कम हो जाती है। रवि पाराशर।
4: भारत में लगभग 8% बुजुर्ग ऐसे हैं जो गंभीर डिप्रेशन से पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें खुद इस बीमारी की जानकारी नहीं है। ये भी एक गंभीर बात है। इसकी जो खास वजह है वो सामाजिक संकोच है। वो ये बताना नहीं चाहते दूसरों को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, कि वे उन्हें कोई मानसिक समस्या है। एक और बड़ी वजह रिपोर्ट में पाई गई है कि मानसिक सेहत की जांच करने वाले और इलाज करने वाले डॉक्टरों की अभी कमी है। तो इस दिशा में सरकार काम कर रही है और लगातार काम जारी रहेगा, ऐसा मुझे अपने अनुभव के आधार पर लगता है।
2: उम्र बढ़ने के साथ मानसिक स्वास्थ्य को केवल मानसिक बीमारी के संदर्भ में देखना भी अधूरा होगा। उम्र के साथ साथ फिजिकल लिमिटेशंस भी बढ़ती हैं। 60 प्लस के लोगों में लगभग 23.8% को कम से कम एक एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में लिमिटेशन और लगभग 48% को इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में कम से कम एक लिमिटेशन दर्ज की गई है।
1: अब जरा इसे एम्फैटिकली यानी मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझते हैं। जब किसी व्यक्ति को रोजमर्रा के कामों के लिए दूसरे की मदद चाहिए, जब चलने फिरने की स्वतंत्रता कम हो, जब सुनने या देखने में कठिनाई हो, जब दर्द लगातार साथ हो, तो सिर्फ शरीर नहीं बदलता, व्यक्ति की ऑटोनॉमी, कॉन्फिडेंस और सोशल पार्टिसिपेशन भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर बात करते हुए फिजिकल हेल्थ, डिसेबिलिटी और फंक्शनल इंडिपेंडेंस को अलग नहीं किया जा सकता। डॉक्टर नवाब खान।
0: बुजुर्गों में एक उम्र के बाद सुनने की जो ताकत होती है थोड़ी कम हो जाती है, कभी कभी विजन पे असर हो जाता है, और आप हम लोग ये सब जानते हैं कि उम्र के साथ मेमोरी पे भी असर पड़ता है। सब पे ना हो, लेकिन एक मेजर पॉपुलेशन पे ऐसा काम होता है। जब आपके सुनने की, देखने की, याद करने की क्षमता में कुछ चेंजेस हो जाए, तो फिर ट्रस्ट का इश्यू आता है कि किस पे ट्रस्ट करें। कभी कभी आपकी मेमोरी आपका साथ नहीं दे रही होती, तो मेमोरी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपने खाना खा लिया है या नाश्ता कर लिया है, तो फिर आपको याद भी नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, प्रॉपर चैट की जरूरत होती है, तो प्रॉपर टीम की जरूरत होती है। और इस हालत में बुजुर्गों को खुद अपनी मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी होती है। जैसे कुछ चीजें आप रखिए फिर भूल जाते हैं, या किसी ने कुछ बात कही तो हमको शक हो ऐसे शायद ये मेरे बारे में बोल रहा है। दे स्टार्ट ओवर हियरिंग एवरीथिंग, दे स्टार्ट रेफरिंग देमसेल्फ फॉर एवरीथिंग, जो पेनफुल हो जाता है बात। और ये जेंडर से एक्चुअली चेंज नहीं होता है, दोनों जेंडर के लिए इक्वली इन चीजें एप्लीकेबल होती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये बेसिकली आपके कॉग्निशन मतलब थिंकिंग पैटर्न, उससे रिलेटेड इमोशन और उससे रिलेटेड बिहेवियर, इन तीनों चीजों को एक लॉजिकल वे में रिस्ट्रक्चर करने का तरीका है। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर हैं, इस जगह पे हैं, तो ठीक है, तो मे बी ऐसी ही मेरी जिंदगी थी और ऐसा ही होना था, इसलिए हो रहा है ये। तो इसलिए स्टार्ट ब्लेमिंग आवरसेल्फ, एक्चुअली हम ही इसको फेस को ओन करते हैं, इस प्रॉब्लम्स को हम ही ओन करते हैं और हमको ये करना ही होगा, बट सिचुएशन कुछ भी और हो सकती है। तो ये जो कॉग्निटिव एरर्स हो जाते हैं उसको एक जेंटली मोर लॉजिकली चैलेंज करके रीस्ट्रक्चर करने का तरीका है। लेकिन इसका इस्तेमाल तब होता है जब पेशेंट या पर्सन जो है, बोले आप, या ओल्ड एज में जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके अंदर लॉजिकल एबिलिटी हो समझने के लिए कि इसका ये अल्टरनेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, इसका ये अल्टरनेटिव कॉज भी हो सकता है।
2: मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा में एक और पक्ष अक्सर पीछे छूट जाता है, वो है आर्थिक सुरक्षा।
1: अब जरा सोचिए, अगर उम्र बढ़ने के साथ आय का स्रोत समाप्त हो जाए, स्वास्थ्य खर्च बढ़ जाए, दवाइयां नियमित रूप से लेनी पड़े, और व्यक्ति आर्थिक रूप से पूरी तरह परिवार के सदस्यों पर निर्भर हो जाए, तो आर्थिक चिंता और मानसिक तनाव के बीच दूरी कितनी रह जाती है।
2: इसीलिए वृद्धावस्था का मानसिक स्वास्थ्य केवल काउंसलिंग का विषय नहीं, ये सोशल सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और डिग्निटी का भी विषय है। यानी समाधान केवल ये नहीं कि बच्चे अपने माता पिता से फोन पर बात करें, जरूरत इससे बड़ी है कि ऐसे मोहल्ले हो जहां बुजुर्ग सुरक्षित होकर निकल सके, ऐसे पार्क हो जहां बैठने की जगह हो, ऐसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हो जिसका उपयोग वृद्ध आसानी से कर सके,
1: ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स हों जहां वे केवल लाभार्थी नहीं सहभागी हों, और ऐसी सामाजिक गतिविधियां हों जिनमें उम्र बाधा न बने, क्योंकि किसी व्यक्ति के सामाजिक रिश्ते उसकी मानसिक सेहत का हिस्सा हैं।
2: एक सवाल और है, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य को केवल बीमारी के उपचार के रूप में देखा जाए, या उसमें सोशल पार्टिसिपेशन, लोनलीनेस प्रिवेंशन, कम्युनिटी सपोर्ट, काउंसलिंग, ऑटोनॉमी और डिग्निटी जैसे विषयों को भी शामिल किया जाए? क्योंकि अगर अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो लोनलीनेस प्रिवेंशन भी पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन का एक हिस्सा होना चाहिए।
1: और अगर रिटायरमेंट आइडेंटिटी को बदलना है, तो मीनिंगफुल एंगेजमेंट भी एजिंग पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई सरकारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। लंबे समय से भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर।
4: सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि सरकारी योजनाओं का फायदा सभी बुजुर्गों को मिलना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में रह रहे हों, चाहे वो शहरी इलाकों में रह रहे हों, चाहे वो वृद्धाश्रमों में रह रहे हों। और इसके लिए ग्रामीण इलाकों में मुझे लगता है कि वहाँ के जो प्रधान होते हैं और सरपंचों को उनको जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, इनसे सीधे जोड़ा जाना चाहिए। और शहरी इलाकों में

0: जो सबसे निचली इकाई है, मोहल्लों के वार्डों के जो पार्षद हैं, उनके जिम्मे ये काम किया जाना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए बल्कि। और कुछ सरकारी योजनाओं का जिक्र यहाँ करना सही रहेगा। आयुष्मान भारत योजना, ये योजना ऐसी है कि 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को, देश भर के सभी बुजुर्गों को इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलता है, जिसमें मानसिक समस्याओं का इलाज भी शामिल है। दूसरी योजना है टेली मानस, ये मानसिक सेहत से जुड़े परामर्श के लिए, सलाह मशवरे के लिए सरकार की 24 घंटे सातों दिन चलने वाली हेल्पलाइन सेवा है। ये बुजुर्ग इस पर कॉल करके मुफ्त मानसिक सलाह ले सकते हैं। इसके नंबर दो हैं, एक है 14416 और दूसरा नंबर है 1800894416। और अच्छी बात यह है कि यह सेवा जो है वो हिंदी समेत कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, तो इसका लाभ उठाया जा सकता है। बिना संकोच किए आप फोन घुमाइए, अगर दूसरों को नहीं बताना चाहते, अकेले में सलाह लेना चाहते हैं, अपनी मानसिक सेहत से जुड़ी समस्या का निराकरण चाहते हैं, तो फोन पर बात कर सकते हैं। एक और नंबर है जिसको एल्डर लाइन कहा जाता है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन, वो है 14567। ये आसानी से याद भी किया जा सकता है, 14567। इस पर कॉल करके बुजुर्गों को न केवल मानसिक मदद मिलती है, मानसिक समस्याओं से जूझने में मदद मिलती है, बल्कि पेंशन, कानूनी विवाद और पारिवारिक समस्याओं में भी ये यहाँ पर सलाह मशविरा और सही मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भी सरकार ने जगह जगह स्थापित किए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर बुजुर्गों को बुनियादी सलाह मशविरा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दवाएं यहाँ इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP और जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम DMHP, इसके तहत जिलों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श दिया जाता है। वयोवृद्ध जन कल्याण योजनाएं भी हैं, सरकार चलाती है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन्हें चलाता है। इसके तहत डे केयर सेंटर, आश्रय और मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं, अगर घर पर आपको परामर्श चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये सभी हेल्पलाइन सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त हैं और 24 घंटे उपलब्ध हैं।
1: ये जानकारी भी होनी चाहिए कि भारत में मानसिक बीमारी के इलाज और अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में एक कानून बनाया गया था, और आयुष्मान भारत यानी पीएम जय के नियमों के तहत बेहद सुगम और मरीज के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए तैयार किया गया है।
2: आंकड़े जरूरी है, वो हमें समस्या का आकार बताते हैं, लेकिन आंकड़े ये नहीं बताते कि किसी शाम अकेले कमरे में बैठना कैसा लगता है, पति या पत्नी की मृत्यु के बाद पहली रात कैसी होती है, रिटायरमेंट के बाद सोमवार और रविवार में फर्क क्यों मिट जाता है, या जब परिवार कहता है आप आराम कीजिए तो कभी कभी उस वाक्य के पीछे छुपा संदेश कैसा महसूस हो सकता है।
3: इसीलिए इस वर्ष की थीम लिव्ड एक्सपीरियंसेस हर्ड रियल वॉइसेस रियल चेंज एक महत्वपूर्ण दिशा देती है। सिर्फ लोगों के बारे में बात मत कीजिए, लोगों को बोलने की जगह दीजिए। मन के मौसम बदले जा सकते हैं, उम्र बढ़ना एक बायोलॉजिकल रियलिटी है, लेकिन अकेलापन हमेशा अनिवार्य नहीं।
2: शायद उम्र का सबसे कठिन मौसम वो नहीं होता जब शरीर कमजोर पड़ने लगता है, सबसे कठिन मौसम वो होता है जब व्यक्ति को लगे कि उसकी जरूरत कम हो गई है, जब बातचीत उसके बारे में होती है लेकिन उससे नहीं, जब उसके लिए फैसले लिए जाते हैं लेकिन उसकी राय नहीं पूछी जाती, जब उसके पास घर होता है लेकिन संवाद के लिए कोई नहीं, जब उसके पास परिवार होता है लेकिन अपनापन नहीं, और जब उसके भीतर बहुत कुछ कहने को होता है सुनने वाला कोई नहीं।
3: हमारे पास आंकड़े हैं और आंकड़े हमें बताते हैं कि भारत तेजी से एजिंग सोसाइटी बन रहा है। वे बताते हैं कि डिप्रेशन, सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस वास्तविक और गंभीर चिंताएं हैं।
2: लेकिन एक आंकड़ा कभी किसी व्यक्ति की पूरी कहानी नहीं होता, इसलिए शायद अब समय है कि हम सवाल बदलें। ये पूछने के बजाय कि आपको क्या परेशानी है, कभी पूछें आप इन दिनों क्या महसूस कर रहे हैं।
3: ये पूछने की बजाय आपको किस चीज

0: की जरूरत है, कभी पूछें आप अभी भी क्या करना चाहते हैं।
1: और ये मान लेने के बजाय कि उम्र के साथ मन के रंग फीके पड़ जाते हैं, उसे फिर से रंगने के लिए एक जगह बनाते हैं, क्योंकि मन भी मौसम की तरह है, उसमें पतझड़ आता है तो वसंत भी आ सकता है, कभी बादल घिरते हैं तो धूप भी लौटती है।
0: जरूरत सिर्फ इतनी है कि खिड़कियां बंद न कर दी जाएं, किसी के मन की खिड़की खुली रहे, कोई वहां से आती आवाज तो सुन सके, रुके, बात करे और कहे कि हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ।
1: क्योंकि शायद मानसिक स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी सुना जाना है। किसी उम्र में जीवन समाप्त नहीं होता, हर उम्र में एक नया मौसम आने की गुंजाइश हमेशा रहती है।
0: और ये नया मौसम हर किसी के जीवन में आए, ऐसी हमारी कामना है।
2: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित रूपक मन के मौसम उम्र के साथ। आलेख डॉक्टर बानी आनंद, वाचन स्वर हर्ष रंजन, नवोदिता मिश्रा, रमेश शर्मा की गीत पंक्तियों को स्वर दिया ओम प्रकाश मिश्र ने, प्रस्तुति सहयोग हरदीप सिंह और सुमन ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के इस सभा में प्रस्तुत है हिंडोल पेंटसे का शास्त्रीय गायन।
4: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी नाउ ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय हिंडोल पेंटसे।
3: श्री हिंडोल पेंटसे का जन्म सांगीतिक परिवार में हुआ। उन्होंने शास्त्रीय गायन की शिक्षा घर के संगीतमय वातावरण में अपने पिता एवं गुरु श्री सदानंद पेंसे से प्राप्त की। आपके गायन की विशेषता राग की सिलसिलेवार सौंदर्यपूर्ण एवं लय के साथ खूबसूरत बढ़त है। इसके अलावा आप सुगम गायन जैसे भावगीत, भक्ति गीत, नाट्य गीत में भी निपुण है। आपने अनेक फिल्मों, धारावाहिकों एवं महानाट्यों में गायन और पार्श्व संगीत का सृजन किया है। आपने देश के अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपना सफल गायन प्रस्तुत किया है। आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। श्री हिंडोल पेंट से अपने कार्यक्रम का आरंभ राग बिहाग से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल है कवन ढंग तोरा। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल है बाजे रे मोरी पायल। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अजिंक्य गलांडे तथा हारमोनियम पर नारायण दरेकर। लीजिए सुनते हैं राग बिहाग। कलाकार है हिंडोल पेंटसे।
4: हिंडोल पेंटसे बोर्न इन अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, ही हैड हिज म्यूजिकल ट्रेनिंग इन रिच म्यूजिकल एनवायरमेंट एट होम फ्रॉम हिज फादर एंड गुरु श्री सदानंद पेंटसे। हिज सिंगिंग इज कैरेक्टराइज बाय द डीप कमिटमेंट टू रागदारी विद अ पर्टिकुलर एम्फसिस ऑन हिज ट्रेडिशनल फॉर्म एंड एस्थेटिक ब्यूटी। ही हैज परफॉर्म्ड एट नंबर ऑफ प्रेस्टिजियस म्यूजिकल एंड कल्चरल इवेंट्स। He is also known for background music for films, serials and Mahanatya. Hindol Pense begins his vocal recital with Raag Bihag. Vilambit Khayal Kavana Dhanga Tora is set to Ektaal and Drut Khayal Bajere Mori Payal is set to Teentaal. Accompanied him on tabla is Ajinkya Galande and on harmonium Narayan Darekar. Let's listen to Raag Bihag by Hindol Pense.

0: अभी आप राग बिहाग सुन रहे थे। कार्यक्रम का समापन श्री हिंडोल पेंट से राग मधु कौन से कर रहे हैं। मध्य लय ख्याल झपताल में निबद्ध है, बोल है देहो दरस मोहराम, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल है आजा रे आजा पथिकवा।
1: That was राग बिहाग। हिंडोल पेंट से कंक्लूड हिज वोकल रिसाइटल विद राग मधुकौंस। मध्य लय ख्याल देहो दरस मोहे राम इज सेट टू झपताल फॉलोड बाय द्रुत ख्याल आ जा रे पतिकवा इन तीन ताल।

0: ये था राग मधुकौंस। इसी के साथ ही आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम समाप्त होता है, जिसमें आपने श्री हिंडोल पेंसे का शास्त्रीय गायन सुना। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री अजिंक्य गलांडे और हारमोनियम पर श्री नारायण दरेकर। आकाशवाणी के नागपुर स्टूडियो में ध्वनि मुद्रित ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: That was राग मधुकौंस। With this, tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा comes to an end. You have been listening to the classical vocal recital by Shri Hindol Pense. He was accompanied on tabla by Ajinkya Galande and on harmonium by Narayan Darekar. This program was recorded in the studio of Akashwani Nagpur and broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 11 बजने को है, लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा हैं। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: There are countries who are emerging.
3: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
2: Really is a point of convergence.
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में आयोजित 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश की सैन्य तानाशाही के समर्थन में थे, तब रूस एक ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा व्यापक हो गए हैं। इसमें सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े पहलुओं के साथ साथ व्यापार और निवेश भी शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि वह इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने काला सागर में जहाजों और वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे से इस मदद की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। संयुक्त अरब अमीरात UAE में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा है कि पायलट स्मित मछार के

अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं जारी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजदूत मित्तल ने बताया कि स्मिथ तेजी से ठीक हो रहे हैं और उनका मनोबल काफी ऊंचा है। उन्होंने कहा कि दूतावास स्थानीय अधिकारियों और परिवार के साथ संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान की

0: flag to Doha, host of the 2030 edition. India's women's flag bearer and shooting star Neeru Dhanda carried the Indian tricolour at the closing ceremony. India finished fourth in the overall medal standings with 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi extended compliments to every member of the Indian contingent for representing the nation with determination, passion and remarkable sporting spirit. And with that, we end this news bulletin.
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज एवं एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा आप संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। अब अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।